हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। हम उसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा उससे करीब हैं और हमारे इस बराहे रास इल्म के अलावा दो कातिब उसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज सब कर रहे हैं। कोई लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद न हो। फिर देखो वो मौत की जान कनी हक लेकर आ पहुंची, ये वही चीज है जिससे तू भागता था और फिर सूर फूंका गया। ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था। हर शख्स इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हांक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। इस चीज की तरफ से तू गफलत में था, हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा।

हुआ था और आज तेरी निगाह खूब तेज है। उसके साथी ने अर्ज किया, ये जो मेरी सपर्दगी में था हाजिर है। हुक्म दिया गया, फेंक दो जहन्नम में हर कट्टे काफिर को जो हक से ऐनात रखता था, खैर को रोकने वाला और हद से तजावज करने वाला था, शक में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाए बैठा था, डाल दो उसे सख्त आजाब में। उसके साथी ने अर्ज किया, खुदावंदा मैंने इसको सरकश नहीं बनाया बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में इरशाद हुआ, मेरे हुजूर झगड़ा न करो, मैं तुमको पहले ही अंजामे बद से खबरदार कर चुका था। मेरे हां बात पलटी नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूं। वो दिन जबकि हम जहन्नम से पूछेंगे, क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या और कुछ है, और जन्नत मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी, कुछ भी दूर ना होगी। इरशाद होगा, ये है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगहदाश्त करने वाला था, जो बेदेखे रहमान से डरता था और जो दिले गर्वीदा लिए हुए आया है। दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। वो दिन हयात अबदी का दिन होगा, वहां उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास उससे ज्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है।

وشرفتنا بالصيام والقيام إلهنا لا تجعل هذا العهد هو

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशंस के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशंस के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने किराम, रात हो जाए तो ये सुन्नत है कि खुले बर्तन ढांप दिए जाएं, मशकीज़े का मुंह कसकर बांध दिए जाए और अल्लाह का नाम लिया जाए, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बर्तन ढांप दो, मशकीज़ों के तस्मे बांध दो, साल भर में एक रात ऐसी है जिसमें वबा उतरती है, वो वबा जिस खुले बर्तन और खुले मशकीज़े के करीब से गुजरती है उसमें दाखिल हो जाती है। रिवायत है सही मुस्लिम की। मजीद जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और रिवायत में है, अपनी छागलों के यानी अपने मशकीज़ों के तस्मे बांध दो और अल्लाह का नाम लो, अपने बर्तन ढांप दो और अल्लाह का नाम लो, चाहे तुम बर्तनों पर कोई शय अर्ज के बल रख दो, यानी इसका मतलब है उसे ढांप कर रखो, उसका मुंह बंद कर दो। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामत की जिंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी
5: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक आपने डिजिटल स्कैम के बारे में सुना है, लेकिन अब लोग सामने आना शुरू हो गए हैं, यानी कि फिजिकल स्कैम। आपके सामने वो आते हैं आपसे QR कोड, लिंक या फिर आपसे किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बनकर बात करते हैं। ऐसे में आपको होशियार रहने की जरूरत है। आजकल एक नया स्कैम चला है जिसे कहते हैं फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम। रूरल एरियाज और विलेजेस में डिजिटल अवेयरनेस कम होने का फायदा उठाकर स्कैमर्स ने अब एक नया तरीका ढूंढा है जिसे फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स खुद को गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कभी इलेक्ट्रिसिटी या कभी वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय या अफसर बताते हैं और ये लोग आम या भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। ये लोग घरों पर अचानक आते हैं और दावा करते हैं कि उनके स्मार्ट मीटर खराब है या उनका पिछला बिल बाकी है। लोगों को डराने के लिए ये स्कैमर तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। रूरल एरियाज में लंबा पावर कट किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकती है।

0: सकता है, इसलिए लोग डर जाते हैं। इस डर का फायदा उठाकर स्कैमर्स तुरंत पैसे डिमांड करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि मामला अभी खत्म करने के लिए फिजिकल कैश दे दें, या फिर उनके पास मौजूद एक फेक POS मशीन पर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने को भी आपसे कहते हैं। कार्ड स्वाइप करते ही आपके अकाउंट का सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है और अकाउंट पलक झपकते ही खाली हो जाता है। ये पूरा फ्रॉड बिना किसी ऑफिशियल पेपर या नोटिस के सिर्फ डर और झूठ के दम पर किया जाता है। सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कभी भी इस तरह अचानक आकर तुरंत कैश या ऑन द स्पॉट कार्ड पेमेंट की डिमांड नहीं करते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। हमेशा किसी भी एम्प्लॉय का या ऑफिशियल एम्प्लॉय का आईडी कार्ड जरूर मांगे। इसके अलावा एक और आसान तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, जो है नो कैश ऑन स्पॉट। सरकारी रूल्स के मुताबिक कोई भी टेक्नीशियन घर आकर कैश या कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा जब आपके पास कोई बिल आए या कोई शख्स आपको बिल दे तो उसे ऑनलाइन वेरीफाई करें। कोई भी पेमेंट करने से पहले अपनी ऑफिशियल यूटिलिटी ऐप या वेबसाइट पर बैलेंस चेक करें। उसके अलावा आप हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सोच की जरूरत नहीं है, सीधे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बोर्ड के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कंफर्म करें कि क्या किसी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल एम्प्लॉय आपके घर भेजा है या नहीं। इस तरह की होशियारी से आप हमेशा खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को स्कैम होने से बचा सकते हैं। स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन सकते हैं।
1: ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस। फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: Assalamualaikum, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो कतर ग्रीन बीट्स। वेल, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल मजे में होंगे। ये हफ्ता भी काफी मजे में गुजर रहा है है कि नहीं। चलिए, अब आज की बात शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है। हाँ, अच्छा, चलिए जरा एक पल के लिए रुकिए, अपने आसपास देखिए, हम एक ऐसे खूबसूरत रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ सुनहरी रेत के टीले और वो कहते हैं ना गहरा नीला आसमान एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। क्या बात है, ये मंजर देखने में जितना हसीन लगता है ना, उतनी ही बड़ी एक हकीकत हम सब रोज जीते हैं इस तपिश भरी धरती पर। पानी हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम अक्सर कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, लेकिन कतर में वाटर इज मोस्ट प्रेशियस करेंसी। कभी सोचा है आपने कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां कोई परमानेंट दरिया या यूं कह रिवर नहीं है, कोई ऐसी नदी नहीं है जो बारह मासी बहती हो, और बारिश साल भर में 100 mm से भी कम होती है। अब जनाब, इतनी कम बारिश तो शायद एक मुनासिब यूं कहे तो प्रॉपर शार में निकल जाती है, लेकिन फिर भी कतर की रगों में जिंदगी दौड़ रही है। हमारे हरे भरे पार्क्स, हमारे चमकते टावर्स और आपके किचन का वो नल, ये सब कैसे चल रहा है, कभी सोचा है इसके बारे में? यहाँ हर एक बूंद जो आप देखते हैं ना, वो कुदरत का करिश्मा कम या यूं कहें ह्यूमन इंजीनियरिंग का मिरेकल ज्यादा है, और इट इज अ मिरेकल ऑफ साइंस जो हम अक्सर देखते हैं पर उसे थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं। फिलहाल आज का एपिसोड हमारा बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड गोल्ड के बारे में। आज जब आप दोहा में या अलवकरा में या शायद लुसेल में अपने घर का नल खोलते हैं, तो क्या आपने कभी उस पानी का सफर सोचा है कि ये पानी आया कैसे हमारे पास? वो पानी सिर्फ जमीन के नीचे से नहीं निकल रहा, वो पानी आया है अरेबियन गल्फ की उस नमकीन गहराइयों से जिसे हम द डीप ब्लू कहते हैं। वहां से उस खारे पानी को निकाला गया, उसमें से नमक के एक एक जर्रे को अलग किया गया, और फिर टेक्नोलॉजी की रगों से, मतलब हमारे हाई टेक पाइपलाइंस के नेटवर्क से होता हुआ वो कई माइल्स का सफर तय करके आपके ग्लास तक पहुंचता है। यस, ये कोई मामूली सफर नहीं है, इट्स अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक खारा समंदर एक मीठी जिंदगी में बदल जाता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम इसी लिक्विड गोल्ड की गहराइयों में उतरेंगे। हम बात करेंगे वाटर सिक्योरिटी की। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट रिजर्वॉयर्स के पीछे, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने कतर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा दिया है, और साथ ही हम बात करेंगे उस रेवोल्यूशनरी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी की जो हमारे कल को सुरक्षित बना रही है। कैसे कतर सूरज की गर्मी और टेक्नोलॉजी की ताकत से अपना फ्यूचर लिख रहा है। कहीं ना जाएं, मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं जो कि हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत काम की होगी. सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
2: कतर ग्रीन बीट.
3: वेलकम वंस अगेन, मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स. और अब बारी है द ग्रीन वायर की. हाँ, तो ये क्या है ग्रीन वायर? हम अक्सर बुर्ज खलीफा या बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स इनकी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कतर की जमीन के नीचे एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड छुपा है जो दिखता तो नहीं पर हमारी रगों में जिंदगी बनकर दौड़ रहा है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सीधा हमारी वाटर सिक्योरिटी से जुड़ा है. कतर ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात अपने लोगों की हिफाजत की आती है ना, तो हम सिर्फ बड़े ख्वाब नहीं देखते, हम उन्हें कंक्रीट की शक्ल में खड़ा भी करते हैं. कहा जाता है जहां चाह होती है वहां राह होती है, और इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री और करामा इन दोनों ने मिलकर वो कहते हैं ना कि एक ख्वाब को पूरा किया है, द वाटर सिक्योरिटी मेगा रिजर्वॉयर्स प्रोजेक्ट. सोचिए, उम बिरका से लेकर उम थुमामा तक कतर के 5 अलग अलग कोनों में 5 ऐसी साइट्स बनाई गई हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है. इन रिजर्वॉयर्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने खुद इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वॉयर का खिताब दिया है. जरा तसव्वुर कीजिए, हर एक टैंक इतना बड़ा है कि उसमें एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम समा सकता है. मैं मजाक नहीं कर रही. इमेजिन 5 मैसिव साइट्स जहां पर जायंट कंक्रीट टैंक्स हैं, हाँ, और उनके अंदर पानी है. जब आप इनके पास खड़े होते हैं तो आप ना एक नन्हे से जर्रे लगते हैं, मतलब छोटा सा पार्टिकल लगते हैं. ये सिर्फ सीमेंट से बनी दीवारें नहीं है, ये बेसिकली कतर का एक सेफ्टी नेट है. लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों? इसके पीछे की वजह सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था, इसके पीछे का मकसद है सर्वाइवल. हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहां कुदरती पानी की बहुत कमी है. ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए या

0: डीसैलिनेशन प्लांट में कोई टेक्निकल इश्यूज हो जाए तो क्या हमारा शहर प्यासा रहेगा? हरगिज नहीं। इन मेगा रिजर्वॉयर्स की वजह से कतर के पास अब इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है कि अगर सारे प्लांट्स बंद भी हो जाएं, तब भी पूरे मुल्क की जरूरत को 7 दिनों तक पूरा किया जा सकता है। 7 days, आप समझ रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ वाटर, वो भी हाई क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर जो कि स्टोर्ड है और रेडी है। ये हमारा लिक्विड गोल्ड है जो जमीन के नीचे हमारा इंतजार कर रहा है, और ये है हमारे कतर का विजन कि कुछ भी हो जाए, हमारी लाइफ और हमारी डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए। वेल, एक खास बात आपको बतानी है कि ये जो पानी है, इसे स्टोर करना काफी नहीं है, ठीक है, उसे बचाना और गार्ड करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ एंट्री होती है तरशीद की। अब एक और बड़ी खबर ये है कि कतर का नया यूनिफाइड ऑपरेशन सेंटर अब किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा काम कर रहा है। यस, वहां लगे हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड AI, या यू कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। पहले क्या होता था कि अगर कहीं जमीन के नीचे पाइपलाइन लीक हो गई तो हफ्तों तक पता ही नहीं चलता था और लाखों गैलन पानी वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब हमारे डिजिटल चौकीदार, या यूं कहें हमारे डिजिटल AI को हर एक लीक का पता चंद मिनट्स में चल जाता है, एंड दे आर डिटेक्टिंग एनोमलीज इन रियल टाइम। मतलब कतर सिर्फ पानी बचाने का काम नहीं कर रहा है, उसे गार्ड भी कर रहा है वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए, ताकि हमें सही वक्त पर पानी मिल सके। तो जनाब, ग्रीन वायर में आज हमने देखा कि कैसे कतर ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, और एक तरफ हमारे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अजीम रिजर्वॉयर्स हैं और दूसरी तरफ AI जैसे शानदार टेक्नोलॉजी जो एक एक बूंद की हिफाजत कर रही है। लेकिन याद रखिए, गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी अपना काम कर रहे हैं, पर असली हिफाजत जब आती है ना, तो वो आपको और हमें ही करनी है। चलिए आगे इसके बारे में और बात करते हैं। आप कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 107, मैं हूँ अमिता आपके साथ, और कतर ग्रीन बीट्स पर आज बातें हो रही हैं लिक्विड गोल्ड की। वेल, आज हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो इस रेगिस्तान में सोना, या यू कहें गोल्ड से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। यस, एंड दैट इज आवर वाटर, हमारा पानी। आज हमारे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट पर उस जगह पर हम चलते हैं जहाँ कतर की वाटर इंडिपेंडेंस का किला, या यू कहें फोर्ट्रेस बने हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ ओम अल हूल पावर प्लांट की। जब आप दोहा से दक्षिण की तरफ ड्राइव करते हैं तो एक अजीम शान स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये कतर का वो पावर हाउस है जो लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। ओम अल हूल वो जगह है जहाँ साइंस और नेचर, यस, का एक कमाल का संगम है, यू कहे मीटिंग पॉइंट है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले हम थर्मल डीसैलिनेशन पर डिपेंड करते थे। इसे आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो वो है कि समंदर के पानी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उबालना, फिर उसकी भाप को कैच करना और उसे ठंडा करके साफ पानी बनाना। सुनने में ये बड़ा सिंपल लगता है, जैसे किचन में चाय बनाना, पर जनाब इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस तरीके में एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती थी। लेकिन फिर आई एक रेवोल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओम अल हूल में आज यही जादू हो रहा है। इमेजिन कीजिए, बड़े बड़े हाई प्रेशर पंप्स हैं जो समुंदर के खारे पानी को इतनी जोर से धकेलते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन से, यू कहे फिल्टर्स से गुजरने पर मजबूर हो जाते हैं। ये फिल्टर्स इतने महीन हैं कि नमक के जर्रे जर्रे को, यू नो, वही रोक देते हैं और दूसरी तरफ से निकालना शुरू करते हैं बिल्कुल साफ, मीठा और शुद्ध पानी। अब आप सोचेंगे कि अमिता, ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो जनाब, ये हमारे प्लानेट, या यू कहें हमारी धरती के लिए एक उम्मीद की किरण है। रिवर्स ओस्मोसिस पुराने तरीकों के मुकाबले सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कम कार्बन एमिशंस और हमारी नेचुरल गैस की बचत।

बात यही खत्म नहीं होती. हमारे जो रिसर्चर्स हैं, यानी कि कतर एनवायरमेंट एंड एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनमें हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के वो होनहार दिमाग हैं जो इससे भी आगे की सोच रखते हैं. वो टेस्ट कर रहे हैं सोलार पावर डीसैलिनेशन. तसव्वुर कीजिए, कतर की वो तेज धूप जो कभी हमें परेशान करती है, वही धूप अब समुन्दर के पानी को मीठा बनाएगी. सूरज की गर्मी और समुन्दर का पानी दोनों मिलकर कतर को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल अ सस्टेनेबल साइकिल. हम रिसोर्सेज को खत्म नहीं कर रहे, हम उन्हें रिन्यू कर रहे हैं. कभी सोचिए कि जब हम ग्लास उठाते हैं तो हम सिर्फ पानी नहीं पी रहे, हम उन हजारों इंजीनियर्स की मेहनत और उन टेक्नोलॉजी की रगों से गुजरे हुए एक सफर को पी रहे हैं. क्या बात है, क्या बात है. वैसे हमारी तहजीब में पानी को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं माना गया है, पानी एक अमाना है, या यूं कहें एक अमानत है. हाँ जी, ये पानी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे पास एक अमानत है जो हमें अपनी आने वाली नस्लों को सही सलामत लौटानी है. तो सवाल ये है कि क्या हम इस अमानत की हिफाजत कर रहे हैं. इस अमानत की हिफाजत के लिए हमें ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे. यस, पहला है द तशहीद चैलेंज. हम दिन भर सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, पर अभी का काम क्या है, आज एक काम हम करेंगे. कारामा का जो ऐप है ना, वो डाउनलोड करेंगे. इसमें एक सेक्शन है जहां आप अपने डेली हैबिट्स डाल सकते हैं. ये आपको एक वाटर फुटप्रिंट स्कोर देगा. इसे अपने बच्चों के साथ एक गेम बना दीजिए. यस, देखिए कि घर में सबसे कम पानी कौन जाया करता है. जब हम बच्चों को बचपन से वैल्यू सिखाते हैं ना, तो वो बड़े होकर इस धरती के रक्षक, यू कहे प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं. तो जनाब, सोल्यूशन तो बस इतना सस्ता है कि आप हैरान ही हो जाएंगे. हाँ, कल किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर जाइए और उनसे कहिए कि मुझे एक फॉसेट एरेटर चाहिए. ये एक छोटा सा मैश स्क्रीन होता है जो आपके नल या यू कहें टैप के मुंह पर लग जाता है. ये करता क्या है, ये पानी के स्ट्रीम में हवा मिक्स कर देता है. इससे प्रेशर वही रहता है, लेकिन पानी का जो फ्लो है वो 50% कम हो जाता है. मतलब वही प्रेशर, वही एहसास, लेकिन आधा पानी. ये बहुत ही कम दाम का है, पर मिलियन ऑफ गैलन्स पानी भी बचाता है और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है. और मुझे लगता है कि ये जो अगला वाला, ये भी बड़ा कमाल का है. हाँ, जिन्हें गार्डनिंग का शौक है, स्पेशली उनके लिए. हमारे यहाँ पौधों को पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपने ग्रे वाटर के बारे में सोचा है? जब आप किचन सिंक में सब्जियां धोते हैं ना, या चावल भिगोते हैं, वो पानी नाली में या यू कहें ड्रेन में मत फेंकिए. उसे एक बाल्टी या यू कहें बकेट में जमा कीजिए और अपने गार्डन में डाल दीजिए. रेगिस्तान में एक पौधा ये नहीं देखता कि पानी नल से आया है या सिंक से, उसे सिर्फ जीने के लिए नमी चाहिए होती है. ये छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है. तो जनाब, कतर की दास्तान रेत पर नहीं बल्कि पानी पर लिखी गई है. एंशियंट वेल से लेकर ओम अलहूल के फिल्टर्स तक हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है. अगली बार जब आप ग्लास में पानी भरें, तो थोड़ा सा रुकिए, उसे देखिए और याद कीजिए कि ये हमारी अमानत है कि नहीं. वक्त कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन आज हमने कतर की रगों में बहते इस लिक्विड गोल्ड की बात की जो हमारी जिंदगी की बुनियाद है, और हमें इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली नस्लों को महफूज किया जा सके. वैसे जैसे जैसे हम कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हमारा मकसद बिल्कुल साफ होता जा रहा है. हम सिर्फ एक मॉडर्न नेशन नहीं बनाना चाहते, हम एक ऐसे नेशन को बनाना चाहते हैं जो अपनी रिसोर्सेज की कद्र करता है. तो बस इसी रिसोर्सेज की और एट द सेम टाइम हमारी सारी, वो कहते हैं ना, सहूलियत जो हमें मिली हुई है, उसकी हमें इज्जत करनी है कि नहीं. और इसी के साथ मैं कहूंगी कि आज का कतर ग्रीन बीट्स यहीं तक था. अब आपको मुझे देनी होगी इजाजत. वक्त है मेरे जाने का और आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस. आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, बेशक आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, या चाहे तो हमारा जो सोशल मीडिया है FM 107 का, उससे भी जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी आरजे अमिता को भी ढूंढ सकते हैं. तो बस आज जिस लिक्विड

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Sameen kehte hai na ki bandar ko saath mein rakhoge to wo zarur tumhare kandhe par sawar hoga. कहावत का मतलब ये है कि अगर किसी खास मिजाज वाले शख्सियत के साथ ताल्लुक रखते हैं हम या इनके साथ उलझते हैं तो आपको इनसे होने वाले नुकसान या तकलीफ को ज़रूर बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि आपने खुद ही इस किस्म की सूरत हाल का इंतखाब किया है। अरबी जबान की कहावत है اللي يلعب مع القط يصبر على خرابيشه यानी जो बिल्ली पालता है बिल्ली के साथ खेलता है उसे जरूर उसके नाखूनों को बर्दाश्त करना होगा। इल्ली यलअब मअल गतु यस्बर अला खराबीशह।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और सेहतमंद गिजा के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि हमारी सेहत की बुनियाद है। और अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है तो फिर जिस्मानी तवानाई, वज़न और इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त जो है वो मुतासिर होती है और फिर सेहत के बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं। कभी आपने सोचा कि आज खाने के बाद आपने आराम किया या फिर फौरन ही आप काम में लग गए? ये बहुत ही अहम सवाल है जो हमें अपने आप से करना है, या आपके जो प्यारे हैं उनसे भी ज़रूर कीजिए। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए फाइबर वाली सब्जियां, फल बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से जो पोरेज है, दलिया है, दालें हैं या चावल हैं, वो अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए। पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका जो हाजमा है वो ख़राब करने वाली हमारी अपनी ही आदतें होती हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जो फ्राइड चीज़ें हैं उन्हें पसंद करते हैं, या चिकनाई वाली जो ग़िज़ा है वो खाना भी पसंद करते हैं, मगर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती हैं। और ये कि बहुत जल्दी जल्दी खाना, इससे भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तौर पर काम नहीं कर पाता। और इसके अलावा रात को देर से खाना, जब आप सो जाते हैं तो फिर ये खाना हजम नहीं हो पाता। एक शख्स जो कि बहुत जल्दी जल्दी खाता और तली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद वो करता था, तो इसी तरह उसे फिर मैदे के जो मसाइल हैं वो शुरू हुए। और खाने को फिर जब उसने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया, अपनी खुराक में सब्जियां इस्तेमाल करनी शुरू की, पानी ज़्यादा इस्तेमाल से उसका हाजमा बेहतर होता चला गया। उसके लिए हमें करना ये है कि अपने खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबाइए और आराम से खाइए। सब्जियां और फल अपनी खुराक में ज़्यादा शामिल कीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए, मगर खाने के दौरान ज़्यादा पानी नहीं पीना आपको। इसी तरह रात का खाना हल्का हो, और सोने से कम से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, यानी डिनर जो आपने करना है वो आप सोने से 2 घंटे पहले कर लीजिए। बच्चों और बड़ों के लिए आप एक स्केड्यूल बना दीजिए और उन्हें ये आदत डालिए कि इस तरह से आपने अपना खाना जो है वो खाना है। ये छोटी छोटी बातें अपनाकर हम बहुत बड़े मसाइल से बच सकते हैं, क्योंकि जो हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तवानाई और सेहतमंद जिस्म का जामिन है। हेल्थ फॉर ऑल,
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107 दिल से देसी।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

मैं सच में जाता हूँ इंट्रो के लिए मैं एक रोबोट रख लूँ और वो रोबोट जो है बोले वेलकम टू टेक इनोवेशन अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, यस वेलकम टू टेक इनोवेशन, वो दुनिया जहाँ पर टेक्नोलॉजी भाग रही है, सरपट दौड़ रही है, सरपट इधर से उधर, क्या क्या नहीं हो रहा भाई। आप बैठे हुए यहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा ही तो है, ना जी ना जी ना, हर 5 मिनट पे सब कुछ बदल जा रहा है, टेक्नोलॉजी की दुनिया ही ऐसी है। और क्या क्या खबरें, कौन कौन से कोने से आ रही है सब बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ कमाल के टूल्स हैं, कमाल की एप्स हैं, कमाल के गैजेट्स हैं, और आज के गैजेट्स बजट वाले हैं जो आपके काम आ सकते हैं और बजट में हैं तो मजा ही आ जाएगा आपको। उसके बाद हम सीधा कूदेंगे न्यूज़ में, क्योंकि न्यूज़ में बहुत काम की चीज़ें हैं और हम गेमर्स का थोड़ा दिल तोड़ा गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स बिगिन विद एप्स दिस वीक। ट्रेंडिंग एप्स, ट्रेंडिंग एप्स। तो एक ऐप जिसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा, ये ऐप मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है। जी हाँ, मैंने डिस्कवर करी है, मैं क्रिस्टोफर कोलंबस, आई नो सबसे पहले मैंने नहीं करी डिस्कवर, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके काम आएगी। इमेज जनरेशन की बहुत सारी एप्स और AI टूल्स मैंने पहले आपको बताई थी, याद होगा आपको। ये जो है अभी ऐप नहीं है, दिस इज एक्चुअली एन AI टूल जो आप फोन में या फिर अपने लैपटॉप्स पे PCs पे खोल सकते हैं। इसका नाम है REVE AI, रेव या फिर रिवे, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, REVE AI। जब आप टाइप करेंगे तो एक पेज खुलेगा, शुरुआत में बिना पेमेंट के, यू हर्ड इट राइट, बिना पेमेंट के आप बहुत सारी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जेनरेट कर सकते हैं। अब एक स्पेसिफिक चीज बताता हूं, बहुत सारे इमेज जेनरेटर्स जो होते हैं जो AI इमेज क्रिएट करते हैं, उनसे ये बेटर है, एंड आई एम नॉट लाइंग टू यू, क्योंकि जब आप चेंजेस करने बैठते हैं, व्हेन यू एडिट बाकी में, तो पूरी की पूरी फोटो चेंज हो जाती है ना। मान लीजिए आप, एग्जांपल देता हूं मैं, एक टेबल आपने लिखा कि क्रिएट अ टेबल जिसपे फ्रूट्स रखे हुए हैं, राइट। अब आपके सामने सेब की एक पूरी बास्केट आ गई है, अब उस पूरे फ्रेम में अगर आप एप्पल्स को चेंज करना चाहेंगे, इफ यू वांट टू पुट बनाना और प्रॉब्ली पीचेस और व्हाटएवर, वो पूरे के पूरे सीन को बदल सकता है, चांसेस है।

0: कि ना सिर्फ बास्केट बल्कि आसपास का सीन भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये जो है REVEAI, ये क्या करता है, एक तो इमेज बहुत रिफाइंड वर्जन आपको देता है, उसके बाद स्पेसिफिकली चीजों को चेंज करता है। तो आपको कोई फ्रेम में कोई स्पेसिफिकली कोई चीज बदलनी है तो पूरे फ्रेम पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलग से उसी चीज को बदलेगा सिर्फ जिसको आप बदलना चाहते हैं पूरी की पूरी फोटो में। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट आई एम नॉट लाइंग टू यू, ये आपके काम आ सकती है अगर आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं। इवन इफ यू वॉन्ट टू चेक, आप जाइए खुद ट्राई कीजिए REVEAI, ठीक है, इस पे आप डाल के देखिए। एंड फ्री में बहुत सारी इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, एक पॉइंट के बाद वो आपसे ऑफ कोर्स बोलेगा लाओ जी डॉलर तो मेरे हाथ में तब बनाऊंगा अगली, लेकिन आप कर सकते हैं। इसका जो पेड वर्जन है ये उन लोगों के लिए जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप वीडियो भी इससे जनरेट करवा सकते हैं या अपने फोटोज को एनिमेशन एनिमेट कर सकते हैं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल AI टूल टू यूज, एंड आप यूज करिए, खुद बताइएगा मुझे कि आपका क्या इस पर रिव्यू, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो ये है हमारी लिस्ट में सबसे पहले, रैंकिंग वाइज नहीं मगर सबसे पहले इसका जिक्र करना चाहता हूँ बिकॉज रिसेंटली मुझे ये AI टूल मिला। ओके, मूविंग ऑन। अगला जो है जी, ये बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत काम का है। इस AI टूल का नाम है Gamma AI, GAMA, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारे AIs हैं। आई नो जो लोग बिजनेसेस में हैं या जिन लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है वो लोग मुझसे कहीं गुना ज्यादा और कहीं गुना ज्यादा जानते हैं, ऐप्स उन्हें पता है, उन्हें AI टूल पता है। बट अगर नहीं पता है किसी को जो सोच रहा है कि प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से कैसे बनाए, तो Gamma AI, GAMA AI, लेट मी टेल यू वाई इट इज बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर AI टूल्स। ये प्रेजेंटेशन तो जनरेट करेगा ही करेगा बहुत सिंपल तरीके से, मगर इसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक स्लाइड में कुछ चेंज करना है, उसको आपको कोई कैजुअल लुक देना है, आपको उसमें चार्ट्स बनाने हैं, आपको उसमें एक फ्लो बनाना है, वट एवर इज देयर, ये फौरन चेंज करेगा स्पेसिफिक स्लाइड्स में। जैसे आपने डाला कि चेंज स्लाइड 3 टू बी मोर कैजुअल विद अ फ्लो चार्ट, तो बाकी प्रेजेंटेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिकली वो वाली स्लाइड जिसको जिस पे आपने प्रॉम्प्ट दिया है वो काम करेगी। मैं नहीं कह रहा बाकी AI नहीं करते, मगर ये जो करता है ना भाई बहुत बढ़िया करता है। एंड इसमें जो लेआउट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो तो कमाल के हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट AI टूल जिससे मैंने प्रेजेंटेशन खुद बना के देखी है। मत पूछिए किस सब्जेक्ट पे बनाई, बिकॉज आपका भाई प्रेजेंटेशन वाला बंदा नहीं है, जो लोग हैं प्रेजेंटेशन वाले उनके काम आएगी। तो आप सुन रहे हैं भाई साहब, इधर तो देखिए, हाँ, Gamma AI, GAMA AI, ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। अगली है ऐप बहुत बहुत काम की, अगर ऐप ना मिले वेबसाइट पर चले जाना, फोन में खुलती है, एंड्रॉइड हो, iOS हो, या आपके पास PC हो या लैपटॉप, वॉट एवर। इसका नाम है famelack.com, FAMELACK। मैं डीकोड नहीं कर पाया इसका नाम ये क्यों रखा है, famelack.com। ये क्या करता है, इसमें जब आप खोलेंगे इसकी वेबसाइट को, तो ये लाइव टीवी है भाई, दुनिया जहां का कोई सा भी चैनल आप देख सकते हैं। इसका इंटरफेस मुझे इतना बढ़िया लगा, जब आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो आपके सामने ग्लोब आता है, उस ग्लोब को आप घुमाइए, जूम कीजिए, जूम आउट कीजिए, जूम इन कीजिए और कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कंट्री के बाद आपको सारे के सारे जो उसके टीवी चैनल्स हैं वो नजर आ जाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ बहुत सारे चैनल्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं आएंगे, मगर मोस्टली जो चैनल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे भाई। बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। सो famelack.com, इट इज नॉट लैकिंग फेम एट ऑल, पर नाम में है तो है, ठीक है। विदाउट सब्सक्रिप्शन अगर आप टीवी चैनल्स देखना चाहते हैं ऑन द गो, ये है आपके लिए famelack.com, ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स में, गैजेट्स दिस वीक में, जिसमें बजट वाले गैजेट्स हैं।
1: cool gadgets.
0: तो गैजेट ऑन द लिस्ट, सबसे पहले बात करूंगा मैं एक ऐसी चीज की जिसको देखने के बाद मेरा भाई हमारे ऑफिस में काम करता है शहबाज, वो कह रहा भाई ये तो चाहिए। ये है Acer ChargeMate 4-in-1। ये क्या है, एक किस्म का, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस भाई, एक किस्म का कारपेट है, ठीक है, छोटा सा कारपेट है आपके लैपटॉप के लिए, 4-in-1 जैसे मैंने कहा, वायरलेस चार्जिंग देता है ये, वायरलेस चार्जिंग। इसके अंदर सिर्फ वायरलेस चार्जिंग नहीं, लैपटॉप स्लीव भी है, तो मतलब लैपटॉप अगर आपका 13-16 inches का है, आप आराम से इसमें लैपटॉप को स्लाइड कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और वायरलेस चार्जिंग है इसमें। आप वायरलेस चार्जिंग के अलावा आप घड़ी चार्ज कीजिए, आप अपने जो हेडफोन्स है वो चार्ज कीजिए, एनीथिंग, पर आपका लैपटॉप इस पे रख के जब आप काम करेंगे 10 लोग मुड़ के देखेंगे और बोलेंगे यही है भाई बिजनेसमैन, इसी को आवे है काम, मैं बता रहा हूँ, फॉर गुड इंप्रेशन, फॉर गुड क्वालिटी, फॉर चार्जिंग पर्पसेस एंड टू लुक टू लुक मोर सिक्योर इन योर वर्क प्लेस, ये आपके काम आएगा. बहुत सस्ता है भाई, बहुत ही सस्ता है. इंडिया से अगर किसी से मांगेंगे आप तो और भी सस्ता पड़ेगा. तो एसर चार्ज मेट 4-in-1 अभी अमेजोन पे ये मैंने चेक किया तो अभी अमेजोन पे नॉट अवेलेबल, लेकिन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा. बट इट इज अवेलेबल एल्सवेयर एज वेल. तो कतर में भी कहीं पर मिले तो मुझे प्राइस बताइएगा इसका क्या है, मैं भी लेने की सोच रहा हूँ. सो एसर चार्ज मेट, ACER वो जो कंपनी, एसर चार्ज मेट 4-in-1 वायरलेस, इतना टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा. एंड बहुत कमाल का भाई, बहुत ही ज्यादा कमाल का. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. अब अगला जो है जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये भी बड़ा कमाल का है. ये माउस है. मैं इसलिए हिचकिचाया कि आप बोलें ऐसा क्या बताने वाला है. देखो आप, मैं जानता हूँ आप माउस बहुत सारे कतर में ले चुके हैं, लेकिन आपको लगता है ये क्या करूँ मैं इसका, पर ये बजट में है भाई, ये बजट में है. कतर में भी आपको 50-50 रियाल के माउस मिल जाएंगे, लेकिन जो इस माउस के अंदर है वो बाकी में बात नहीं है. ये हाथ में प्रीमियम फील होता है. इसका नाम है MCAT, AMKETTE, MCAT, MCAT प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मगर मैं स्पेल आउट कर देता हूँ. AMKETTE XS सीरीज, X एज एन एक्सरे वाला और S, ठीक है, एज इन स्नो. तो MCAT स्नो सीरीज फ्लो, ये एक माउस है, एरोगोनॉमिक वायरलेस ब्लूटूथ माउस है ये. इसमें साइड स्क्रोल भी है और साइड स्क्रोल बड़ा अच्छा काम करता है भाई. 7 बटन दिए हुए हैं, मल्टी ओएस, 3200 DPI एडजस्टेबल है, 1000 हर्ट्ज पॉलिंग है और 800 mAh की रिचार्जेबल बैटरी है. बहुत बढ़िया काम का है. कई मरतबा क्या होता है ना, आप जब एक्सेल शीट खोलते हैं तो उसे साइड स्क्रोल करना पड़ता है और फिर आपको लगता है काश कुछ ऐसा हो जाए तो फौरन साइड स्क्रोल कर लेता. तो ये है और बजट में अंडर 1000 है. कई जगहों पे 1200-1100 का पड़ेगा, मैं इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूँ. तो अगर कोई इंडिया से आपके लिए ला सके तो ये मंगा लीजिए, आपकी छुट्टी माउस लेने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद आपको. यहाँ पर ही मिल सकता है, चांसेस आर, यहाँ पे आप देख लीजिएगा AMKETTE. मिले तो भाई बताना, हम भी जरा हाथ साफ कर लेंगे, क्योंकि काम की चीज तो है भाई, काम की चीज तो है. अब मूविंग ऑन. अच्छा अब देखो, कतर में ना एक चार्जर है. अब मल्टीपल कंपनीज इस किस्म के चार्जर बना रही है, तो मैं इसको कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू, यहाँ पर कतर में एक चार्जर मिल रहा है. उसकी खास बात यह है कि वो जब आप गाड़ी में प्लग इन कर लेते हैं, जहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग की जगह होती है, सॉकेट में लगाते हैं, तो उसके रिट्रैक्टेबल वायर्स हैं, है ना, वो मिल रहे हैं अराउंड 120 रियाल्स के. आई डोंट नो, अभी 140-130 ऐसे चल रहा था. पहले मुझे लगा ये खराब चीज है, क्या यार वो मतलब है, कोई तू कहे इस बात का, मैं तो अपनी गाड़ी में चार्ज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वायर लगाया चार्ज हो गया. आई वॉज रॉन्ग. ये आप ट्राई करके देखें, जब आप अपनी गाड़ी में इसे लगाएंगे सॉकेट को, तो रिट्रैक्टेबल वायर्स का बहुत फायदा रहता है भाई. आपने फोन चार्जिंग पे लगाया और आपका चाहे कैसी भी पिन लगती हो भाई आपके फोन में, ये काम करेगा. सी टाइप हो, कैसी भी हो, लाइटनिंग केबल हो, सब लगाइए और काम कीजिए. ये बहुत बहुत बढ़िया है. आपने वायर जैसे हटाया अपने फोन से, ये रिट्रैक्ट होकर चला जाएगा. इसमें जो है सॉकेट्स भी, सो यू कैन ऑब्वियसली चार्ज योर लैपटॉप एज वेल, यू कैन चार्ज एनीथिंग यू वांट. एंड ये गाड़ी के मेन सॉकेट से सोर्स जुड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी चार्ज भी करता है, बहुत काम का है. तो अगर कतर में ये मिले आपको, ऐड आएंगे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोचने का नहीं, ले डालने का. ओके, ठीक है जी, ये हो गई गैजेट गुजेट की बातें. अब एक रिमाइंडर, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, FM107 कतर, इस पे आ जाइएगा. कोई गैजेट, कोई ऐप, कोई कुछ भी आपके जहन में आ रहा हो टेक से जुड़ा हुआ, तो हम तक जरूर पहुंचाएं. ठीक है, अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज की तरफ. खबरें बहुत सारी हैं और उन खबरों में एप्पल अभी भी छाया हुआ है. एप्पल जो है रोल आउट करने वाला है iOS 27. आपके पास अगर iPhone 15 से ऊपर है, iPhone 15 से आपका फोन शुरू होता है, तो बढ़िया भाई, इस फॉल में मतलब के कुछ महीनों बाद ही आपको iOS 27 की अपडेट मिल जाएगी. iPhone 15 से पहले वाले फोन्स को नहीं मिलेगी. यस, Apple has said that. उन्होंने बोला कि न्यू असिस्टेंट जो है वो इनिशियली रिलीज होगा एज अ बीटा वर्जन. उसके बाद यूजर्स जो हैं वो मोर और लेस लाइकली ऑप्ट इन करेंगे फॉर सीरी AI, जो कि iOS 27 डेवलपर्स जो हैं वो रोल आउट करेंगे बीटा, उसका टेस्टिंग वेस्टिंग और वो सब अलग चीजें. मगर जो कैपेबिलिटी है इसकी वो आने पर पता लगेगी. आई विल नॉट जज, पर एक चीज है, एप्पल जब भी अपडेट देता है तो पिछले वाला फोन जो है अगर आप अपडेट करते हैं तो पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है, बैटरी यार बहुत जल्दी निकलने लग जाती है, व्हिच इज सैड. तो मुझे अपडेट से डर लगता है, मगर आप करना चाहें, इफ यू हैव अ फोन आईफोन 15 से ऊपर है या आईफोन 15 है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट जो है देना चाह रहे हैं आईफोन 11 को भी, मगर वो बहुत ही वेगली उन्होंने कहा है, तो आई विल नॉट मेंशन दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब गेमिंग न्यूज की तरफ, जिससे मेरा दिल टूटा है।
2: गेम एंड एंटरटेनमेंट।
0: गेमिंग न्यूज में प्लेस्टेशन कम्युनिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था आपको कि इन्होंने बोल दिया है कि सीडीज अब नहीं आएंगी, नो फिजिकल डिस्क, नो नथिंग। अब ये करने के बाद एक केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जापानीज कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा अनॉयड है इस चीज से, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर डिसएग्रीइंग, क्यों कर रहे हो ऐसा। पर प्लेस्टेशन अभी भी अड़ा हुआ है, उन्होंने बोला नो नो नो नो नो, जनवरी 2028 के बाद सोनी जो है किसी भी किस्म की फिजिकल डिस्क नहीं क्रिएट करने वाला है। जहां तक मुझे लगता है जो लीक्स बता रहे हैं, जब प्लेस्टेशन 6 आएगा, आई डोंट नो, कह रहे हैं कि 28 से 29 में आ जाएगा, उसमें पहले ही इन्होंने सेटल कर दिया कि ना भाई कोई डिस्क नहीं है। द सैड पार्ट इज कि बहस छिड़ चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिस्क नहीं है चलेगा, पर मैं उनमें से जो कह रहे हैं भाई फिजिकल डिस्क तो दो। If I want to share a game with somebody, I cannot. Online में कर सकता हूँ, online में share कर सकता हूँ, मुझे अपना account देना पड़ेगा, that is another thing. मगर physical disc की बात कुछ और होती है यार, है ना? तो वो चीज़ खत्म करके इन्होंने बाकियों को भी provoke कर दिया है। अभी Xbox वाले भी कह रहे हैं ना जी ना, हम भी disc खत्म कर रहे हैं, हटाओ हटाओ हटाओ। So ऐसा करने से console तो थोड़ा पतला हो जाएगा, console जो है gaming console, पर इसका फायदा क्या है? You're killing your fans, है ना? I don't know, आपका इस पर क्या कहना है ये आप बता सकते हैं, डिस्क नहीं होगी, I'm just sad. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, FM107 कतर, मुझे बताइएगा कि आप फिजिकल सीडीज के हक में हैं या आपको लगता है कि नहीं जो ऑनलाइन खरीदो तो चल जाएगा, बिकॉज ऑनलाइन खरीदने पे यू डोंट टेक्निकली ओन इट। सीडीज या यस यस, यू थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, बट फॉर नाउ टेक इनोवेशन से मैं दो हवाला कभी लेता हूँ इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्सलाम।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं, गुज़श्ता एपिसोड में भी हमने एंजाइटी की बात की, आज हम बात करेंगे कि ये जो एंजाइटी है, बेचैनी है, उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। मगर सबसे अच्छी खबर ये है कि मुनासिब इलाज और अच्छी आदत के जरिए बेचैनी पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। रोज़ाना की जो आदतें हैं वो हमें तब्दील करनी है, और जैसे कि गहरी और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की एक्सरसाइज कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी कीजिए या कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। मुनासिब और पूरी नींद आप ज़रूर लीजिए। बैलेंस्ड डाइट का बहुत अहम किरदार है। चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स कम से कम इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया और मोबाइल का इस्तेमाल महदूद कर दीजिए। घर वालों और दोस्तों से बात कीजिए। नमाज, दुआ, जिक्र और मुस्बत सोच को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कीजिए ताकि दबाव कम महसूस हो, और अगर ज़्यादा बेचैनी हो तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, माहिर नफ्सियात से आप कंसल्ट कीजिए, और इसी तरह से जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, CBT, अगर वो उसकी ज़रूरत हो तो ज़रूर आप वो लीजिए। ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात भी आप लीजिए, और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवा बिल्कुल शुरू ना कीजिए। और अगर आपके घर में कोई बेचैनी का शिकार हो तो उसकी बात सुकून से सुनिए, उस पर तनकीद ना कीजिए। इसे डॉक्टर से रुजू करने की तरकीब दीजिए। सब्र और मोहब्बत से उसका साथ दीजिए। लिसनर्स, याद रखिए कि जहनी सेहत भी जिस्मानी सेहत जितनी ही अहम है। अगर आप या आपके किसी अजीज को बेचैनी महसूस हो रही है तो खामोश ना रहिए, बर वक्त मदद हासिल करें। मुनासिब इलाज, अच्छी आदत और अहले खाना की हमायत से एंजाइटी पर काबू पाया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको जिस्मानी और जहनी सेहत अता फरमाए। आमीन।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जिसका टाइटल है क्लीन एनर्जी। इस पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे। देखिए, 2030 तक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो लिया जा रहा है वो है कि क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। क्लीन एनर्जी का मतलब है एक ऐसी एनर्जी जो एनवायरमेंट को नुकसान ना दे, जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर। क्लीन एनर्जी होता क्या है? क्लीन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हवा, धूप और पानी से मिलती है। इससे पोल्यूशन नहीं होता और एनवायरमेंट सेफ रहता है। आजकल ज्यादातर एनर्जी कोल और ऑयल से बनती है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा सबब भी बनती है। 2030 तक इसका गोल क्या है? देखिए, दुनिया की कई कंट्रीज ने टारगेट रखा है कि 2030 तक फॉसिल फ्यूल का यूज कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, कार्बन इमर्शंस कम करने हैं। यानी एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्लीन सोर्सेस से आए। इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, 2030 तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। सोलर पैनल्स घरों पर, लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाएंगे और अपनी बिजली खुद ब खुद प्रोड्यूस करेंगे। वहीं पर पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल, जो कि पोल्यूशन को कम करेगा। और स्मार्ट सिटीज शहर ऐसे डिजाइन होंगे जहां एनर्जी वेस्ट ही ना हो और हर चीज एफिशिएंट हो। वहीं क्लीन एनर्जी से नए जॉब्स क्रिएट होंगे, सोलर पैनल इंस्टॉलर्स के, विंड टर्बाइन इंजीनियर्स के, एनर्जी एक्सपर्ट्स के। और इससे इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि पोल्यूशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज स्लो होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटर प्लैनेट मिलेगा। और चैलेंजेस भी हैं इसके अपने कई। क्लीन एनर्जी सिस्टम महंगा हो सकता है, टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, लोगों को अवेयर करने की सख्त जरूरत होगी। दोस्तों, 2030 तक क्लीन एनर्जी का यूज बढ़ाना एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। ये सिर्फ एनवायरमेंट को सेफ नहीं रखेगा बल्कि इंसान की जिंदगी को भी बेहतर बनाएगा। अगर दुनिया मिलकर काम करे तो 2030 तक एक क्लीनर और हेल्दियर प्लैनेट मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो 3FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों टू इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन डेली डिसीजंस की जो एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। साथियों, आज का टॉपिक है ग्लास वर्सेस प्लास्टिक कंटेनर्स, यानी हम जो कंटेनर्स खाना स्टोर करने, पानी रखने या लेफ्टओवर्स सेव करने के लिए यूज करते हैं, उनमें कौन सी चॉइस ज्यादा इको फ्रेंडली है। ये सिर्फ किचन का डिसीजन नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का भी पार्ट है। साथियों, जरा सोचिए, आप अपना फ्रिज खोलते हैं और अंदर प्लास्टिक कंटेनर्स का एक जंबल पैदा हुआ हुआ होता है। एक में करी पड़ी हुई है, दूसरे में कहीं राइस पड़े हुए हैं, तीसरे में कहीं स्नैक्स पड़े हुए हैं। कुछ स्टेन हो जाते हैं, कुछ स्मेल होल्ड कर देते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम बाद रिप्लेस करने पड़ते हैं। अब भाई, अगर कंपेयर करें ग्लास कंटेनर के साथ तो भाई कैसा होगा? क्लियर विजिबिलिटी, नो स्मेल और लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी। इको स्विच यहाँ बताता है कि छोटी सी स्विच यानी प्लास्टिक से ग्लास या ग्लास से भी बेटर रीयूज किचन हाइजीन और एनवायरनमेंट दोनों को इम्प्रूव कर सकता है। अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो आपको कंपेयर करने पर मजबूर कर देंगी इन चीजों को। देखिए भाई, प्लास्टिक कंटेनर्स को डिग्रेड होने में कितने 400 से 500 साल लग जाते हैं। ग्लास 100% रिसाइक्लेबल होता है बिना क्वालिटी लॉस के, यानी ग्लास इन्फिनिट टाइम्स रिसाइकल हो सकता है। अच्छा, प्लास्टिक कंटेनर्स के कंपैरिजन में ग्लास फूड टेस्ट को अफेक्ट नहीं करता और केमिकल लीचिंग का रिस्क जीरो होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई, ग्लोबली हर साल आप कह लें कि मिलियंस ऑफ टन ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट सिर्फ फूड स्टोरेज और टेकअवे कंटेनर से ही जनरेट होता है। अच्छा, इको स्विच को यहाँ अगर सिंपल सा लिया जाए ना, तो इको स्विच का आइडिया यहाँ सिंपल है, स्टोरेज को सस्टेनेबल बनाना। जब हम ग्लास कंटेनर्स यूज करते हैं तो हम प्लास्टिक वेस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक, अगर एक एवरेज हाउस होल्ड प्लास्टिक स्टोरेज को 50% ग्लास से रिप्लेस करे तो वो साल भर में डजन्स ऑफ किलोग्राम्स प्लास्टिक वेस्ट अवॉइड कर सकता है। साथ ही ग्लास कंटेनर्स ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती। जरा सोचिए ना, आप वीकेंड मील प्रेप करते हैं, राइस हो गए, चावल वगैरह, करी, सब्जियां सब स्टोर करते हैं ना, तो भाई प्लास्टिक कंटेनर्स में कुछ दिन बाद स्मेल रह जाती है, या उनके अंदर आपने कभी देखा होगा कि वो ऑयल के स्टेन्स भी रह जाते हैं। अब सेम चीज अगर ग्लास कंटेनर में स्टोर की जाए, रीहीट सेफ हो जाता है, क्लीनिंग इजी हो जाता है और फूड, आपका जो खाना आपने रखा होता है वो ज्यादा देर फ्रेश रहता है। इको स्विच पर्सपेक्टिव ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में ग्लास नॉट ओनली इको फ्रेंडली है बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। चलिए आप कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल इको स्विच टिप्स पर चलते हैं जो घर में फॉलो की जा सकती हैं भाई बड़ी आसानी से। पहला ये कि डेली यूज के लिए ग्लास कंटेनर्स प्रेफर करें, स्पेशली लेफ्ट ओवर्स के लिए। दूसरा, अगर प्लास्टिक यूज हो भी रहा है तो BPA फ्री और रीयूजेबल क्वालिटी चूज करें। तीसरा, माइक्रोवेव और गर्म खाने के लिए प्लास्टिक अवॉइड करें। चौथा, पुराने ग्लास जार्स, यानी कि जैसे जैम या सॉस जार्स होते हैं ना, उनको रीयूज करें स्टोरेज के लिए, बहुत शानदार रीयूज होते हैं वो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किचन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर्स यूज करें ताकि खाना वेस्ट कम हो। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हम सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें। प्लास्टिक शुरू में तो इजी लगता है, लेकिन ग्लास ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी इज बेटर। अच्छा, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हाउस होल्ड ग्लास स्टोरेज अडॉप्ट करते हैं ना, उनका खाना कम वेस्ट होता है क्योंकि विजिबिलिटी बेटर होती है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने किस बॉक्स में क्या रखा था। आखिर में भाई, इको स्विच का सिंपल मैसेज है और वो ये है कि हर कंटेनर सिर्फ स्टोरेज नहीं होता बल्कि एक एनवायरमेंटल चॉइस होती है। ग्लास और प्लास्टिक के बीच सिर्फ मटेरियल का डिफरेंस नहीं है बल्कि हमारे फ्यूचर का भी डिफरेंस है। तो भाई, अगली बार जब आप कंटेनर चूज करें ना, तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। इज दिस हेल्पिंग माई किचन टू स्टे सस्टेनेबल? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच FM 107 कतर पर, जहाँ हर बॉक्स सिर्फ कंटेनर नहीं बल्कि एक क्लीन फ्यूचर का डिसीजन होता है।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती हैं कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है।
1: दोस्तों वो कहते हैं ना कि हिम्मत वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है, लेकिन उसके लिए पहला कदम तो हमें ही बढ़ाना होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू दिस इंस्पायरिंग शो कॉल्ड इंस्पायरिंग वुमेन। इंस्पायरिंग
2: वुमेन उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती।
1: दोस्तों इस शो के जरिए हम उन फीमेल्स की कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको और हमें इंस्पायर करती हैं। फिर चाहे उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी कुव्वत से, किसी भी तरह से अपनी और दूसरों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया हो। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कमाल की इंस्पायरिंग वुमेन की जिनका नाम है रानिया। अगर देखा जाए तो ये सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट है और इस तरह की लर्निंग और रिसोर्सेज और प्ले बेस्ड रिसोर्सेज को जो है वो इंट्रोड्यूस और प्रोवाइड करती हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपने सफर की शुरुआत कैसे कब की। तो सबसे पहले तो हम वेलकम कहना चाहेंगे रानिया आपको ऑन एफएम 107। हाय रानिया, हाउ यू डूइंग?
3: हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, गुड। Okay, Rania, since we know that you are a specialist in autism, so what actually drew you to specialize in autism? And was there a personal moment or story that actually shaped your this mission?
3: Since I started my teaching career, special needs has always been my passion and something that I find pleasure to work with kids with special needs. And it happened that my son was diagnosed with autism at 3 years old. So that made me go deeper into autism and made me read more about it and learn more about it. And it became one of my passions and one of the things that I want to learn about and spread awareness about in life.
1: Wow, you're a strong mother.
3: Thank you.
1: Wow, beautiful. Okay, share any of a specific daily routine or play activity you introduce that you feel that has produced a surprising breakthrough.
3: Yes, actually when dealing with a child with special needs and especially with autism, daily routines are very important. Okay. To establish a routine that we follow every single day with every activity. And for us, the visuals during the day, especially when we are at home, were very important. So okay. My child can predict what is happening next and he's aware of the steps of the day. The second thing, when we wanted to potty train him with a toilet, visual aids helped us a lot, and creating a routine for that process itself helped him to go through.

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं शो इंस्पायरिंग वुमन।
2: उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
1: Okay, Rania, how would you like to define the future of an autistic child?
3: I wouldn't put an autistic child in a box because they are really out of the box people. They can be. And again, I cannot generalize on all autistic children because they are all unique. And I am hoping for a future full of opportunities, full of inclusion and

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इलाज सिर्फ दवा नहीं,
2: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाज़े रहनुमाई,
1: मिथ्स की खोल, प्रैक्टिकल टिप्स, हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे,
2: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ।
1: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: नहीं होता कि निकलने का, तो क्योंकि सलाइवा मुंह के अंदर होता है तो फर्स्ट स्टेप पे सलाइवा के अंदर रख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट सलूशन है
1: जी।
0: इसके अलावा कोई अगर चाइल्ड है तो वो निकलने का डर होता है तो आप इसको या तो सलाइन में रख सकते हैं या जो कोल्ड वाटर मिल्क होता है, दूध जो होता है, आप उसमें भी रख सकते हैं।
1: अच्छा
0: जी। और अगर अडल्ट लोग हैं या अडल्ट पेशेंट है तो वो कोशिश कर सकते हैं कि एक दफ़ा उसको क्लीन करने के बाद डायरेक्ट अगर मुंह में लगा सकते हैं खुद से, तो कई दफ़ा वो भी कारामद होता है तो वो
1: अच्छा,
0: भी लगा सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसे पॉसिबल है कि लगा सकते हैं?
0: जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर सॉकेट से ही दांत बाहर आ गया, उसकी रूट जो है जड़ है बिल्कुल साथ आ गया
1: जी,
0: तो वो उसको क्लीन करने के बाद आप दोबारा अपने मुँह के अंदर रख सकते हैं और उसको थोड़ा सा बाइट करके रखें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आता है टाइमिंग का। फॉर एग्जांपल आपका कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है उसके बाद एक एक मिनट बहुत ज़रूरी होता है। असूलन जो है आइडली जो है 20-30 मिनट्स के अंदर आपको अपने डेंटिस्ट के पास लाजमी जाना है, कोई भी इमरजेंसी डेंटल क्लिनिक हो आपने वहाँ पर लाजमी तौर पर विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर पहुँचना है, ताकि वो सारी चीज़ को असेस कर सकें और उस कंडीशन को चेक करके उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जा सके। क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट उतना कारगर नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर आप अर्ली जाते हैं। और कोशिश करें कि अगर आपका जो दांत है वो अगर टूटा है या उसका कोई भी हिस्सा है उसको संभाल के रखें, उसको साथ अपने लेके, ये जो मैंने 2-3 सॉल्यूशंस बताए, एक सलाइवा हो गया
1: जी,
0: एक इसके अलावा दूध हो गया, इसके अलावा सलाइन या पानी में आप रख के उसको जा सकते हैं डेंटिस्ट के पास। तो ये डिपेंड करता है आप कितना जल्दी जाते हैं, जितना जल्दी जाएंगे उतना जो उसका ट्रीटमेंट है वो अच्छा हो सकेगा।
1: ठीक ठीक। और स्पेशली ये से आपने बताया कि सॉल्यूशन जो है वो उसमें रखना बहुत ज़रूरी है, एक तो सलाइवा है और ठंडा दूध आपने बताया
0: बिल्कुल।
1: था बिल्कुल, ये नई मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन है। ज़ाहिर है आप डेंटिस्ट हैं, आपका फील्ड है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम जैसे कि दांत निकल गया या दांत टूट गया तो हम उसी पे परेशान हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: हैं।
0: जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे सुनने वाले हैं वो थोड़ा सा हम उनको टेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये खासतौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है
1: जी।
0: क्योंकि जैसे ही वो 2-3 साल के होते हैं चलना स्टार्ट करते हैं तो वो
1: कभी गिरते हैं
0: कोई चीज़ लग जाती है, क्योंकि वो बेफिक्र होके भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं
1: जी।
0: तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ये इंजरी हो सकती है, दांत टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके दांतों के साथ।
1: ठीक, ये बहुत अहम पॉइंट है लिसनर्स, और ये मेरे ख्याल हम सब के लिए भी कि बच्चों के तो अक्सर कुछ ना कुछ जो है ना वो कोई ना कोई जो छोटा सा पार्ट है वो भी बाजू का टूट जाता है, तो उसे भी आपने
0: जी बिल्कुल
1: भी रखना है।
0: मैंने जैसे पहले फरमाया कि कुछ अगर पार्ट टूट जाए दांतों का तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉर्नर टूट गया है, कोई पार्ट टूट गया है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कॉम्पोजिट फिलिंग कर सकते हैं
1: जी, जी।
0: वो एक आप समझे सिंपल सी इंजरी है जो कि मोस्ट कॉमन है, ये इमरजेंसी में नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर उसका कोई शार्प एज है वहाँ पे उसको आपको स्मूथ आउट करवाना है, क्योंकि वो जो शार्प एज है वो आपकी जुबान को भी इंजर करेगा, आपके होंठों को कर सकता है और बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी कर सकता है। इसलिए इसके अलावा भी अगर आपको कभी भी शार्प एज आपके दांतों में फील हो रहा है जुबान से या गाल से किसी भी चीज़ के साथ, उसको आपने जाके स्मूथ आउट करवाना है। इंजरी किसी किस्म की भी हो आपने फौरी तौर पे अपने डेंटिस्ट के पास जाना है या जो भी करीब आपको हॉस्पिटल पड़ता है लाजमी आपने जाके चेक करवाना है।
1: ठीक ठीक। इस तरह से आपने डॉक्टर साहब बताया कि दांत जो है टूट गया या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई और उसमें यह कि पहले थोड़ा सा उसको मैनेज करना है, मगर अगर नहीं हो रहा खासतौर पर ब्लीडिंग की बात है तो फिर इमरजेंसी में जाना बहुत ज़रूरी
0: जी बिल्कुल। अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो आपने कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा आइस अप्लाई करें। ठीक है, और बस ये कोशिश करनी है कि जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो डायरेक्टली स्किन के साथ अटैच ना हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई लिप इंजरी हो जाती है या कोई भी दांत पे होता है तो आपको उसको थोड़ा सा जो है आइस के साथ उसको थोड़ा सा मसाज करना है 10-15 मिनट के लिए। अच्छा। उससे जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ी सी कम होगी।
1: ठीक ठीक बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया कि दांत निकल गया चोट से या ट्रामा से कुछ भी, तो उसका हल जैसे है डॉक्टर के पास यानी आप लोगों के पास पहुंचने से पहले पहले हमें क्या करना है, तो उसके बाद जो आप इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वो रूट कैनाल कराई है और इसी तरह से अगर वो चोट लग जाए उसमें तो फिर क्या हम कर सकते हैं उसमें? बाजू का तो उस पर जो क्राउन लगा होता है वो
0: जी
1: भी टूट जाता है या फिर बहुत मुश्किल आ जाती है।
0: जैसे आपने क्राउन की बात की और अगर आपने पहले ही कोई प्रोसेसेस लगवाई हुई हैं जो कि क्राउन है, ब्रिज है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो निकल गया है तो आप अगर वो जिस व्हाटएवर कंडीशन में वो आपके पास है आपने उसको संभाल के रखना है।
1: अच्छा
0: जी, किसी कंडीशन में ऐसे होता है कि वही जो आपका क्राउन या ब्रिज बना हुआ है वो दोबारा भी लग सकता है अगर वो बहुत ज्यादा टूटा नहीं है, ठीक है।
1: अच्छा,
0: तो उसकी उसकी फिटिंग चेक करते हैं, अगर फिटिंग सब कुछ नॉर्मल हो, क्योंकि अक्सर औकात जिस तरह की उसका शेप होती है क्राउन वैसे ही बाहर निकल आता है, तो उसको हम दोबारा से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया कि कोई पार्ट या कॉर्नर टूट गया वो हम फिलिंग से ठीक कर सकते हैं। सारा जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्रैक्चर है, किस टाइप की इंजरी हुई है, किस टाइप का ट्रॉमा है दांत के साथ। अगर ऊपर वाले पार्ट में है तो फिलिंग से ठीक हो जाएगा, और अगर उसकी कुछ डीप लेयर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे दांत के अंदर डेंटिन होता है और जो उसकी नर्व सप्लाई होती है उसको हम पल्प कहते हैं
1: जी।
0: तो अगर जो है वो ट्रॉमा आपके पल्प तक पहुंच गया तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमें काफ़ी हद तक रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो भी दांत की कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो बाज़ औक़ात दांतों के सिलसिले में ऐसा होता है कि स्टार्ट में ऐसा पेन उस तरह से नहीं होता
1: जी।
0: लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जो है वो अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है। इसमें
1: अच्छा।
0: कलर चेंजेस भी आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोग होते हैं उनको सेंसिटिविटी भी होती है, ठंडा गर्म स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा लगना, तो ये कुछ दिनों के बाद जो अपने सिम्टम्स हैं वो शो करता है।
1: इसमें डॉक्टर साहब ने कलर चेंज की बात की, तो क्या वो जो ब्लैक सा हो जाता है?
0: जी जी बिल्कुल,
1: या और कोई?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई इंजरी हुई तो उसके बाद जो उसका कलर चेंज होता है इसका मतलब है कि उसकी जो नर्व और ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं।
1: अच्छा
0: जी, तो बाजू का जो है वो दांत वाइट से पहले हल्का सा पिंक कलर का होता है और उसके अच्छा। बाद फिर वो ग्रे और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है, जो उस पल्प होता है, वो इन्वॉल्व हो चुका है, उसमें चेंजेस आ रही हैं। वो नेक्रोसिस हो सकती है जो कि शो करता है कि दांत जो है वो ऑलमोस्ट डेड है। तो ऐसी कंडीशंस में आपने कभी भी घर में खुद से ट्रीटमेंट नहीं करने, आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो उनको अच्छी तरह क्लिनिकल असेस करेंगे, और हमेशा एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे में चीज़ क्लियर होती है कि नीचे आया जो रूट है उसके सराउंडिंग्स, उसकी कंडीशन कैसी है। ये एज पे भी डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल एडल्ट एज है तो उसमें हम क्योंकि नीचे वाले दांत आ चुके होते हैं जो परमानेंट दांत होते हैं, तो फिर उसको हम डिफरेंट ट्रीट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बच्चों में उसका ट्रीटमेंट होता है ना
1: जी।
0: क्योंकि वो मिल्की टीथ होते हैं और नीचे जो है परमानेंट दांत आ रहे होते हैं, तो उनका थोड़ा सा सेपरेट ट्रीटमेंट होता है।
1: तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि कोई भी ट्रामा है और ज़्यादा हो गया है, या उसमें पूरा जो उसका टीथ है वो इन्वॉल्व है दांत, तो उसमें रूट कैनाल करनी ज़रूरी होती है ट्रामा में?
0: नहीं नहीं, देखिए ये काफ़ी लोगों की मिथ बनी हुई है कि कोई भी ट्रामा हो या कुछ भी हो तो वो या तो दांत या बिल्कुल वो या तो वो रूट कैनाल करवाएंगे या वो ये समझते हैं कि अब दांत को निकालना पड़ेगा
1: जी।
0: इससे मैंने पहले कहा कि अगर दांत किसी ट्रामा में वो बाहर भी निकला था अपने सॉकेट से, तो बाज़ औक़ात वो जो दांत है वही अपनी अगर हम दोबारा लगा दिया जाए, अगर वो जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी क्लिनिक पहुंच जाए,
1: बिल्कुल
0: लेट ना करे, और उसने रूट को जो है जड़ है उसकी उसको साफ ही रखा हो, उससे ना क्लीन किया हो, तो बाज़ औक़ात जो है वही दांत दोबारा रीइम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कभी इंजरी में दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ टाइम के बाद उसको स्प्लीन कर दिया जाता है, वो अपनी जो ग्रिप है पकड़ है वो दोबारा से पकड़ लेता है, तो वो डिफरेंट उसमें सिनेरियो आ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें रूट कैनाल की जाए। जैसे मैंने कहा कि जो अगर बच्चों के दांत हैं जो मिल्की टीथ होते हैं उनमें अगर इस तरह का कोई इशू हो जाए, अगर दांत बाहर निकला है तो मिल्की जो दांत है जो डिसीडियस टीथ जिसे हम कहते हैं वो हम कभी भी वापस दोबारा नहीं लगाएंगे। ये जो दोबारा लगाने वाली बात है ये सिर्फ अडल्ट पेशेंट में होगी जो परमानेंट दांत होता है। दूध का दांत हम कभी भी दोबारा नहीं लगाते क्योंकि नीचे जो है वो एक परमानेंट दांत आ रहा होता है। ठीक है, तो हम उसमें कभी भी वो नहीं लगाते, इसलिए बच्चों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू अडल्ट का।
1: ठीक है, डॉक्टर साहब आपने कहा कि वो जब दांत से लगाते हैं उसी सॉकेट में और वो ऐसे ही जैसे इम्प्लांट हो जाता है, तो क्या वो रूट समेत बाहर आ जाता है कि रूट जो है वो अंदर ही होती
0: है? ये ट्रॉमा पे डिपेंड करता है।
1: अच्छा,
0: बाजू का आधी रूट अंदर ही रह जाती है बाकी बाहर आ जाता है, उस केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर वो परमानेंट दांत है तो वो फिर हम रूट को निकाल के तो इम्प्लांट जो एक सेपरेट ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है। इन केस अगर कोई परमानेंट टूथ जो है वो पूरा निकला है तो उसको हम एज इट इज सॉकेट के अंदर दोबारा लगाते हैं, उसको रीइम्प्लांट किया जाता है। कई बाज़ुकात में जो टेम्परेरी स्प्लिंट होते हैं वो पहना दिया जाता है।

को, ताकि जो दांत अपनी जगह पे है वो उसी जगह पे कुछ अरसा रहे, ताकि अगर उसकी नेचुरली ग्रिप बन सकती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर उसको तारों के साथ कभी लगा दिया जाता है ताकि टाइम के साथ उसको

0: नहीं करते क्योंकि नीचे जो हमारा नेचर टूथ आ रहा होता है वो उसको अफेक्ट कर सकता है. अगर हम वो लगाएंगे नीचे इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी जो नीचे वाला दांत है उसको प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि जो मिल्की टीथ होता है उसने वैसे भी टाइम के साथ निकल जाता है. तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि एज क्या है बच्चे की, जब वो ट्रॉमा हुआ है उसके जो नीचे दांत आ रहा है उसकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है.
1: अच्छा.
0: ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है और इसके लिए जो है वो पेरेंट्स को बच्चों को क्लिनिक लाना पड़ेगा. घर से ये खुद से वो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कुछ एक्सरसाइज करने पड़ते हैं उसमें ये चीजें क्लियर होती हैं कि नीचे कितनी डेवलपमेंट हुई है, जो नीचे परमानेंट दांत था और कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है. तो ये क्लिनिकल सारा एग्जामिन किया जाता है.
1: ठीक है. इसमें ये सारी जो चीज़ें इसमें यही कि उसमें एक्सरे कराना और ये जो है मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. अब तो इसमें बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि खुद से ही जो टीथ है बगैर किसी चोट के, ट्रामा भी नहीं है, फिर भी वो दांत गिर जाते हैं, जैसे कुछ एजेस पे जैसे आपने कहा डिपेंड करता है, तो वो क्या किस तरह से?
0: देखिए वो जो नेचुरली है वो डिफरेंट उस पर आ जाती हैं कंडीशंस. जैसे फॉर एग्जांपल उनके मसूड़े कमज़ोर हैं किसी भी एज में हो सकते हैं. अगर कोई दांत उस तरह से साफ नहीं करता तो सबसे पहले पेरियोडोंटाइटिस होता है, जो मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जो हमारे मसूड़े हैं वो बेसिकली एक कवर है हड्डी का. हड्डी के अंदर हमारा दांत है तो जैसे हम क्लीन नहीं करेंगे वहाँ पे फूड पार्टिकल्स आएंगे, ऐसा ऐसा जो हमारी पकड़ है उस दांत की वो कम होने लग जाती है. तो जिसको भी मसूड़ों का मसला हो, गम्स का मसला हो, तो उनकी जो ग्रिप जैसे कम होगी तो वो दांत खुद से बाहर आ जाते हैं. ये मोस्टली उन एजेस में होता है, खासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या उन्हें कोई भी मेडिकल रीजन हो, इशू हो, तो उनमें जो है दांत ऐसा ऐसा कमजोर हो जाते हैं विद एज भी ये चीज जो है वो सामने आती है.
1: ठीक. तो इसमें भी फिर आप उसमें इम्प्लांट करते हैं या किस तरह से, जैसे पेशेंट आपके पास आए तो कोई एग्जांपल हमें दीजिए कि किस तरह के जो पेशेंट हैं वो इस तरह के जो ट्रामा है उसमें इन्वॉल्व होते हैं.
0: जरूर. सबसे पहले जो डेंटल ट्रीटमेंट है ये पेशेंट्स की एज ठीक है और उसकी जो लिविंग हैबिट है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस के ठीक है और सबसे जो मेन है वो जो उसके मुंह के अंदर बोन है वो उसकी कंडीशन कैसी है. अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हेल्दी है, बाय एनी चांस उसका दांत जो है वो निकलना पड़ गया, अगर हमने उस पर इम्प्लांट करना है तो एक तो उसको मेडिकल कोई इशू नहीं होना चाहिए सबसे जो आइडियल सिनेरियो होता है और एक अच्छी वहाँ पे जो बोन है उसका मौजूद होना ज़रूरी है. जब वो होता है तो वहाँ पे हम इम्प्लांट कर सकते हैं. इम्प्लांट के लिए डिफरेंट टाइमलाइन होती है. कम से कम जब हम स्टार्ट करते हैं दांत निकालने के बाद एक इम्प्लांट जो स्क्रू होता है वो हम हड्डी के अंदर रखते हैं, उसके बाद 2 से 3 महीने उसका वेट करते हैं जब तक उसकी पकड़ बन जाती है, तो उसके बाद ऊपर उसका जो कवर होता है वो हम लगा देते हैं. तो ये तकरीबन 3 से 6 माह का टाइम होता है, लेकिन ये हम ट्रॉमा के अंदर काउंट नहीं करेंगे. इन केस फॉर एग्जांपल अगर कोई हादसा होता है और दांत जो है बिल्कुल 2 हिस्सों में हो जाता है या दांत गिर के निकल जाता है और वो मिलता नहीं है या वो दोबारा लग नहीं सकता, फिर उस सिनेरियो में हम इम्प्लांट करते हैं या कोई भी फिक्स ब्रिज कर सकते हैं, जो भी पेशेंट की टाइप होती है उस पर डिपेंड करता है.
1: अच्छा. ठीक. और ये जो ख़ासतौर पर जैसे आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया तो उसमें बहुत सारे जैसे गम्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो इन्फेक्शन है वो हो जाती है, तो ये भी एक वैसे तो हो जाती है मगर ये कि इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं.
0: जी बिल्कुल.
1: ठीक.
0: ये तो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं से आपका दांत निकला है किसी जगह से और आप वहाँ पे नहीं लगाते तो टाइम के साथ क्या होता है जो आपकी जो बोन होती है, हड्डी होती है, वो रिजॉल्व होने लग जाती है, वो नीचे की तरफ जाने लग जाती है, जिसकी वजह से जो आपके बाकी दांत हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, जो क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस बनती है वो बाकी दांतों में भी स्प्रेड कर जाती है.
1: ठीक. डॉक्टर साहब और कोई वजूहत हो सकती हूँ जैसे कि हम बात करते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी जो हैं वो या रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आप हमें बता सकते हैं?
0: जी, रिस्क फैक्टर खास तौर पे अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो जो हमारे चिल्ड्रंस आ जाते हैं जो कि बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा देखभाल उनकी करनी है क्योंकि वो जब खासतौर पे स्कूल में होते हैं या वो वैसे प्ले ग्राउंड में जब खेल रहे होते हैं तो कोई भी किसी भी इंजरी की वजह से उनके दांतों को नुकसान हो सकता है. तो एक तो उनको थोड़ी सी एहतियात भी बतानी है, साथ साथ इंस्ट्रक्शन देनी है और उनका जो खासतौर पे टोटलर्स हैं उनको आपने 24/7 जो देख के रखना है क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए भी पेरेंट्स आगे पीछे होते हैं तो वो कभी बेड से या कहीं से भी गिर सकते हैं तो उनको वो ये चोट लग सकती है। और मोस्टली जो है ये इंजरीज जो है ये बच्चों में ही ज्यादा देखी जाती है। इसके

0: बाद आते हैं हमारे पास जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स इंजरी होती है, और इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी जो फॉर एग्जांपल विद एज जो है वो कभी हो जाए, उनसे गिरना हो जाए तो वो भी दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। या इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, और उसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा सीवियर इंजरीज होती हैं जिसमें आपका लिप इन्वॉल्व हो सकता है, जी कोई भी इन टिश्यू जो है वो इंजरी हो सकती है उसकी।
1: सर डॉक्टर, जैसे कि ये ब्रेसिस लगाए जाते हैं वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस में हो जाती हैं, वो उस पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या उसकी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है या क्या है, या तो अक्सर जो ब्रैकेट्स हैं जैसे हमने पहले भी आपसे बात की थी कि वो टूट भी जाती हैं, कभी वो बिल्कुल शार्प एजेस हो जाते हैं, तो वो
0: ब्रेसिस में भी ऐसे इमरजेंसी हो सकती है। जैसे आपने खुद बताया कि कोई ब्रैकेट टूट गया या कोई वायर ब्रेक हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डाइट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपने बहुत एहतियाती खाना खाना है, तो अगर इन केस वो अगर उसको इग्नोर करें और फास्ट फूड खाएं, बर्गर या कोई भी इस तरह की सख्त चीज़, तो ब्रैकेट या वायर टूटने से शार्प एज जो होता है वो आपको लिप पे या टंग पे या चीक पे लग सकता है, तो जितना प्रोलोंग होगा वहाँ पे वो ज़्यादा वहाँ पे मसला करेगा। इसलिए जैसे ही आपको ऐसा कोई सिनेरियो सामने आए तो आप फौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाएं।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: دس از پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈینٹل ایمرجنسیز کیا کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں ہم تو بس یہی بس جانتے ہیں کہ اچھا بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی یا کہیں چوٹ لگ گئی تو یہی ایمرجنسی ہے مگر یہ کہ اور بھی کیا کیا ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد رہاب خان جو کہ ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ اب ڈائگنوسس تو ہم کیسے کرتے ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چوٹ کس طرح یا ٹراما کیسے ہوا ہے کہ ایسا ہی ہے
1: جی بالکل جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی ٹراما ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے
0: جی
1: ٹھیک ہے اور خود سے آپ نے گھر میں ڈائگنوسس نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے اس کے لیے ایکس رے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے
0: جی
1: کیونکہ ایکس رے میں جو ہے وہ آپ کی ایک کلیئر پکچر نظر آتی ہے کہ نیچے جو دانت ہے اس کے جو سراؤنڈنگ اسٹرکچرز ہیں وہ کیسے ہیں نیچے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے نیچے کوئی سویلنگ تو نہیں ہوئی ہوئی اور اس کے علاوہ جو باقی دانت ہے اس کے ارد گرد ان کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہوا تو یہ چیز اور اس کے علاوہ کلینیکل ایگزامینیشن بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جو دانت ہے وہ اس کے فریکچر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں یا تو اوپر والے حصے کا فریکچر ہوا ہے جس کو ہم کراؤن بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ نیچے والا جو روٹ ہے اس کو فریکچر کیا تو اس کا زیادہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ فریکچر جو ہے وہ روٹ کے اندر ہوتا ہے کیونکہ جو جڑ ہے وہ ہماری ہڈی کے اندر ہے تو وہ جو منہ کے اندر ہے وہ نظر نہیں آئے گا اس لیے ایکس رے کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ساری کلیئر پکچر ہے وہ ایکس رے میں پتہ چلے گی کہ یہاں سے یہ فریکچر ہے کیونکہ یہ جو ہے کبھی کبھی انویزیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے منہ کے اندر پیرنٹس کو نظر نہیں آتا کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ویکس کے بعد جو بچہ وہ کمپلین کر سکتا ہے کہ مجھے ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے یا مجھے پین ہو رہا ہے تو اس کے جو سمپٹمز ہیں کچھ دنوں کے بعد سامنے آتے ہیں
0: ٹھیک اس میں ڈاکٹر صاحب جنرل ہم بات کر رہے ہیں اگر جیسے کہ کوئی چوٹ لگی ہے تو اس میں کیا کیا سمپٹمز یا علامات ہو سکتی ہیں کہ سویلنگ ہو گئی بلیڈنگ ہو گئی یا کچھ اور کیا کیا ہو سکتا ہے
1: اس کے علاوہ جو سب سے مین ہے وہ ٹھنڈا گرم لگتا ہے
0: سینسٹیویٹی
1: سٹارٹ ہو جاتی ہے
0: جی ٹھیک
1: اس کے علاوہ جو ہے پین بہت زیادہ ہوتا ہے
0: اچھا
1: فریکچر کی کچھ علامات ایسے بھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی چیز وہاں سے کوئی انسان کھاتا ہے تو وہاں پہ اگر اس کو پین ہو رہی ہے اٹ مینس کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹربل ہے جس کو ڈائگنوز کلینک جا کے کروانا پڑے گا اور ان کیس اگر کوئی فریکچر ہے تو اس کیس میں ہمیں پھر دانت کو نکالنا پڑ جاتا ہے اور اگر کوئی ایسا فریکچر ہو جو کہ ریسٹوریبل ہو سکتا ہو ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ ایڈیسیز ہوتے ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں فار ایگزامپل اگر کوئی کراؤن ٹوٹتا ہے کسی کا دانت کا کوئی بھی حصہ ٹوٹتا ہے اس حصے کو جیسے میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی کہ اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ جو دانت کا حصہ ہوتا ہے وہ ہم دوبارہ سے لگا سکتے ہیں اس میں ایکسٹرا ٹریٹمنٹ آپ کو وہاں سے کروانا نہیں پڑتا ان کیس اگر آپ کا وہ پارٹ وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اور بہت ہی مینیمل فریکچر ہوا ہے یا ٹراما ہوا ہے تو وہ ہم کمپوزٹ فلنگ ہوتی ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی ہے تو وہ آ جا کے پھر روٹ کینال کرنی پڑتی ہے ان کیس اگر جو ٹراما ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے
0: ٹھیک ٹھیک
2: آپ سن رہے ہیں FM 107
3: دل سے دیسی
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
5: کرکٹ ہو
6: and he's hooked that away. That's four runs.
5: فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں
7: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ سپورٹس کی دنیا سے
5: ٹیون ان کریں سپورٹس راؤنڈ اپ دوحا والے کبیر کے ساتھ ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM
7: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی
8: سپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے سپورٹس ورلڈ ریکارڈز سپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1 PM سے صرف FM 107 پر سپورٹس ورلڈ ریکارڈز جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں
9: ارے موسی جی قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو FM 107 دل سے دیسی
0: اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اس میں فریکچرز بھی ہو جاتے ہیں ये जो हमारा दांत है उसके अंदर फ्रैक्चर होगा, या जैसे जाहिर है सॉकेट है, बोन है, तो वो भी एक बोन है, तो होता रास्ता वहाँ पर भी
1: जी, ये जो ट्रॉमा है ना, ये उसकी डिपेंड करते हैं कि कितनी ये फोर्स के साथ हुआ है, ट्रॉमा की टाइप क्या है।
0: कई
1: ट्रॉमा में आपका जो पूरे मुंह की हड्डी है वो टूट जाती है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा वो खतरनाक किस्म के होते हैं, जिसमें आपका जो जबड़ा है वो टूट सकता है, यहाँ पे जो हड्डी होती है जो हम TMJ कहते हैं वो डिसलोकेट हो सकती है, इवन आपकी जो बाइट है वो बंद करना मुतासिर हो जाती है। कई ट्रॉमा में तो आपके जो वो हड्डी जैसे मैंने बोला यहाँ पे लॉक हो जाती है, आप मुंह नहीं खोल सकते, तो ये बहुत ज्यादा सवेर इंजरीज हो जाती हैं। और इस केस में जो आपका ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है उसको दिखाना आपने लाजमी है।
0: ठीक ठीक, और ये कि वो तो अगर इमरजेंसी में गए तो वो खुद ही रेफर कर देते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, वो टाइप ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है, और जैसे ये मैंने जो चीजें बताई हैं, ये जो हमारे सुनने वाले ये घबराना थे कि ये बहुत ज्यादा सवेर है, लेकिन ये होता है खासतौर पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स में कोई बहुत सवेर इंजरी हो जाती है तो ये चीजें होती हैं। ये जो आपके दांत हैं वो बिल्कुल ही बाहर आ जाते हैं, खाली एक नहीं मल्टीपल टीथ, डिपेंड करता है कैसी आपको इंजरी हुई है। तो इस केस में वो जो है रेफर कर देते हैं कि आप जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है आप उसको जाके एक दफ़ा दिखा दें, क्योंकि वो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सवेर केसेस में होता है जिसमें अक्सर आपके जो जॉज हैं जो उनकी सर्जरीज करनी पड़ती है, जब आप मुँह ज़्यादा ना खोल सकें या आपकी जो TMJ है यहाँ पे जो हड्डी है वो ज़्यादा अफेक्ट हुई है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं।
0: ठीक ठीक, इसमें लोग सब बाज बच्चे बाजू का तैसे होता है कि उनके जो मिल्क टीथ हैं वो शेड नहीं हो रहे होते ज़्यादा, तो क्या ये कभी कहीं चोट लगी होती है उस वजह से वो अंदर को प्रेस हो जाते हैं, या और क्या वजह हो सकती है?
1: अच्छा, ये डिपेंड करता है उनकी हिस्ट्री पे, अगर उन्हें कोई ऐसा कभी चोट लगी हो या कहीं पे टक्कर हो सकती है लगी हो सिर्फ उस जगह पे, और सिर्फ उसी जगह पे दांत जो है वो निकल नहीं रहे अपने टाइम पे, बाकी जो दांत है वो अपने टाइम पे निकल भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो फिर उसको हम चेक करवाया जा सकता है। अदरवाइज जो आपने बात की दांत निकलने का और आने का, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, कुछ बच्चों में इसकी डिलेड इरप्शन होती है, कुछ बच्चे जो है उनमें दांत जल्दी गिर जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं, और कुछ में जो है वो लेट गिरते भी हैं और लेट आते भी हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये जो है थोड़ा सा वेरी करता रहता है।
0: इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस का ये समझा जाता है शायद बच्चे कहीं गिरे हैं और वो जो प्रेशर से वो जो टीथ हैं वो अंदर ही हो गए हैं और बाहर नहीं निकल रहे।
1: बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हर वक्त बच्चे तो आपके सामने नहीं रहते, इस तरह का कभी भी कोई डाउट हो तो आप एक दफ़ा जाके क्लिनिकल असेसमेंट करवा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा उस तरह से कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बच्चों के दांत जो है आजकल जो मैं देख रहा हूँ आजकल थोड़ा सा लेट ही आ रहे हैं, कि शायद हमारी डाइट ऐसी है बिल्कुल बिल्कुल ये वो वाले फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है कभी जो है दांतों की डेवलपमेंट है वो लेट होती है। तो यूसी जो है
0: नॉर्मली जो है आपके पास है, हम तो ये समझते हैं या सारे ही अच्छा इनकी फैमिली में जो दांत हैं इस एज में आए हैं तो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो
1: हेरिडिटी
0: है, तो ऐसा भी है या फिर जैसे आपने कहा कि डाइट्री
1: जी जी बिल्कुल ऐसा भी होता
0: है,
1: हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है अगर बिल्कुल
0: कुछ बिल्कुल 5 months में भी मतलब आते हैं।
1: एक्चुअली इसमें एक और टर्म होती है न्यूनेटल टीथ
0: जी,
1: फॉर एग्जांपल बच्चा अगर पैदा हुआ तो वो उसके मुंह में तब भी दांत होता है, तो ये डिफरेंट कंडीशन होती है, लेकिन मोस्टली जो है वो 6 months टू 1 year के अंदर जो है वो दांत आना स्टार्ट होते हैं।
0: ठीक है,
1: ठीक है, जो आइडली है। और वरना अगर कोई कुछ सिनेरियोस में ऐसा भी होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक या दो दांत होते हैं, तो वो एक डिफरेंट केस आ जाता है, लेकिन ऐसा जिस तरह से कोई भी परेशानी या टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। अगर 1 साल तक भी दांत नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लें, लेकिन अगर 2 साल तक नहीं आ रहा फिर आप जाके चेक करवा लें, क्योंकि अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि लेट हो रहा है तो फिर आपको असेसमेंट जरूरी है। आपने बिल्कुल 1 से 1.5 साल तक या 2 साल तक वेट करे नहीं आता तो फिर आपने लाजमी चेक करवाना है, और अगर आ जाए तो वेल एंड गुड।
0: जी तो साहब अपने डाइट की बात की कि मतलब डाइट जो है वो भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा मैं बताइएगा क्योंकि हमारे लिसनर्स जो हैं माएँ उसमें शामिल हैं, कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के जैसे 6 months का हो गया है और उसकी डाइट में मतलब डाइटरी क्या क्या हेल्पफुल डाइट हो सकती है?
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया है। इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, बच्चों के दांतों की हमने हिफाजत करनी है, और वो सबसे पहले तो पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी आती है
0: जी।
1: क्योंकि जो बच्चे उनमें फीडर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा आदत होती है, और आजकल जो है वो ज़्यादा ट्रेंड ये है कि, बल्कि शुरू से चलता आ रहा है कि फीडर्स के अंदर जो हम शुगर ऐड करते हैं
0: जी।
1: एक वो ऐड करते हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं वो रात को फीडर पीते पीते सो जाते हैं, और जो वो फीडर है वो उनके मुंह के अंदर रहता है। इसका मतलब है जितनी देर वो मुंह के अंदर रहेगा वो शुगर जो है वो सारा एक्सपोज होता रहेगा दांतों के साथ, और वो जितना देर एक्सपोज होता रहेगा दांतों के साथ उसका कॉन्टेक्ट रहेगा, वो उतने ही दांतों को खराब करेंगे, जिसे हम बोटल बेबीज केरी कहते हैं। ठीक है, बेबी बोटल केरीज जो है ये बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है बच्चों में, जो के फीडर लेके सो जाते हैं और उनके दांतों पे वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होने लग जाते हैं। तो जितना एक्सपोजर होगा मीठे के साथ उतना जल्दी ही आपके दांत खराब होंगे। और कोशिश करें कि कोई भी मोटिवेशन दे के बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रशिंग की आदत डालें।
0: अच्छा,
1: ब्रशिंग शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि किस टाइम से ब्रशिंग हमें स्टार्ट करनी है।
0: उससे पहले एक और क्वेश्चन है डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि जो उसमें शुगर भी ऐड करते हैं पेरेंट्स, तो फार्मूला मिल्क अगर दे रहे हैं तो क्या उसमें भी यूज करते हैं?
1: जी, शुगर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज में ही होते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे ही बच्चा अपना जो डाइट है, जो उसका लंच बनता है, ब्रेकफास्ट जो भी बनता है, जब पूरा हो जाए, फीडर कंप्लीट हो जाए, आप उसके मुंह से निकाल लें। रात को सोने से पहले अगर आपने दिया उसको, जब भी आप फीड कर रहे हैं उसको, जैसे ही कंप्लीट होता है आप निकाल के रख लें। ठीक है, ये आपने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हैबिट बनाएंगे वो डिवेलप होती रहेगी।
0: ठीक, इसमें पूछना चाहूंगी, जाहिर है माएं सुन रही हैं और जो कि कोई भी मिल्क दूध फार्मूला है तो उसमें भी ऐड कर दी जाती है एक्स्ट्रा जो शुगर है, तो क्या बच्चों के लिए ये नुकसानदेह? तो आपने कहा कि उसके टीथ प्रॉब्लम है, मगर क्या ये ज़रूरी है कि ऐड की जाए? मतलब उसमें जो पेरेंट्स हैं, या कोई नुकसान क्या हो सकता है? हाँ, ये पूछना ये चाह रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल की जाती है शुगर, तो क्या वो बच्चे की हेल्थ के लिए या उसके दांतों के लिए? तो ऑलरेडी आपने बता दिया, फिर क्या ये ज़रूरी है?
1: देखिए, जो बच्चों की आदत है वो हम जैसे ही वो डेवलप करते रहेंगे वो वैसे बन जाएगी। अगर हम स्टार्ट से ही शुगर ऐड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में तो उनको उस चीज़ का टेस्ट पता ही नहीं चलेगा और वो यूज टू नहीं होंगे। तो कोशिश की जाए कि विदाउट जो है वो हम शुगर खासतौर पे मिल्क दें, और इसके अलावा जितनी देर तक हो सकता है, क्योंकि जैसे उनका एक्सपोजर मीठे के साथ होता है, चॉकलेट्स के साथ या डिफरेंट किस चीज़ों के साथ, तो वो उनको फिर उस चीज़ की आदत लग जाती है। लेकिन कोशिश ये की जाए कि स्टार्ट में बिल्कुल कोई भी स्वीटनर ऐड ना किया जाए, कोई भी शुगर किसी भी फॉर्म में हो वो आप ना ऐड करें, और वो बच्चा जो है उसी आदत में डल जाएगा
0: जी। और बिल्कुल आप जो जो कहा जा रहा है कि एक साल तक बच्चे को सॉल्ट भी नहीं दें और शुगर जो है वो एक्स्ट्रा, मतलब वो भी नहीं दें, नेचुरल जो फ्रूट्स में है या कुछ है वो तो ठीक है, ऐसा ही है
1: जी। बिल्कुल, नेचुरल चीज़ें जितनी दी जाएँ वो दांतों

0: ग्लिच है, तो और जितना मीठे से कम एक्सपोज करवाया जाए वो भी उसके लिए बेहतर है। क्वांटिटी की मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्वांटिटी जो है वो आप जितनी मर्जी रख लें, जो एक्सपोजर टाइम है वो कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ही अगर आप, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो चॉकलेट है वो अगर आप एक टाइम में बच्चे को खिला देंगे वो इतना नुकसानदेह नहीं है कि अगर वो एक ही चॉकलेट बार बार हाफ हाफ करके दी जाए। फॉर एग्जाम्पल वही जो चीज़ है वो तीन चार दफा डिफरेंट टाइम में देते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर एक ही टाइम पे मीठा कंज्यूम कर लिया जाए।
1: ठीक डॉक्टर साहब, इसी से एक और बात, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो फ्लेवर्ड कोई भी जूसेस हैं, फ्लेवर्ड ही होते हैं जो बाहर से जो मिलते हैं, तो वो कितने किस हद तक जो है बच्चों को देने चाहिए?
0: देखें, जो सीजनल फ्रूट होता है, सीजनल फ्रूट होता है वो जो फ्रेश होता है वो ही हमेशा देना चाहिए। जितने भी जूसेस होते हैं जो हमारे ग्रोसरी स्टोर में पड़े होते हैं ये इतने फायदेमंद नहीं होते हैं। ठीक है, ये बच्चे जो हैं वो जितनी बुरी चीज़ होती है वो उतने इसके शौकीन हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि जो आप घर में खुद से दे सकते हैं उससे अच्छी कोई चीज़ भी नहीं है। आप फ्रेश फ्रूट लेके आए जो भी सीजनल होता है उसका बच्चों को आदी बनाए कि वो ले सकें। उसके अगर वो जूस पीते हैं तो जूस वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो आप उसको बाइट्स में डिफरेंट शेप्स में बना के अब तो मिल जाते हैं ताकि उनको वो उतना अट्रैक्ट करे और वो खा सकें।
1: ठीक ठीक जी, बहुत अहम जो सवाल था आपकी तरफ से भी, ज़ाहिर है सबके जहनों में होता है, ख़ासतौर पर जो माएँ हैं वो सुन रही हैं कि किस तरह से हमें करना है। तो डॉक्टर ने बड़ा हमें आसान सा जो तरीका है वो बता दिया है, तो यही बात कि जो इजी एक वे है कि जूस है, मैंगो जूस बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि क्योंकि मीठा होता है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, और उसमें हमें नहीं पता कि मैंगो शामिल है या नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खुद अगर हम बनाएं किसी भी उसमें वे में, मिल्क शेक में या जूस भी बनाया जा सकता है, तो वो हमें बच्चे को देना है क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो सबसे अहम है। जी डॉक्टर साहब, अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं और अगर ट्रीट ना किया जाए या इग्नोर कर दिया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं?
0: सबसे पहले तो केरी स्टार्ट होती हैं, दांत को कीड़ा लगना, और जैसे हम पहले बात कर रहे थे शायद वो हमारा जो सवाल है वो मिक्स हो गया
1: जी।
0: वो पूछना शायद अंदर हो गया कि दांत को जो ब्रशिंग है वो हमने कब से स्टार्ट करनी है।
1: जी जी,
0: तो वो हो सकता है अगर कोई सुनने वाला हो तो उसके वो वेट कर रहा हो इसके जवाब का
1: जी।
0: तो ये है कि जब भी बच्चों के मुंह के अंदर दांत आना स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक भी दांत आ जाता है तो हमने ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी है। आपने वेट नहीं करना 6 मंथ्स का, 1 ईयर का या 2 ईयर का कि और मजीद दांत है या बच्चा जो है वो खुद से स्टार्ट करे, ऐसा नहीं है। एक भी दांत आता है ऊपर नीचे कहीं भी तो आपने उसको ब्रशिंग स्टार्ट करवा देनी है। ठीक है
1: जी।
0: अब जैसे आपने कहा कि क्या इसका सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो केरी दांत को जो कीड़ा लगना है वो स्टार्ट हो जाता है।
1: ठीक है,
0: क्योंकि अगर मीठा लगता है और उसको हम क्लीन नहीं करते तो ऐसा ऐसा वो दांत को बुढ़ना स्टार्ट कर देगा, वो ऊपर से स्टार्ट करेगा और वो अंदर डीप जर चला जाएगा
1: जी।
0: और सबसे पहले जो वो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं ठंडा गर्म के, सबसे पहले आपको जो ठंडा गर्म के सिम्टम्स आएंगे
1: जी।
0: और इसके अलावा अगर वो डीप जाता जाए और अगर आप ब्रशिंग हैबिट्स नहीं रख रहे तो वो फिर पेन में डेवलप हो जाता है। और इसके ट्रीटमेंट भी जो है वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है
1: जी।
0: अगर केरीज हैं और वो बहुत ही सुपरफिशियल है तो हम वो फिलिंग से ठीक कर लेते हैं, अदरवाइज उसके डिफरेंट फिर ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं।
1: ठीक, ये बच्चों में हो सकता है। इसमें डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि एक भी अगर दांत जो है वो आ जाता है तो ब्रशिंग स्टार्ट, तो शुरू में तो बिल्कुल छोटे, बहुत ही छोटे से दांत होते हैं, तो फिर क्या करें हम?
0: देखें, वो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, पेरेंट्स भी एग्री करेंगे कि बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं करवाने देता
1: जी।
0: ठीक है, तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टॉयज की शेप में ब्रशिंग आते हैं, ऐसे आपने सॉफ्ट ब्रश लेके तो आप उसको यूज़ करें। आजकल तो वो छोटे से ब्रशेज आते हैं जो आप अपने फिंगर पे लगा सकते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं जो कि नॉन कंप्लायंट होते हैं आप उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप उनको टॉयज की शेप में जो ब्रशेज होते हैं वो दिखा के ताकि वो अट्रैक्ट करें और उसको खुद से पसंद करें करना। तो आप डिफरेंट आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो भी सूटेबल लगती है बच्चों में, तो ये पेरेंट्स वो खुद कोई ना कोई वो नया तरीका अपना लेते हैं।
1: ठीक ठीक, उसमें कोई पेस्ट वगैरह का, टूथपेस्ट, वो भी स्पेशल कोई होती है बच्चों के लिए या
0: बच्चों में फ्लेवर्ड?

0: अवॉइड करना जरा मुश्किल,
1: बिल्कुल ऐसी है, एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन वो अच्छी तरह रिंस कर लें, कुल्ली कर लें तो अच्छी बात है, और अगर कुछ स्वीट है या कुछ ऐसा लिया है तो उसके बाद ब्रशिंग लाजमी कर लें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं करते तो उसका जो एक्सपोजर है वो पूरी रात वो दांत के साथ लगा रहेगा, तो उसके रिजल्ट्स फिर उसके अकॉर्डिंग ही होंगे।
0: ठीक है, बिल्कुल। और इसमें जो है हम अगर जैसे आपसे पूछना चाहें कि ये तमाम जो इमरजेंसीज हैं उसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं, वैसे तो हम खुद भी गेस कर सकते हैं इन इमरजेंसी से कैसे बच रहे हैं, मगर आपसे पूछा जाए।
1: नहीं नहीं, जरूर। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज जिसको आप लगता है कि काफी अग्रेसिव चीज है, उसमें आप स्प्लिंट्स यूज कर सकते हैं, दांतों की जो प्रोटेक्शन होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं,
0: वो
1: अगर आप यूज कर लें तो एक तो आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनमें ज्यादा ये देखा जाता है, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो आपको 24/7 नजर रखनी ही पड़ेगी।
0: ठीक।
1: इसके अलावा जो थोड़े से बड़े हैं उनको आप समझाना पड़ेगा कि किसी भी चीज के साथ आपने कोई शार्प चीज है या जहाँ पे आपकी टक्कर हो सकती है वहां से आपने बच के रहना है। इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाते हुए जो हमारी स्टील की अक्सर स्पून होता है, चम्मच होता है, अगर हम तेजी में खा रहे हैं अगर वो भी कभी जोर से लग जाए तो उससे भी दांत का जो है वो हिस्सा टूट सकता है, तो इंजरीज किसी भी किस्म की हो सकती है।
0: ठीक ठीक। और जैसे कि वो शार्प है जैसे ब्रेसिस हैं या कुछ, उनका खास ख्याल जो है वो रखना है। जी डॉक्टर, इसमें कोई जैसे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मैं आपसे पहले ही पूछेंगे क्या हो सकती हैं, खुदा ना हस्ता कोई अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो क्या वो हमारे दूसरे जिस्म पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल। अगर नीचे हमारा परमानेंट दांत आ रहा है और जो ट्रॉमा हुआ है वो मिल्की टीथ पे हुआ है और इन्फेक्शन वहाँ पे आ गया है, तो वो नीचे वाले दांत को 100% अफेक्ट करेगा, वो उसकी जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करेगा, उसको नेक्रोज कर सकता है, उसको वहाँ से जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अफेक्ट कर सकता है, इसलिए असेस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मिल्की टीथ पे इंजरी हुई है और वो उसका ऑलमोस्ट गिरने का टाइम हो गया हुआ है, तो अक्सर औकात वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती, तो ये एज और टाइम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है।
0: ठीक ठीक। इस तरह से आप जो सुन रहे हैं कि ये सारा जो है टाइम बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट है कि किस वक्त अगर चोट लगी है तो फौरन कैसे पहुँचना है, और स्पेशली जो सॉकेट वाली डॉक्टर साहब ने बात की वो बहुत अहम है कि हम अपने उसी टीथ को जो कि निकल चुका है उसे वापस उसी जगह पर जो है वो लगवा सकते हैं, और ये तो फिर डेंटिस्ट जो हैं इनका डॉक्टर साहब जैसे जो हमारे बिल्कुल फ्रंट लाइन पर होते हैं उन्हीं का काम है कि वो वापस वही खूबसूरत सा जो दांत है उसे हमें दे सकें। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो हाइजीनिक जो रूल्स होते हैं उस पर भी हम बात करना चाहेंगे क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
1: जी बिल्कुल। ये इनकी जो जैसे आपने बात की दांतों की मजबूती उसकी हाइजीन के साथ ही इफेक्ट करती है, जितना जो हमारा बोन स्ट्रॉन्ग होगी दांत उसके अंदर सॉकेट जो है वो उतना ही उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, और अगर फॉर एग्जांपल कोई माइनर ट्रॉमा हो जाता है कहीं पे टक्कर भी लग जाती है, अगर हमारे दांत मजबूत होंगे तो हम ट्रॉमा से बच सकते हैं। इनकेस अगर हमारे दांतों की जो कंडीशन ही बहुत बुरी है वो ऑलरेडी जो है वो बस वहाँ पे दांतों के साथ वो हड्डी के अंदर अड़े हुए हैं और वो हल्का से भी कोई इंजरी होती है, कोई टक्कर होती है, कोई भी चीज लगती है तो वो गिर सकते हैं या हिल सकते हैं, तो दांतों का मजबूत होना, उनकी हाइजीन साफ होना, अच्छे होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी। इसमें डॉक्टर थोड़ा सा डाइट का भी पूछना चाहूंगी आपसे कि कौन सी ऐसी डाइट है कि वो हेल्पफुल होती है कि कुछ बहुत दांत जो हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है जैसे हम बोन्स की बात करते हैं कि ये डाइट लें या इस तरह से, तो इसमें भी कुछ ऐसा है?
1: जी बिल्कुल। डाइट तो हमारी ओवरऑल बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है ना, क्योंकि हम डाइट अच्छी होगी तो हम अच्छा विदाउट जो है वो हॉस्पिटल और ये क्लिनिक्स के चक्कर से बच जाएंगे। इसमें आप एक तो सीजनल फ्रूट जो होते हैं फ्रेश फ्रूट होते हैं वो कोशिश करें उनको ले सकें, इसके अलावा कैल्शियम हो गए, विटामिन, ये आप किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ये आपको रेगुलर लेने चाहिए। इसके अलावा जो है आप ब्रशिंग जो है वो रेगुलर रखें, इससे आपका जो मेन चीज़ है वो दांतों को जो स्ट्रॉन्ग बनाती है वो आपकी ब्रशिंग है। जितना आप इसको साफ रखेंगे उतना ही आपका दांत स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और ये लॉन्ग टर्म चलेगा, अगर नहीं तो सबसे पहले आपके दांत अफेक्ट होंगे।
0: एक तो आपने कैल्शियम की बात की, तो इसमें कैल्शियम एक तो सप्लीमेंट है और दूसरी ये कि कैल्शियम

0: डाइट से वो पता ही है सबको कि मिल्क जो है वो, मगर कुछ और सोर्सेज जो हैं वो भी आपसे जरूर पूछना चाहूंगी और क्या क्या हो सकती हैं जैसे बच्चों को देने के लिए, क्योंकि मुश्किल है।
1: जी जी बिल्कुल, अब तो डिफरेंट सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश की जाए कि जो नेचुरल चीज़ है हम उसी से कंज्यूम कर सकें। सप्लीमेंट्स और ये चीज़ें तो ये बहुत सेकेंडरी चीज आ जाती है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम नेचुरल चीज़ नहीं खा रहे या खासतौर पर जो बच्चे हैं वो फ्रूट या खाना, तो बिल्कुल उनकी कोशिश होती है कि वो छोड़ दिया जाए और बाकी जितने भी स्नैक्स और डिफरेंट चीज़ें जो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, चॉकलेट्स हो गई या मतलब जिसका फ़ायदा नहीं होता वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो उन केसेस में जो डिफरेंट अब तो जेलीज की फॉर्म में वाइटामिन्स आ जाते हैं जो कि बच्चे आराम से इजीली खा सकते हैं, अब वो दे सकते हैं, वाइटामिन सिरप दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स जो कि अब तो स्वीट्स होते हैं उनके अंदर तो इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, वो उनको इस तरह से बहुत ज़्यादा वो तंग नहीं करते, तो इस तरह की चीज़ें आप लाजमी करें, इनके हर तरह से आप स्ट्रेटजी बनाएं। अगर बच्चा चीज़ें कुछ नहीं खा रहा या फ्रूट्स नहीं ले रहा, हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहा, तो आप उसको चेंज करके डिफरेंट काइंड्स में आप उसको दे सकते हैं।
0: ठीक, आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो आप जुमे को सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम दोबारा सुन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल में और हर चीज़ जो है वो क्लियर कर दी है, मगर आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि ये जो बिल्कुल ट्रामा होता है डेंटल और दांत जो हैं वो
1: मैसेज
0: आया हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक डेंटल ट्रामा था, तो मैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक मैसेज दूंगा कि एक तो आपने कोशिश करनी है हिफाजत करें, और इन केस अगर खुदा ना खासा अगर ऐसा कोई इशू होता है, किसी इंजरी को फेस करना पड़ जाता है, तो आपने दांत को संभाल के रखना है उसको, और इसके अलावा उसको साफ करना है सलाइन के साथ और ठंडे दूध के साथ, या अपने मुंह के अंदर जो स्लाइवा है उसके अंदर आपने रखना है। और तीसरी चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपने टाइमिंग की, वो आपने 20 से 30 मिनट के अंदर अपने डेंटिस्ट के पास जाना है या कोई भी इमरजेंसी डेंटल क्लिनिक है आपने वहाँ से रिजू करना है, उसको डिले नहीं करना कि आप उसको छोड़ दें या कोई भी चीज़ हो। इसके अलावा अगर आपको स्टार्ट में सिम्टम्स नहीं शो करें फिर भी आप एक दो दिन के वक्फे के बाद एग्जामिन जाके करवाएं, वो उस केस में कि अगर दांत मुंह के बाहर नहीं निकला, इन केस अगर निकलता है तो फिर आपको उसी टाइम जाके चेक करवाना है।
0: ठीक, और बिल्कुल जो है आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और इमरजेंसी में बिल्कुल जरूर जाना है जो भी आपके पास इमरजेंसी है।
1: जी बिल्कुल, जैसे दांत अगर मुंह से निकलता है तो अब वो एक इमरजेंसी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें इसलिए क्योंकि जो आपका अपना दांत है वो भी दोबारा लग सकता है, ये सारा आपकी वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है।
0: जी ठीक, चलिए आपने सुना कि बहुत ही डिटेल में डॉक्टर ने बताया कि अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसे किस तरह से हैंडल करना है, और इसके साथ ही अपने दांतों की हिफाजत बहुत करनी है आपको, मगर इसके साथ ही हम प्रोग्राम हेल्थ गाइड से इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ रहे डॉक्टर मोहम्मद रेहाब खान जो कि डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, और फौजिया शफीक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 9 a.m. from Urdu Radio FM 107.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے دوست ملک ازبکستان کے صدر نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے برطانیہ کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ ریاست قطر نے جنوب مشرقی ایشیا میں دوستی اور تعاون کے معاہدے کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ یادگار تقریب میں شرکت کی ہے۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फुटबॉलर के बारे में। फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, आप लोगों को पता है, एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर की टीम जो है मुसलसल दूसरी मरतबा क्वालिफाइड। सो इस टीम में खिलाड़ी हैं पेड्रो मिगेल, नाम समझ लीजिए पेड्रो मिगेल, ऑब्वियसली अरब खत्ते से नहीं है। पेड्रो मिगेल कतर के सबसे अहम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। उनका असल नाम पेड्रो मिगेल कारवालो डियोस कोरिरा है और वो पोर्चुगल में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में कतर में मुकीम बने और वो कतरी नेशनल टीम में उन्होंने ज्वाइन किया। इनफैक्ट क्लब से शुरू किया था अपना जर्नी यहाँ पे और उसके बाद कतर नेशनल टीम में उन्होंने जगह बना ली। इनफैक्ट देखा जाए तो टैलेंट कतरी नेशनल टीम सेलेक्टर्स और कतर फुटबॉल एसोसिएशन के जितने भी टेक्निकल कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने नोटिस किया कि इस लड़के में टैलेंट तो है एंड ही प्लेज एज अ राइट बैक पोजीशन और राइट बैक पोजीशन में काफ़ी मजबूत हैं और स्ट्रॉन्ग है। एंड लास्ट जो क्वालिफाइंग मैच हुआ था अगेंस्ट यूएई अल सद स्टेडियम में पिछले साल, तो पेड्रो मिगेल ने एक गोल किया था। दैट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल, क्रूशियल गोल दैट हेल्प कतर क्वालिफाई फॉर द 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्योंकि इन दिनों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है। पेड्रो मिगेल अपनी वर्सैटिलिटी, डिसिप्लिन और डिफेंसिव मजबूती के लिए मशहूर है। जैसे कि मैंने कहा वो राइट बैक, सेंटर बैक और डिफेंसिव मिडफील्ड जैसे मुख्तलिफ पोजीशंस पर खेल सकते हैं, बहुत मजबूत है, जिस वजह से कोचेज उन पर खास भरोसा करते हैं। पेड्रो ने कतर स्टार्स लीग में असद के लिए खेलते हुए कई डोमेस्टिक और कंटिनेंटल कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया है। उनकी मजबूत डिफेंडिंग, टैक्टिकल समझ और प्रेशर में पुरसुकून रहने की सलाहियत ने उन्हें टीम का एक कीमती रुकन बना दिया। कतर की कौमी टीम के साथ उनका सबसे यादगार लम्हा 2019 एएफसी एशियन कप था, जब कतर ने पहली मरतबा टूर्नामेंट जीतकर तारीख रची। पेड्रो उस स्क्वाड का अहम हिस्सा थे और पूरे टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही। 2022 वर्ल्ड कप में भी पेड्रो ने कतर की नुमाइंदगी की और उनकी मेहनत, प्रोफेशनलिज्म और टीम के लिए वफादारी ने उन्हें कतर फुटबॉल के मॉडर्न दौर के नुमाया खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद है, लेकिन अक्सर हम उसके नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं। ये मसला है नॉइस पोल्यूशन, यानी शोर की आलूदगी। अब शोर सिर्फ एक परेशान कुन आवाज नहीं है, बल्कि ये हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत पर गहरे असरात मुरतब करता है या कर सकता है। सड़कों पर ट्रैफिक है, तामीराती काम, हवाई जहाज, फैक्ट्रीज, ऊंची आवाज में म्यूजिक और बाज़ुकात घरों में मुसलसल चलने वाले जो बरकी आलात भी शोर का सबब बनते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मुसलसल बुलंद आवाजों में रहने से सेहत के कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। सबसे आम मसला हमारे जो समात है उसकी कमजोरी है। जब कान ज्यादा शोर के सामने बार बार आते हैं तो कान के जो अंदरूनी हिस्से हैं बहुत नाजुक हैं और उन अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है, जो बाज़ुकात मुस्तकिल भी हो सकता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका कोई इलाज करवाया जा सके। शोर सिर्फ कानों को ही मुतासिर नहीं करता, बल्कि हमारे दिमाग को भी मुसलसल टेंशन में दबाव में रखता है। ऐसे अफराद जो शोर वाले माहौल में काम करते हैं या उस माहौल में रहते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, बेचैनी होती है और उनमें गुस्सा ज़्यादा देखा जाता है। बच्चों पर शोर के असरात खास तौर पर बहुत ज़्यादा होते हैं और तशवीशनाक भी हैं। शोर की वजह से उनकी जो तवज्जो है वो मुतासिर हो सकती है और सीखने की सलाहियत कम हो सकती है, जिसकी कि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और तालीमी कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। रात के वक्त शोर नींद के मायार को ख़राब करता है। अगर जी इंसान मुकम्मल तौर पर जागता नहीं, लेकिन दिमाग शोर को महसूस करता रहता है, जिससे हमारे जिस्म को जो आराम मतलूब होता है वो नहीं मिल पाता। लिसनर्स, शोर एक खामोश खतरा है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत को मुतासिर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके नुकसानात को समझें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इससे बचाव के जो इकदाम हैं वो हम करते रहें। अगले प्रोग्राम में लिसनर्स हम जानेंगे कि शोर हमारे दिल, दिमाग और जो मजमूई सेहत है उस पर किस तरह से असरअंदाज होता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे? हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। Assalamualaikum, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो कतर ग्रीन बीट्स। वेल, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल मजे में होंगे। ये हफ्ता भी काफी मजे में गुजर रहा है है कि नहीं? चलिए, अब आज की बात शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है। हाँ, अच्छा, चलिए जरा एक पल के लिए रुकिए, अपने आसपास देखिए, हम एक ऐसे खूबसूरत रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ सुनहरी रेत के टीले और वो कहते हैं ना गहरा नीला आसमान एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। क्या बात है, ये मंजर देखने में जितना हसीन लगता है ना, उतनी ही बड़ी एक हकीकत हम सब रोज जीते हैं इस तपिश भरी धरती पर। पानी हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम अक्सर कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, लेकिन कतर में वाटर इज मोस्ट प्रेशियस करेंसी। कभी सोचा है आपने कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां कोई परमानेंट दरिया या यूं कहे रिवर नहीं है, कोई ऐसी नदी नहीं है जो 12 मासी बहती हो, और बारिश साल भर में 100 mm से भी कम होती है। अब जनाब, इतनी कम बारिश तो शायद एक मुनासिब यूं कहे तो प्रॉपर शार में निकल जाती है, लेकिन फिर भी कतर की रगों में जिंदगी दौड़ रही है। हमारे हरे भरे पार्क्स, हमारे चमकते टावर्स और आपके किचन का वो नल, ये सब कैसे चल रहा है, कभी सोचा है इसके बारे में? यहाँ हर एक बूंद जो आप देखते हैं ना, वो कुदरत का करिश्मा कम या यूं कहें ह्यूमन इंजीनियरिंग का मिरेकल ज्यादा है, और इट इज अ मिरेकल ऑफ साइंस जो हम अक्सर देखते हैं पर उसे थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं। फिलहाल आज का एपिसोड हमारा बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड गोल्ड के बारे में। आज जब आप दोहा में या अलवक्रा में या शायद लुसेल में अपने घर का नल खोलते हैं, तो क्या आपने कभी उस पानी का सफर सोचा है कि ये

0: पानी आया कैसे हमारे पास? वो पानी सिर्फ जमीन के नीचे से नहीं निकल रहा, वो पानी आया है अरेबियन गल्फ की उस नमकीन गहराइयों से जिसे हम द डीप ब्लू कहते हैं. वहां से उस खारे पानी को निकाला गया, उसमें से नमक के एक एक जर्रे को अलग किया गया और फिर टेक्नोलॉजी की रगों से, मतलब हमारे हाई टेक पाइपलाइंस के नेटवर्क से होता हुआ वो कई माइल्स का सफर तय करके आपके ग्लास तक पहुंचता है. यस, ये कोई मामूली सफर नहीं है, इट्स अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एक खारा समंदर एक मीठी जिंदगी में बदल जाता है. तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम इसी लिक्विड गोल्ड की गहराइयों में उतरेंगे. हम बात करेंगे वाटर सिक्योरिटी की. हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट रिजर्वॉयर्स के पीछे, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने कतर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा दिया है. और साथ ही हम बात करेंगे उस रेवोल्यूशनरी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी की जो हमारे कल को सुरक्षित बना रही है. कैसे कतर सूरज की गर्मी और टेक्नोलॉजी की ताकत से अपना फ्यूचर लिख रहा है. कहीं ना जाए, मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि आगे हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं जो कि हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत काम की होगी. सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. वेलकम वंस अगेन, मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स. और अब बारी है द ग्रीन वायर की. हाँ, तो ये क्या है ग्रीन वायर? हम अक्सर बुर्ज खलीफा या बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स इनकी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कतर की जमीन के नीचे एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड छुपा है जो दिखता तो नहीं पर हमारी रगों में जिंदगी बनकर दौड़ रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सीधा हमारी वाटर सिक्योरिटी से जुड़ा है. कतर ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात अपने लोगों की हिफाजत की आती है ना, तो हम सिर्फ बड़े ख्वाब नहीं देखते, हम उन्हें कंक्रीट की शक्ल में खड़ा भी करते हैं. कहा जाता है जहां चाह होती है वहां राह होती है, और इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री और करामा, इन दोनों ने मिलकर, वो कहते हैं ना कि एक ख्वाब को पूरा किया है, द वाटर सिक्योरिटी मेगा रिजर्वॉयर्स प्रोजेक्ट. सोचिए, उम बिरका से लेकर उम थुमामा तक कतर के 5 अलग अलग कोनों में 5 ऐसी साइट्स बनाई गई हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है. इन रिजर्वॉयर्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने खुद इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वॉयर का खिताब दिया है. जरा तसव्वुर कीजिए, हर एक टैंक इतना बड़ा है कि उसमें एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम समा सकता है. मैं मजाक नहीं कर रही. इमेजिन 5 मैसिव साइट्स जहां पर जायंट कंक्रीट टैंक्स हैं, हाँ, और उनके अंदर पानी है. जब आप इनके पास खड़े होते हैं तो आप ना एक नन्हे से जर्रे लगते हैं, मतलब छोटा सा पार्टिकल लगते हैं. ये सिर्फ सीमेंट से बनी दीवारें नहीं है, ये बेसिकली कतर का एक सेफ्टी नेट है. लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों? इसके पीछे की वजह सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था, इसके पीछे का मकसद है सर्वाइवल. हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कुदरती पानी की बहुत कमी है. ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए या डीसैलिनेशन प्लांट्स में कोई टेक्निकल इश्यूज हो जाए, तो क्या हमारा शहर प्यासा रहेगा? हरगिज नहीं. इन मेगा रिजर्वॉयर्स की वजह से कतर के पास अब इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है कि अगर सारे प्लांट्स बंद भी हो जाएं, तब भी पूरे मुल्क की जरूरत को 7 दिनों तक पूरा किया जा सकता है. 7 days, आप समझ रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ वाटर, वो भी हाई क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर जो कि स्टोर्ड है और रेडी है. ये हमारा लिक्विड गोल्ड है जो जमीन के नीचे हमारा इंतजार कर रहा है, और ये है हमारे कतर का विजन कि कुछ भी हो जाए, हमारी लाइफ और हमारी डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए. वेल, एक खास बात आपको बतानी है कि ये जो पानी है इसे स्टोर करना काफी नहीं है, ठीक है, उसे बचाना और गार्ड करना भी उतना ही जरूरी है. यहाँ एंट्री होती है तरशीद की. अब एक और बड़ी खबर ये है कि कतर का नया यूनिफाइड ऑपरेशन सेंटर अब किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा काम कर रहा है. यस, वहां लगे हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड AI, या यू कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम. पहले क्या होता था कि अगर कहीं जमीन के नीचे पाइपलाइन लीक हो गई तो हफ्तों तक पता ही नहीं चलता था और लाखों गैलन पानी वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब हमारे डिजिटल चौकीदार या यूं कहें हमारे डिजिटल एआई को हर एक लीक का पता चंद मिनट्स में चल जाता है एंड दे आर डिटेक्टिंग एनोमलीज इन रियल टाइम। मतलब कतर सिर्फ पानी बचाने का काम नहीं कर रहा है, उसे गार्ड भी कर रहा है वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए, ताकि हमें सही वक्त पर पानी मिल सके। तो जनाब, ग्रीन वायर में आज हमने देखा कि कैसे कतर ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, और एक तरफ हमारे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अजीम रिजर्वॉयर्स हैं और दूसरी तरफ एआई जैसे शानदार टेक्नोलॉजी जो एक एक बूंद की हिफाजत कर रही है। लेकिन याद रखिए, गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी अपना काम कर रहे हैं, पर असली हिफाजत जब आती है ना तो वो आपको और हमें ही करनी है। चलिए आगे इसके बारे में और बात करते हैं। आप कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 107, मैं हूं अमिता आपके साथ, और कतर ग्रीन बीट्स पर आज बातें हो रही हैं लिक्विड गोल्ड की। आज हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो इस रेगिस्तान में सोना या यूं कहें गोल्ड से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। यस, एंड दैट इज आवर वाटर, हमारा पानी। आज हमारे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट पर उस जगह पर हम चलते हैं जहां कतर की वाटर इंडिपेंडेंस का किला या यूं कहें फोर्ट्रेस बने हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ ओम अल हूल पावर प्लांट की। जब आप दोहा से दक्षिण की तरफ ड्राइव करते हैं तो एक अजीम शान स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये कतर का वो पावर हाउस है जो लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। ओम अल हूल वो जगह है जहां साइंस और नेचर, यस, का एक कमाल का संगम है, यू कहे मीटिंग पॉइंट है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले हम थर्मल डिसैलिनेशन पर डिपेंड करते थे। इसे आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो वो है कि समंदर के पानी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उबालना, फिर उसकी भाप को कैच करना और उसे ठंडा करके साफ पानी बनाना। सुनने में ये बड़ा सिंपल लगता है, जैसे किचन में चाय बनाना, पर जनाब इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस तरीके में एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती थी। लेकिन फिर आई एक रेवोल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओम अल हूल में आज यही जादू हो रहा है। इमेजिन कीजिए, बड़े बड़े हाई प्रेशर पंप्स हैं जो समुंदर के खारे पानी को इतनी जोर से धकेलते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन्स, यू कहें फिल्टर्स से गुजरने पर मजबूर हो जाते हैं। ये फिल्टर्स इतने महीन हैं कि नमक के जर्रे जर्रे को वही रोक देते हैं और दूसरी तरफ से निकालना शुरू करते हैं बिल्कुल साफ, मीठा और शुद्ध पानी। अब आप सोचेंगे कि अमिता, ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो जनाब, ये हमारे प्लानेट या यूं कहें हमारी धरती के लिए एक उम्मीद की किरण है। रिवर्स ऑस्मोसिस पुराने तरीकों के मुकाबले सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कम कार्बन एमिशंस और हमारी नेचुरल गैस की बचत। बात यही खत्म नहीं होती, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, यानी कि कतर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनमें हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के वो होनहार दिमाग हैं जो इससे भी आगे की सोच रखते हैं। वो टेस्ट कर रहे हैं सोलार पावर डिसैलिनेशन। तसव्वुर कीजिए, कतर की वो तेज धूप जो कभी हमें परेशान करती है, वही धूप अब समुन्दर के पानी को मीठा बनाएगी। सूरज की गर्मी और समुंदर का पानी दोनों मिलकर कतर को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल अ सस्टेनेबल साइकिल। हम रिसोर्सेज को खत्म नहीं कर रहे, हम उन्हें रिन्यू कर रहे हैं। कभी सोचिए कि जब हम ग्लास उठाते हैं तो हम सिर्फ पानी नहीं पी रहे, हम उन हजारों इंजीनियर्स की मेहनत और उन टेक्नोलॉजी की रगों से गुजरे हुए एक सफर को पी रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे हमारी तहजीब में पानी को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं माना गया है, पानी एक अमाना है, या यूं कहें एक अमानत है। हाँ जी, ये पानी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे पास एक अमानत है जो हमें अपनी आने वाली नस्लों को सही सलामत लौटानी है। तो सवाल

0: सवाल ये है कि क्या हम इस अमानत की हिफाजत कर रहे हैं? इस अमानत की हिफाजत के लिए हमें ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे। यस, पहला है द तशहीद चैलेंज। हम दिन भर सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, पर अभी का काम क्या है? आज एक काम हम करेंगे, कारामा का जो ऐप है ना वो डाउनलोड करेंगे। इसमें एक सेक्शन है जहां आप अपने डेली हैबिट्स डाल सकते हैं। ये आपको एक वाटर फुटप्रिंट स्कोर देगा। इसे अपने बच्चों के साथ एक गेम बना दीजिए। यस, देखिए कि घर में सबसे कम पानी कौन जाया करता है। जब हम बच्चों को बचपन से वैल्यू सिखाते हैं ना, तो वो बड़े होकर इस धरती के रक्षक है, यू कह प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। तो जनाब, सोल्यूशन तो बस इतना सस्ता है कि आप हैरान ही हो जाएंगे। हाँ, कल किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर जाइए और उनसे कहिए कि मुझे एक फॉसेट एरेटर चाहिए। एक छोटा सा मैश स्क्रीन होता है जो आपके नल या यू कहें टैप के मुंह पर लग जाता है। ये करता क्या है, ये पानी के स्ट्रीम में हवा मिक्स कर देता है। इससे प्रेशर वही रहता है, लेकिन पानी का जो फ्लो है वो 50% कम हो जाता है। मतलब वही प्रेशर, वही एहसास, लेकिन आधा पानी। ये बहुत ही कम दाम का है, पर मिलियन ऑफ गैलन्स पानी भी बचाता है और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। और मुझे लगता है कि ये जो अगला वाला, ये भी बड़ा कमाल का है। हाँ, जिन्हें गार्डनिंग का शौक है, स्पेशली उनके लिए, हमारे यहाँ पौधों को पानी देना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपने ग्रे वाटर के बारे में सोचा है? जब आप किचन सिंक में सब्जियां धोते हैं ना, या चावल भिगोते हैं, वो पानी नाली में या यूं कहें ड्रेन में मत फेंकिए। उसे एक बाल्टी या यूं कहें बकेट में जमा कीजिए और अपने गार्डन में डाल दीजिए। रेगिस्तान में एक पौधा ये नहीं देखता कि पानी नल से आया है या सिंक से। उसे सिर्फ जीने के लिए नमी चाहिए होती है। ये छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो जनाब, कतर की दास्तान रेत पर नहीं बल्कि पानी पर लिखी गई है। एंशियंट वेल से लेकर ओम अल हूल के फिल्टर्स तक हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। अगली बार जब आप ग्लास में पानी भरें, तो थोड़ा सा रुकिए, उसे देखिए और याद कीजिए कि ये हमारी अमानत है कि नहीं। वक्त कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन आज हमने कतर की रगों में बहते इस लिक्विड गोल्ड की बात की जो हमारी जिंदगी की बुनियाद है, और हमें इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली नस्लों को महफूज किया जा सके। वैसे जैसे जैसे हम कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हमारा मकसद बिल्कुल साफ होता जा रहा है। हम सिर्फ एक मॉडर्न नेशन नहीं बनाना चाहते, हम एक ऐसे नेशन को बनाना चाहते हैं जो अपनी रिसोर्सेज की कद्र करता है। तो बस इसी रिसोर्सेज की और एट द सेम टाइम हमारी सारी, वो कहते हैं ना, सहूलियत जो हमें मिली हुई है, उसकी हमें इज्जत करनी है कि नहीं। और इसी के साथ मैं कहूंगी कि आज का कतर ग्रीन बीट्स यही तक था। अब आपको मुझे देनी होगी इजाजत, वक्त है मेरे जाने का और आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, बेशक आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, या चाहे तो हमारा जो सोशल मीडिया है FM 107 का, उससे भी जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी आरजे अमिता को भी ढूंढ सकते हैं। तो बस आज जिस लिक्विड गोल्ड की हमने बात की है, उसे प्रोटेक्ट कीजिए, चेरिश कीजिए, और अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, अपना खूब सारा ख्याल रखना है और सुनते रहना है FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 बजे FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है।

0: MOI Weekly Update. Aapka weekly dose of news and much more. Don't miss it.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक आपने डिजिटल स्कैम के बारे में सुना है, लेकिन अब लोग सामने आना शुरू हो गए हैं, यानी कि फिजिकल स्कैम। आपके सामने वो आते हैं, आपसे QR कोड, लिंक या फिर आपसे किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बनकर बात करते हैं। ऐसे में आपको होशियार रहने की जरूरत है। आजकल एक नया स्कैम चला है जिसे कहते हैं फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम। रूरल एरियाज और विलेजेस में डिजिटल अवेयरनेस कम होने का फायदा उठाकर स्कैमर्स ने अब एक नया तरीका ढूंढा है जिसे फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स खुद को गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कभी इलेक्ट्रिसिटी या कभी वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय या अफसर बताते हैं, और ये लोग आम या भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। ये लोग घरों पर अचानक आते हैं और दावा करते हैं कि उनके स्मार्ट मीटर खराब है या उनका पिछला बिल बाकी है। लोगों को डराने के लिए ये स्कैमर तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। रूरल एरियाज में लंबा पावर कट किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकता है, इसलिए लोग डर जाते हैं। इस डर का फायदा उठाकर स्कैमर्स तुरंत पैसे डिमांड करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि मामला अभी खत्म करने के लिए फिजिकल कैश दे दें, या फिर उनके पास मौजूद एक फेक POS मशीन पर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने को भी आपसे कहते हैं। कार्ड स्वाइप करते ही आपके अकाउंट का सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है और अकाउंट पलक झपकते ही खाली हो जाता है। ये पूरा फ्रॉड बिना किसी ऑफिशियल पेपर या नोटिस के सिर्फ डर और झूठ के दम पर किया जाता है। सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कभी भी इस तरह अचानक आकर तुरंत कैश या ऑन द स्पॉट कार्ड पेमेंट की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। हमेशा किसी भी एम्प्लॉय का या ऑफिशियल एम्प्लॉय का आईडी कार्ड जरूर मांगे। इसके अलावा एक और आसान तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, जो है नो कैश ऑन स्पॉट। सरकारी रूल्स के मुताबिक कोई भी टेक्नीशियन घर आकर कैश या कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा जब आपके पास कोई बिल आए या कोई शख्स आपको बिल दे तो उसे ऑनलाइन वेरीफाई करें। कोई भी पेमेंट करने से पहले अपनी ऑफिशियल यूटिलिटी ऐप या वेबसाइट पर बैलेंस चेक करें। उसके अलावा आप हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सोच की जरूरत नहीं है, सीधे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बोर्ड के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कंफर्म करें कि क्या किसी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल एम्प्लॉय आपके घर भेजा है या नहीं। इस तरह की होशियारी से आप हमेशा खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को स्कैम होने से बचा सकते हैं। स्कैम अलर्ट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: Well, दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वर्टिकल फार्मिंग या फिर फार्मिंग इन स्काईस्क्रेपर्स। सोचिए कि ऐसा शहर जहां बिल्डिंग के अंदर ही खेती हो रही हो, या कोई ऐसी जगह जहां आपको न धूप लग रही है ना उस तरह की तपिश का एहसास है, लेकिन आपकी फार्मिंग वहां पर हो रही है। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि रियलिटी बनती जा रही है। इसे हम कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। जी हाँ, वर्टिकल फार्मिंग का मतलब होता है कि सब्जियों या फिर जो फल हैं सीधे जमीन पर नहीं बल्कि लेयर्स में ऊपर नीचे ग्रो किए जाएं, अक्सर टॉल बिल्डिंग्स या फिर स्काईस्क्रेपर्स के अंदर। क्योंकि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, शायद उस तरह से लैंड ही अवेलेबल ना हो या फिर वो उतनी फर्टाइल ना रह जाए, तो कुछ और भी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स चाहिए होंगे। बस वर्टिकल फार्मिंग उसी का एक नतीजा है, वही चीज जो है वो फिर सामने आ रही है। तो वर्टिकल फार्मिंग तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मिट्टी का यूज होता है वर्टिकल फार्मिंग में। प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट दिए जाते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स जिसे हम कहते हैं। वहीं LED लाइट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, सूरज की रोशनी का बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ एक एक, एक, एक क्योंकि सूरज की रोशनी उस तरह से बिल्डिंग्स के अंदर तो नहीं आ सकती, लिहाजा LED लाइट्स जो है वो यहाँ पर काम करती है और हर चीज AI कंट्रोल करती है, फिर चाहे टेम्परेचर हो, पानी हो या फिर हो हवा। इस सब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम जगह में ज्यादा फूड उगाया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक छोटी सी स्पेस पे ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले में कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े शहरों में भी फ्रेश फूड अब मिल सकेगा बिना दूर से लाए। ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, टाइम बचेगा और फूड यानी जो खाना है वो ज्यादा फ्रेश होगा। लेकिन हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। देखिए, वर्टिकल फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा होता है क्योंकि लाइट्स और मशीन्स हमेशा चलती रहती हैं। अगर एनर्जी क्लीन ना हो तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान भी दे सकती है। फ्यूचर का सीन ये हो सकता है कि दोहा जैसे शहरों में जहाँ पर हाई राइज फार्म्स आम हो जाएं, जहाँ बिल्डिंग्स के अंदर ही सब्जियां ग्रो हो और सीधे सुपरमार्केट या फिर रेस्टोरेंट्स तक पहुँचा दी जाए। तो ये है वन स्टेप टू 2030, जहाँ वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग हमें ये सिखाती है कि फ्यूचर में जमीन की कमी बड़ी प्रॉब्लम ना बने। इंसान अपनी सोच और टेक्नोलॉजी से कभी भी कहीं भी फूड उगा सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बैलेंस टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट दोनों के बीच। अगर ये बैलेंस अच्छे तरीके से बना रहा तो दोनों ही हमारे साथ आराम से चल सकेंगे। कोई भी चीज नुकसान में अगर आएगी तो सीधा नुकसान सबसे पहले इंसान का होगा, तो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में गुड बैलेंस बनाने का काम भी इंसान का है। तो चलिए, ये तो आज का वन स्टेप टू 2030 हुआ, जहां हमने बात की वर्टिकल फार्मिंग की। हर रोज हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर इसलिए भी आ रहे हैं ताकि आप इन फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स के हवाले से थोड़ा सा जो है ना मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, अवेयर हो जाएं। बस हमारी कोशिश है हल्के फुल्के अंदाज में आपको समझाएं, फिर आगे आने वाले दिनों में इन्हें डिटेल में भी आपको समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हैं 103 FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
0: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
1: दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: मैं सच में जाता हूँ इंट्रो के लिए मैं एक रोबोट रख लूँ और वो रोबोट जो है बोले वेलकम टू टेक इनोवेशन अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, यस वेलकम टू टेक इनोवेशन, वो दुनिया जहाँ पर टेक्नोलॉजी भाग रही है, सरपट दौड़ रही है, सरपट इधर से उधर, क्या क्या नहीं हो रहा भाई। आप बैठे हुए यहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा ही तो है, ना जी ना जी ना, हर 5 मिनट पे सब कुछ बदल जा रहा है, टेक्नोलॉजी की दुनिया ही ऐसी है। और क्या क्या खबरें, कौन कौन से कोने से आ रही है सब बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ कमाल के टूल्स हैं, कमाल की एप्स हैं, कमाल के गैजेट्स हैं, और आज के गैजेट्स बजट वाले हैं जो आपके काम आ सकते हैं और बजट में हैं तो मजा ही आ जाएगा आपको। उसके बाद हम सीधा कूदेंगे न्यूज़ में, क्योंकि न्यूज़ में बहुत काम की चीज़ें हैं और हम गेमर्स का थोड़ा दिल तोड़ा गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स बिगिन विद एप्स दिस वीक।
1: ट्रेंडिंग एप्स, ट्रेंडिंग एप्स।
0: तो एक ऐप जिसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा, ये ऐप मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है। जी हाँ, मैंने डिस्कवर करी है, मैं क्रिस्टोफर कोलंबस, आई नो सबसे पहले मैंने नहीं करी डिस्कवर, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके काम आएगी। इमेज जनरेशन की बहुत सारी एप्स और AI टूल्स मैंने पहले आपको बताई थी, याद होगा आपको। ये जो है अभी ऐप नहीं है, दिस इज एक्चुअली एन AI टूल जो आप फोन में या फिर अपने लैपटॉप्स पे PCs पे खोल सकते हैं। इसका नाम है REVE AI, रेव या फिर रवे, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, REVE AI। जब आप टाइप करेंगे तो एक पेज खुलेगा, शुरुआत में बिना पेमेंट के, यू हर्ड इट राइट, बिना पेमेंट के आप बहुत सारी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब एक स्पेसिफिक चीज बताता हूं, बहुत सारे इमेज जनरेटर्स जो होते हैं जो AI इमेज क्रिएट करते हैं, उनसे ये बेटर है, एंड आई एम नॉट लाइंग टू यू, क्योंकि जब आप चेंजेस करने बैठते हैं, व्हेन यू एडिट बाकी में, तो पूरी पूरी फोटो चेंज हो जाती है ना। मान लीजिए आप, एग्जांपल देता हूं मैं, एक टेबल आपने लिखा कि क्रिएट अ टेबल जिसपे फ्रूट्स रखे हुए हैं, राइट। अब आपके सामने सेब की एक पूरी बास्केट आ गई है, अब उस पूरे फ्रेम में अगर आप एप्पल्स को चेंज करना चाहेंगे, इफ यू वांट टू पुट बनाना और प्रॉब्ली पीचेस और व्हाटएवर, वो पूरे के पूरे सीन को बदल सकता है। चांसेस हैं कि ना सिर्फ बास्केट बल्कि आसपास का सीन भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये जो है REVE AI, ये क्या करता है, एक तो इमेज बहुत रिफाइंड वर्जन आपको देता है, उसके बाद स्पेसिफिकली चीजों को चेंज करता है। तो आपको कोई फ्रेम में कोई स्पेसिफिकली कोई चीज बदलनी है तो पूरे फ्रेम पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलग से उसी चीज को बदलेगा सिर्फ जिसको आप बदलना चाहते हैं पूरी की पूरी फोटो में। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट आई एम नॉट लाइंग टू यू, ये आपके काम आ सकती है अगर आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं। इवन इफ यू वॉन्ट टू चेक, आप जाइए खुद ट्राई कीजिए REVE AI, ठीक है। इस पे आप डाल के देखिए, एंड फ्री में बहुत सारी इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। एक पॉइंट के बाद वो आपसे ऑफकोर्स बोलेगा, लाओ जी डॉलर तो मेरे हाथ में, तब बनाऊंगा अगली, लेकिन आप कर सकते हैं। इसका जो पेड वर्जन है, ये उन लोगों के लिए जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप वीडियो भी इससे जनरेट करवा सकते हैं या अपने फोटोज को एनिमेशन एनिमेट कर सकते हैं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल AI टूल टू यूज, एंड आप यूज करिए, खुद बताइएगा मुझे कि आपका क्या इस पर रिव्यू, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो ये है हमारी लिस्ट में सबसे पहले, रैंकिंग वाइज नहीं मगर सबसे पहले इसका जिक्र करना चाहता हूं, बिकॉज रिसेंटली मुझे ये AI टूल मिला। ओके, मूविंग ऑन। अगला जो है जी, ये बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत काम का है। इस AI टूल का नाम है Gamma AI, GAMA, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारे AIs हैं। आई नो जो लोग बिजनेसेस में हैं या जिन लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, वो लोग मुझसे कहीं गुना ज्यादा और कहीं गुना ज्यादा जानते हैं, एप्स उन्हें पता है, उन्हें AI टूल पता है। बट अगर नहीं पता किसी को, जो सोच रहा है कि प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से कैसे बनाए, तो Gamma AI, GAMA AI, लेट मी टेल यू वाई इट इज बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर AI टूल्स। ये प्रेजेंटेशन तो जनरेट करेगा ही करेगा बहुत सिंपल तरीके से, मगर इसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक स्लाइड में कुछ चेंज करना है, उसको आपको कोई कैजुअल लुक देना है, आपको उसमें चार्ट्स बनाने हैं, आपको उसमें एक फ्लो बनाना है, वट एवर इज देयर, ये फौरन चेंज करेगा स्पेसिफिक स्लाइड्स में। जैसे आपने डाला कि चेंज स्लाइड 3 टू बी मोर कैजुअल विद अ फ्लो चार्ट, तो बाकी प्रेजेंटेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिकली वो वाली स्लाइड जिसको जिस पे आपने प्रॉम्प्ट दिया है वो काम करेगी। मैं नहीं कह रहा बाकी AI नहीं करते, मगर ये जो करता है ना भाई, बहुत बढ़िया करता है। एंड इसमें जो लेआउट से टेम्पलेट्स हैं वो तो कमाल के हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट AI टूल जिससे मैंने प्रेजेंटेशन खुद बना के देखी है, मत पूछिए किस सब्जेक्ट पे बनाई, बिकॉज आपका भाई प्रेजेंटेशन वाला बंदा नहीं है, जो लोग हैं प्रेजेंटेशन वाले उनके काम आएगी। तो आप सुन रहे हैं भाई साहब, इधर तो देखिए, हाँ, Gamma AI, GAMA AI, ठीक है, ओके मूविंग ऑन। अगली है ऐप, बहुत बहुत काम की। अगर ऐप ना मिले वेबसाइट पर चले जाना, फोन में खुलती है, एंड्रॉइड हो, आईओएस हो, या आपके पास पीसी हो या लैपटॉप, वॉट एवर। इसका नाम है famelack.com, famelack। मैं डिकोड नहीं कर पाया इसका नाम ये क्यों रखा है, famelack.com। ये क्या करता है, इसमें जब आप खोलेंगे इसकी वेबसाइट को, तो ये लाइव टीवी है भाई, दुनिया जहां का कोई सा भी चैनल आप देख सकते हैं। इसका इंटरफेस मुझे इतना बढ़िया लगा, जब आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो आपके सामने ग्लोब आता है, उस ग्लोब को आप घुमाइए, जूम कीजिए, जूम आउट कीजिए, जूम इन कीजिए और कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कंट्री के बाद आपको सारे के सारे जो उसके टीवी चैनल्स हैं वो नजर आ जाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ बहुत सारे चैनल्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं आएंगे, मगर मोस्टली जो चैनल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे भाई। बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। सो famelack.com, इट इज नॉट लैकिंग फेम एट ऑल, पर नाम में है तो है, ठीक है। विदाउट सब्सक्रिप्शन अगर आप टीवी चैनल्स देखना चाहते हैं ऑन द गो, ये है आपके लिए famelack.com, ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स में, गैजेट्स दिस वीक में, जिसमें बजट वाले गैजेट्स हैं।
2: cool gadgets।
0: तो गैजेट ऑन द लिस्ट, सबसे पहले बात करूंगा मैं एक ऐसी चीज की जिसको देखने के बाद मेरा भाई हमारे ऑफिस में काम करता है शहबाज, वो कह रहा भाई ये चाहिए, ये तो चाहिए। ये है एसर चार्ज मेट 4-in-1। ये क्या है, एक किस्म का, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस भाई, एक किस्म का कारपेट है, ठीक है, छोटा सा कारपेट है आपके लैपटॉप के लिए, 4-in-1 जैसे मैंने कहा। वायरलेस चार्जिंग देता है ये, वायरलेस चार्जिंग। इसके अंदर सिर्फ वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लैपटॉप स्लीव भी है, तो मतलब लैपटॉप अगर आपका 13-16 inches का है, आप आराम से इसमें लैपटॉप को स्लाइड कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और वायरलेस चार्जिंग है इसमें, आप वायरलेस चार्जिंग के अलावा आप घड़ी चार्ज कीजिए, आप अपने जो हेडफोन्स है वो चार्ज कीजिए, एनीथिंग, पर आपका लैपटॉप इस पे रख के जब आप काम करेंगे 10 लोग मुड़ के देखेंगे और बोलेंगे यही है भाई बिजनेसमैन, इसी को आवे है काम। मैं बता रहा हूँ, फॉर गुड इंप्रेशन, फॉर गुड क्वालिटी, फॉर चार्जिंग पर्पसेस एंड टू लुक मोर सिक्योर इन योर वर्क प्लेस, ये आपके काम आएगा। बहुत सस्ता है भाई, बहुत ही सस्ता है, इंडिया से अगर किसी से मांगेंगे आप तो और भी सस्ता पड़ेगा। तो एसर चार्ज मेट 4-in-1 अभी अमेजोन पे, ये मैंने चेक किया तो अभी अमेजोन पे नॉट अवेलेबल, लेकिन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, बट इट इज अवेलेबल एल्सवेयर एज वेल। तो कतर में भी कहीं पर मिले तो मुझे प्राइस बताइएगा इसका क्या है, मैं भी लेने की सोच रहा हूँ। सो एसर चार्ज मेट, ACER वो जो कंपनी, एसर चार्ज मेट 4-in-1 वायरलेस, इतना टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। एंड बहुत कमाल का भाई, बहुत ही ज्यादा कमाल का, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब अगला जो है जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये भी बड़ा कमाल का है, ये माउस है। मैं इसलिए हिचकिचाया कि आप बोलें ऐसा क्या बताने वाला है। देखो आप, मैं जानता हूँ आप माउस बहुत सारे कतर में ले चुके हैं, लेकिन आपको लगता है ये क्या करूँ मैं इसका, पर ये बजट में है भाई, ये बजट में है। कतर में भी आपको 50-50 रियाल के माउस मिल जाएंगे, लेकिन जो इस माउस के अंदर है वो बाकी में बात नहीं है, ये हाथ में प्रीमियम फील होता है। इसका नाम है MCAT, AMKETTE, MCAT, MCAT प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मगर मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, AMKETTE XS सीरीज, X एज इन एक्सरे वाला और S, ठीक है, एज इन स्नो, तो MCAT स्नो सीरीज फ्लो। ये एक माउस है, एरोगोनॉमिक वायरलेस ब्लूटूथ माउस है ये, इसमें साइड स्क्रोल भी है और साइड स्क्रोल बड़ा अच्छा काम करता है भाई, 7 बटन दिए हुए हैं, मल्टी ओएस, 3200 DPI एडजस्टेबल है, 1000 Hz पॉलिंग है और 800 mAh की रिचार्जेबल बैटरी है, बहुत बढ़िया काम का है। कई मरतबा क्या होता है ना, आप जब एक्सेल शीट खोलते हैं तो उसे साइड स्क्रोल करना पड़ता है और फिर आपको लगता है काश कुछ ऐसा हो जाए तो फौरन साइड स्क्रोल कर लेता, तो ये है और बजट में अंडर 1000 है, कई जगहों पे 1200-1100 का पड़ेगा, मैं इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई इंडिया से आपके लिए ला सके तो ये मंगा लीजिए, आपकी छुट्टी माउस लेने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद आपको, यहाँ पर ही मिल सकता है, चांसेस आर, यहाँ पे आप देख लीजिएगा AMKETTE, मिले तो भाई बताना, हम भी जरा हाथ साफ कर लेंगे क्योंकि काम की चीज तो है भाई, काम की चीज तो है। अब मूविंग ऑन, अच्छा अब देखो कतर में ना एक चार्जर है, अब मल्टीपल कंपनीज इस किस्म के चार्जर बना रही है, तो मैं इसको कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यहाँ पर कतर में एक चार्जर मिल रहा है, उसकी खास बात यह है कि वो जब आप गाड़ी में प्लग इन कर लेते हैं, जहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग की जगह होती है, सॉकेट में लगाते हैं, तो उसके रिट्रैक्टेबल वायर्स हैं, है ना, वो मिल रहे हैं अराउंड 120 रियाल्स के, आई डोंट नो अभी 140-130 ऐसा चल रहा था. पहले मुझे लगा ये खराब चीज है क्या यार, वो मतलब है कोई तो क्या इस बात का, मैं तो अपनी गाड़ी में चार्ज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वायर लगा है चार्ज हो गया. आई वॉज रॉन्ग. ये आप ट्राई करके देखें, जब आप अपनी गाड़ी में इसे लगाएंगे सॉकेट को, तो रिट्रैक्टेबल वायर्स का बहुत फायदा रहता है भाई. आपने फोन चार्जिंग पे लगाया और आपका चाहे कैसी भी पिन लगती हो भाई आपके फोन में, ये काम करेगा. सी टाइप हो, कैसी भी हो, लाइटनिंग केबल हो, सब लगाइए और काम कीजिए. ये बहुत बहुत बढ़िया है. आपने वायर जैसी हटाया अपने फोन से, ये रिट्रैक्ट होकर चला जाएगा. इसमें जो है सॉकेट्स भी, सो यू कैन ऑब्वियसली चार्ज योर लैपटॉप एज वेल, यू कैन चार्ज एनीथिंग यू वांट. एंड ये गाड़ी के मेन सॉकेट से सोर्स जुड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी चार्ज भी करता है, बहुत काम का है. तो अगर कतर में ये मिले आपको, ऐड आएंगे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोचने का नहीं, ले डालने का. ओके, ठीक है जी, ये हो गई गैजेट गुजुट की बातें. अब एक रिमाइंडर, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, FM107 कतर. इस पे आ जाइएगा, कोई गैजेट, कोई ऐप, कोई कुछ भी आपके जहन में आ रहा हो टेक से जुड़ा हुआ, तो हम तक जरूर पहुंचाएं. ठीक है, अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज की तरफ. खबरें बहुत सारी हैं और उन खबरों में एप्पल अभी भी छाया हुआ है. एप्पल जो है रोल आउट करने वाला है iOS 27. आपके पास अगर iPhone 15 से ऊपर है, iPhone 15 से आपका फोन शुरू होता है, तो बढ़िया भाई, इस फॉल में मतलब के कुछ महीनों बाद ही आपको iOS 27 की अपडेट मिल जाएगी. iPhone 15 से पहले वाले फोन्स को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी. यस, Apple has said that. उन्होंने बोला कि न्यू असिस्टेंट जो है वो इनिशियली रिलीज होगा एज अ बीटा वर्जन, उसके बाद यूजर्स जो हैं वो मोर और लेस लाइकली ऑप्ट इन करेंगे फॉर सीरी AI, जो कि iOS 27 डेवलपर्स जो हैं वो रोल आउट करेंगे बीटा, उसका टेस्टिंग वेस्टिंग वो सब अलग चीजें. मगर जो कैपेबिलिटी है इसकी वो आने पर पता लगी, आई विल नॉट जज. पर एक चीज़ है, एप्पल जब भी अपडेट देता है तो पिछले वाला फ़ोन जो है अगर आप अपडेट करते हैं तो पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है, बैटरी यार बहुत जल्दी निकलने लग जाती है, विच इज़ सैड. तो मुझे अपडेट से डर लगता है, मगर आप करना चाहें, इफ़ यू हैव अ फोन iPhone 15 से ऊपर है या iPhone 15 है, तो आपका हो जाएगा. ठीक है, तो ये सपोर्ट जो है देना चाह रहे हैं iPhone 11 को भी, मगर वो बहुत ही वेगली इन्होंने कहा है, तो आई विल नॉट मेंशन दैट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब गेमिंग न्यूज की तरफ, जिससे मेरा दिल टूटा है.
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट.
0: गेमिंग न्यूज में प्लेस्टेशन कम्युनिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा है. जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था आपको कि इन्होंने बोल दिया है कि सीडीज अब नहीं आएंगी, नो फिजिकल डिस्क, नो नथिंग. अब ये करने के बाद एक chaotic सिचुएशन क्रिएट हो गई है. जापानीज कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा annoyed है इस चीज से, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर डिसएग्रीइंग कि यार क्यों कर रहे हो ऐसा. पर प्लेस्टेशन अभी भी आड़ा हुआ है, उन्होंने बोला नो, जनवरी 2028 के बाद सोनी जो है किसी भी किस्म की फिजिकल डिस्क नहीं क्रिएट करने वाला है. जहां तक मुझे लगता है जो लीक्स बता रहे हैं, जब प्लेस्टेशन 6 आएगा, आई डोंट नो, कह रहे हैं कि 28 से 29 में आ जाएगा, उसमें पहले ही इन्होंने सेटल कर दिया कि ना भाई कोई डिस्क नहीं है. द सैड पार्ट इज कि बहस छिड़ चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिस्क नहीं है चलेगा, पर मैं उनमें से जो कह रहे हैं भाई फिजिकल डिस्क तो दो. If I want to share a game with somebody, I cannot. Online में कर सकता हूँ, online में share कर सकता हूँ, मुझे अपना account देना पड़ेगा, that is another thing. मगर physical disc की बात कुछ और होती है यार, है ना? तो वो चीज़ खत्म करके इन्होंने बाकियों को भी provoke कर दिया है. अभी Xbox वाले भी कह रहे हैं ना जी ना, हम भी disc खत्म कर रहे हैं, हटाओ. So ऐसा करने से console तो थोड़ा पतला हो जाएगा, console जो है gaming console, पर इसका फायदा क्या है? You're killing your fans, है ना? I don't know, आपका इस पर क्या कहना है ये आप बता सकते हैं. डिस्क नहीं होगी, आई एम जस्ट सैड. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, FM107 कतर. मुझे बताइएगा कि आप फिजिकल सीडीज के हक में हैं या आपको लगता है कि नहीं, जो ऑनलाइन खरीदे तो चल जाएगा, बिकॉज ऑनलाइन खरीदने पे यू डोंट टेक्निकली ओन इट. सीडीज, या यस यस, यू थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, बट फॉर नाउ टेक इनोवेशन से मैं दो हवाला कभी लेता हूँ इजाजत. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
3: आप सुन रहे हैं FM 107.
4: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार।

0: की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे आखिरत को याद रखने की अहमियत के बारे में। जिंदगी सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि इसका असल मकसद आखिरत की तैयारी है। जब इंसान आखिरत को याद रखता है तो उसके फैसले और रवैये बेहतर हो जाते हैं। ये सोच इंसान को गलत कामों से रोकने में मदद करती है और नेक अमल की तरफ मोटिवेट करती है। जब हमें पता हो कि हर अमल का हिसाब देना है तो हम ज्यादा एहतियात से जीते हैं। अक्सर दुनिया की मसरूफियात हमें इतना बिजी कर देती हैं कि हम अपनी असल मंजिल भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर करने से इंसान अपना फोकस दोबारा ठीक कर सकता है। आज का अमल ये है कि रोज थोड़ा वक्त निकाल कर अपनी जिंदगी का जायजा लें और सोचें कि हम अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें

0: 888-886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पर ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक नई कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से, FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। तो दोस्तों, आज के सफर में मैं ले चलूंगा आपको ऊंचाइयों की तरफ, बर्फ से ढके पहाड़ों, पतली हवाएं और एक ऐसी खातून के ख्वाब के साथ जो हर चोटी को पार कर चुकी हैं। ये कहानी है शेखा अस्मा बिन थानी अल थानी की, कतर की पहली माउंटेनियर, एक ऐसी लेडी जो नामुमकिन को छू गई और अपने साथ कई लोगों की उम्मीदें भी ले गई। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के साथ। कतर में पलना, जहां रेगिस्तान और समंदर है, वहां एवरेस्ट, धौलागिरी, मनासलू, चढ़ाई या पोल्स तक एक्सपीडिशन का ख्याल आम जिंदगी का हिस्सा नहीं होता, लेकिन शेखा आसमा ने इस चैलेंज को अपना जज्बा बना लिया। शेखा आसमा अल थानी एक पायनियर हैं स्पोर्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड्स में कतर के अंदर। उनकी माउंटेनियरिंग में कामयाबियां सिर्फ एक मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया के लिए एक नया रिकॉर्ड है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है या माउंटेन पीक है, और शेखा अस्मा अल थानी पहली कतरी लेडी बनी जो इसकी चोटी तक पहुंची, 8849 मीटर सी लेवल से ऊपर। उनकी यूथ वर्क के लिए उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ हिज एक्सेलेंसी सालेह बिन गानिम बिन नासिर अल अली ने GCC एक्सेलेंस डेकोरेशन से नवाजा है। इस माउंटेनियर ने सिर्फ पुराने जेंडर बैरियर्स को चैलेंज नहीं किया बल्कि नई नस्ल को ये दिखाया कि कैसे नामुमकिन चीजों को भी हासिल किया जा सकता है। शेखा आसमा और उनकी टीम ने 210 किलोमीटर का सफर 1 महीने और 10 दिन में तय किया ताकि वो दुनिया की सबसे ऊंची पीक तक पहुंच सकें। उन्हें और उनकी टीम को फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर के लिए ऑफिशियल मैच बॉल दिया गया था उनकी एडवेंचर के स्टार्ट में। इस बॉल का नाम था अर रहला या अल रहला, जिसका मतलब था या जिसका मतलब है द जर्नी। ये गिफ्ट उनके साथ पूरे माउंटेन एवरेस्ट क्लाइम के दौरान था। ये बॉल कतर की कल्चर, आर्किटेक्चर, मशहूर बोट्स और फ्लैग से इंस्पायर्ड थी, और अर रहला पहली अरबिक मैच बॉल थी जो वर्ल्ड कप में यूज हुई थी। दोस्तों, शेखा आसमा के लिए एवरेस्ट चढ़ना सिर्फ उनके एडवेंचर जर्नी का आगाज था, अब वो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने के मिशन पर हैं, और उनका मकसद है औरतों को इंस्पायर और मोटिवेट करना। जून 2022 में माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के बाद शेखा आसमा अल थानी ने कहा, जब मैं अपनी लिमिट्स को पुश कर रही थी और चोटी तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, वो लाखों रेफ्यूजीज जो अपनी जान को खतरे में

डालकर सिर्फ अमन की तलाश में सफर करते हैं। जुलाई 2022 में जब वो K2 की समिट तक गईं, तो उन्होंने कहा, मैं उन लाखों रेफ्यूजीज और फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए चढ़ रही हूं जो दुनिया भर में मुसीबत का सामना कर रहे हैं। UNHCR और शेखा असमा ने एंटार्कटिक विंटर एक्सपीडिशन से पहले पार्टनरशिप की। उन्होंने माउंट विजन चढ़ा, जो कि साउथ पोल का सबसे ऊंचा पीक है, 2022 के स्टार्ट में। दोस्तों, किसी भी अरब ने अब तक माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और लोत्सी, दुनिया के चार सबसे ऊंचे पीक्स को 2 महीने से कम के वक्त में क्लाइम नहीं किया। शेखा असमा ने हर पीक पर UNHCR का फ्लैग लहराया ताकि रेफ्यूजीज के लिए सपोर्ट और उनके राइट्स के लिए सॉलिडेरिटी दिखाई जा सके। वो पहली अरब वुमेन बनी जो किसी 8,000 मीटर को बिना ऑक्सीजन के क्लाइम करने में कामयाब हुई। जब उन्होंने माउंट मनासलू की चोटी तक पहुंच की, जो दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा माउंटेन है। मनासलू समिट पॉइंट दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। लोकल लोग इसे किलर माउंटेन कहते हैं, उसकी डेंजरस स्लोप्स की वजह से। नेपाल की बूढ़ी गंडकी रिवर वैली की पाइन फॉरेस्ट के ऊपर वेस्ट सेंट्रल रीजन में माउंट मनासलू वाके है, जो 8,163 मीटर सी लेवल से ऊपर है। इसका समिट पॉइंट इतना नैरो है कि एक वक्त में 2 से 3 क्लाइंबर्स भी साथ नहीं हो सकते। अपनी सोशल मीडिया पर शेखा असमा ने लिखा कि ये जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी और हर लेवल पर उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन सारी मेहनत के बाद शेखा असमा ने एक ऐसा टाइटल हासिल किया जो हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा। द कतर फ्लैग हैज बीन रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द टॉप ऑफ मनासलू, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बताया। रोजाना 2 तरफा ट्रेनिंग करना, क्लेयर मर्फी और पैरी डेनियल के साथ, और मेंटली तैयार होना एक ऐसे गोल के लिए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब तक निर्मल पूर्जा ने मेरा गोल तोड़ा, उन्होंने बताया कि समिट पुश के वक्त उन्हें नींद नहीं आई, लेकिन सब कुछ वर्थ इट था। उन्होंने कहा कि जब समिट पुश स्टार्ट किया तो उनके जहन में सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सानी के वर्ड्स ऑफ विजडम घूम रहे थे। सितारों की तरफ देखना मत भूलना जब रुकावटें इतनी ज्यादा हों और कामयाबी के चांसेस इतने कम, तो हम कोशिश क्यों करते हैं? क्यों ना सब कुछ छोड़कर घर चले जाएं? हमारे गोल्स और चैलेंजेस ही वो चिंगारी हैं जो हमारे अंदर का जादू जगाते हैं। हम सिर्फ तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम खुद से कहें कि हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे हर चैलेंज को पार करते हुए ये कतरी वुमेन पहली अरब वुमेन बनी जो 8,000 मीटर समिट तक बिना ऑक्सीजन के पहुंची। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, डोंट डाउनग्रेड योर ड्रीम जस्ट टू फिट योर रियलिटी, अपग्रेड योर कन्विक्शन टू मैच योर डेस्टिनी। और उन्होंने अपने सब दोस्तों और फैमिली का शुक्रिया अदा किया जो उनके साथ इस एडवेंचर में रहे, और उन्होंने कहा, सब कुछ बदल गया, मेरे ख्वाब अब थोड़े और बड़े हो गए हैं। शेखा असमा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एक ऐसा शख्स जो ख्वाब की ताकत को समझता है, वो उसे उस हद तक ले जा सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। कतर ओलंपिक कमेटी ने अपने ट्वीट में शेखा असमा की अचीवमेंट को प्रेस किया, जिसमें उन्होंने माउंट मनासलू, जो दुनिया का 8th टॉलेस्ट माउंटेन है, की समिट तक पहुंचकर कतर के लिए एक नया अरब रिकॉर्ड हासिल किया। वो पहली अरब वुमेन बनी जो 8,000 मीटर को बिना ऑक्सीजन के क्लाइम करने में कामयाब हुई, और जहां बड़ी कामयाबी होती है वहां और बड़े ख्वाब भी पैदा होते हैं। माउंटेनियर शेखा असमा बिन थानी अल थानी पहली कतरी वुमेन बनी जो माउंट देनाली की समिट तक पहुंची, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पीक है और 7 समिट्स का हिस्सा है, 6,190 मीटर की हाइट पर। इस अचीवमेंट के बाद शेखा असमा सिर्फ एक समिट दूर हैं एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने से, जिसमें दुनिया के सब 7 समिट्स और नॉर्थ और साउथ

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, शेखा असमा बिन थानी अल थानी ने अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफर जारी रखा है और अभी हाल ही में उन्होंने नंगा पर्वत की समिट सक्सेसफुली कंप्लीट की, जो कि पाकिस्तान में वाकई है और दुनिया का 9th हाईएस्ट माउंटेन है 8126 मीटर्स की हाइट पर। इस अचीवमेंट के बाद शेखा असमा ने अब तक दुनिया के 14 में से 9 पीक्स क्लाइम कर लिए हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, और ये उनकी अचीवमेंट्स के लिस्ट में एक और रिमार्केबल फीट है। फिलहाल शेखा असमा पाकिस्तान में हैं और अपनी एक्सपीडिशन कंटिन्यू कर रही हैं, और अब उनका गोल है गेशर बर्म 1 और गेशर बर्म 2 और ब्रॉड पीक की समिट तक पहुंचना। अगर ये सफर

0: कामयाबी से मुकम्मल होता है तो उनके पास सिर्फ शिशा पेंगमा और चौ वायु बचेंगे और फिर वो दुनिया की पहली औरत बन जाएंगी जो सब 14,000 मीटर पीक्स क्लाइम करेंगी और एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करेंगी जो माउंटेनियरिंग की दुनिया में एक अनप्रीसीडेंटेड माइलस्टोन होगा। शेख आसमा के सफर सिर्फ माउंटेन्स चढ़ने तक महदूद नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो लोगों के नजरियात को चैलेंज करती हैं और पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करती हैं। अपनी जर्नीज के जरिए वो औरतों और यूथ को मोटिवेट करती हैं कि वो बैरियर्स को तोड़कर अपने ख्वाब पूरे करें। दोस्तों, शेख आसमा के पास अचीवमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है और वो पूरे रीजन की औरतों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। 2012 में उन्होंने माउंट किलिमंजारो की चोटी तक पहुंचकर 2 मिलियन कतरी रियाल रेज किए ताकि गाजा में स्कूल्स बनाए जा सकें। अप्रैल 21, 2018 को वो पहली कतरी बनी जो नॉर्थ पोल तक गई। उन्होंने 8 दिन स्किंग करने के बाद कतरी फ्लैग नॉर्थ पोल की चोटी पर लहराया। वो उन पहली कतरी औरतों में से एक हैं जो माउंट किलिमंजारो क्लाइंब कर चुकी हैं। इसके अलावा वो पहली कतरी वुमेन हैं जो माउंट अकनकागुआ क्लाइंब करने में कामयाब हुई। ये एक्सपीडिशन उन्होंने अर्ली 2020 में कंप्लीट किया। नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए शेख आसमा पहली अरब शख्स बनी जो 8,000 मीटर समिट तक बिना ऑक्सीजन के पहुंची जब उन्होंने मनासलू क्लाइम किया। वो पहली अरब और पहली कतरी वुमेन हैं जो लीडर अंडर 40 क्लास ऑफ 2018 का हिस्सा बनी। उन्हें हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल में से सिलेक्ट किया गया था। इम्प्रेसिव कहना कम होगा, शेख आसमा बिन थानी अल थानी को कतर ओलंपिक कमेटी के हेड ने ऑनर किया क्योंकि वो पहली अरब बनी जो 2,800 मीटर समिट बिना ऑक्सीजन के क्लाइम कर चुकी हैं। अपनी सोशल मीडिया पर आसमा ने लिखा, आई एम बियॉन्ड हम्बल्ड एंड ओवरफ्लोइंग विद ग्रेटिट्यूड टू बी ऑनर्ड बाय हिज एक्सीलेंसी शेख जवान बिन हमद अल थानी प्रेसिडेंट ऑफ द कतर ओलंपिक कमेटी एंड द QOC फैमिली। आसमा ने अलहौत से क्लाइम किया जो दुनिया का 4th हाईएस्ट माउंटेन है जो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर वाकई है। दोस्तों, माउंटेन्स हमें टेस्ट करते हैं सिर्फ चढ़ाई में नहीं बल्कि इस बात में कि हम क्या करने की हिम्मत रखते हैं। शेख आसमा का सफर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हमारी सबसे ऊंची चोटियां बर्फ और पत्थर की नहीं होती बल्कि वो रुकावटें होती हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। वो उम्मीदें होती हैं जिन्हें हमें बढ़ाना होता है और वो ख्वाब होते हैं जिन्हें हमें जिंदा रखना होता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहेंगे या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा करते हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-2107। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर फर्स्ट से साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी
0: क्रिकेट हो
2: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स 4 रन,
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे @1 PM,
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
0: दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी

0: से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम और जरूरी नंबर है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें फौरन मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो हमेशा हमारी मदद के लिए दस्तयाब हो तो हम खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 का मतलब है कि अगर आप किसी भी खौफनाक या खतरनाक हालत में फंस गए हैं तो आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके फौरन मदद हासिल कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 की अहमियत को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर है लेकिन ये हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। जब भी आपको मदद की जरूरत हो आपको बस ये नंबर डायल करना होता है। इस नंबर से आप बहुत सी मुश्किलात से निकल सकते हैं और आपकी जानो माल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और याद रखिए ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हर किस्म के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर्स और कोई खौफनाक सिचुएशन जो आपके लिए खतरा बन सके। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक सी बात करेंगे सेहत के हवाले से, कि जहां बहुत सी जो मालूमात हैं वो सेहत के हवाले से आप तक पहुंचाते हैं, तो आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही अहम है कि फूड लेबल्स को समझना, यानी खुराक के पैकेट पर तो गजाई अज्जा दर्ज

स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन छोटी चॉइसेस की जो बड़ा एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। तो भाई आज का टॉपिक है इको फ्रेंडली किड्स टॉयज, यानी बच्चों के खिलौने जो एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल से बने हुए होते हैं या जिनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम होता है। साथियों खिलौने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते बल्कि बच्चों के लिए लर्निंग, इमेजिनेशन और हैबिट्स को शेप करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टॉयज हम चूज करते हैं वो इनडायरेक्टली प्लैनेट पर भी असर डालते हैं। जरा सोचिए ना, आप एक टॉय शॉप में जाते हैं, हर शेल्फ पर कलरफुल प्लास्टिक टॉयज पड़े हुए हैं, जैसे कि कार्स, डॉल्स, रोबोट्स जो बैटरी से चल रहे हैं। बच्चे एक्साइटेड होते हैं और हर चीज बाय मी करने लग जाते हैं, मुझे चाहिए मुझे खरीद कर दें, यही करते हैं ना बच्चे। लेकिन घर आकर कुछ टॉयज 2 से 3 दिन में टूट जाते हैं, कुछ बैटरीज खत्म हो जाती हैं और कुछ बस कॉर्नर में पड़े रह जाते हैं। देखिए इको स्विच यहाँ बताता है कि फास्ट टॉयज यानी के फास्ट वेस्ट, अगर वही टॉयज आप कह लें कि लकड़ी के या फैब्रिक के या किसी रिसाइक्लेबल मटेरियल से बने हों तो वो ज्यादा ड्यूरेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। अच्छा चलिए आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देखिए दुनिया भर में हर साल बिलियंस ऑफ प्लास्टिक टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से बहुत सारे सिर्फ कुछ महीनों या कुछ दिनों के ही मेहमान होते हैं, उसके बाद उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। प्लास्टिक टॉयज को डिग्रेड होने में 500 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। एक एवरेज प्लास्टिक टॉय की प्रोडक्शन में पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स यूज होते हैं साथियों, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबली टॉय इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट एविएशन इंडस्ट्री के एक छोटे सेगमेंट के बराबर इम्पैक्ट क्रिएट करता है ड्यू टू मास प्रोडक्शन एंड शिपिंग। भाई देखिए इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट सिंपल है, बच्चों की खुशी को एनवायरमेंट के साथ बैलेंस करना। जब हम इको फ्रेंडली टॉयज चूज करते हैं, जैसे वुडन टॉयज हो गए, रिसाइकल्ड प्लास्टिक टॉयज या फैब्रिक बेस्ड टॉयज, तो हम प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर हाउस होल्ड्स अपने टॉय कंजम्पशन को 30% इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव से रिप्लेस करें तो ग्लोबल प्लास्टिक टॉय वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। जरा सोचिए, घर में एक टॉय बॉक्स है जो ऑलरेडी फुल है, लेकिन हर विजिट या हर सेल के बाद टॉयज ऐड होते चले जाते हैं। बच्चे नए टॉयज 1 या 2 दिन खेलते हैं और फिर उसके अंदर इंटरेस्ट उनका लूज हो जाता है। इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि भाई कम टॉयज यानी कि लेस बट बेटर टॉयज, कम टॉयज लेकिन ज्यादा क्रिएटिव और लॉन्गर यूज, यानी ये बच्चों की इमेजिनेशन भी बूस्ट करते हैं और वेस्ट को भी कम करते हैं। चलिए भाई अब कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल इको स्विच टिप्स की तरफ चलते हैं जो पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं। पहला ये कि वुडन या बैम्बू टॉयज प्रेफर करें जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दूसरा, रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए टॉयज चूज करें। तीसरा, बैटरी ऑपरेटेड टॉयज कम यूज करें या रिचार्जेबल ऑप्शंस प्रेफर करें। चौथा, टॉयज शेयरिंग या स्वैपिंग कल्चर अडॉप्ट करें, यानी फ्रेंड्स के साथ टॉयज एक्सचेंज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रोकन टॉयज को रिपेयर करें इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटली रिप्लेसिंग। और मैं तो कहती हूँ मेरे अब्बा जान इसके अंदर मास्टर हैं। साथियों इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया ये है कि बच्चों का प्ले टाइम सिर्फ फन नहीं होता बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर बच्चे शुरू से ही इको फ्रेंडली टॉयज के साथ ग्रो करें तो वो नेचुरली सस्टेनेबिलिटी को अपनी थिंकिंग का पार्ट बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि भाई जो बच्चे सिंपल और क्रिएटिव टॉयज यूज करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इमेजिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू ओवर सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। और भाई आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर टॉय सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि एक एनवायरमेंटल चॉइस होता है। हम जो टॉयज चूज करते हैं वो बच्चों की हैबिट्स और फ्यूचर दोनों को शेप करते हैं। तो भाई अगली बार जब आप टॉय शॉप जाएं, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। इज दिस टॉय फन एंड प्लैनेट फ्रेंडली? तो भाई इसी के साथ मैं हूँ सफा, आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107 कतर, जहाँ हर खिलौना सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक ग्रीन फ्यूचर भी बनाता है।
0: आप सुन

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे आखिरत को याद रखने की अहमियत के बारे में। जिंदगी सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि इसका असल मकसद आखिरत की तैयारी है। जब इंसान आखिरत को याद रखता है तो उसके फैसले और रवैये बेहतर हो जाते हैं। ये सोच इंसान को गलत कामों से रोकने में मदद करती है और नेक अमल की तरफ मोटिवेट करती है। जब हमें पता हो कि हर अमल का हिसाब देना है तो हम ज्यादा एहतियात से जीते हैं। अक्सर दुनिया की मसरूफियात हमें इतना बिजी कर देती हैं कि हम अपनी असल मंजिल भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर करने से इंसान अपना फोकस दोबारा ठीक कर सकता है। आज का अमल ये है कि रोज थोड़ा वक्त निकाल कर अपनी जिंदगी का जायजा लें और सोचें कि हम अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
3: दोस्तों, हमें अपनी और अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है। FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए।
4: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: Well, दोस्तों आज के सेगमेंट में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वर्टिकल फार्मिंग या फिर फार्मिंग इन स्काईस्क्रेपर्स। सोचिए कि ऐसा शहर जहां बिल्डिंग के अंदर ही खेती हो रही हो, या कोई ऐसी जगह जहां आपको न धूप लग रही है ना उस तरह की तपिश का एहसास है, लेकिन आपकी फार्मिंग वहां पर हो रही है। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि रियलिटी बनती जा रही है। इसे हम कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। जी हाँ, वर्टिकल फार्मिंग का मतलब होता है कि सब्जियों या फिर जो फल हैं सीधे जमीन पर नहीं बल्कि लेयर्स में ऊपर नीचे ग्रो किए जाएं, अक्सर टॉल बिल्डिंग्स या फिर स्काईस्क्रेपर्स के अंदर। क्योंकि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, शायद उस तरह से लैंड ही अवेलेबल ना हो या फिर वो उतनी फर्टाइल ना रह जाए, तो कुछ और भी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स चाहिए होंगे। बस वर्टिकल फार्मिंग उसी का एक नतीजा है, वही चीज जो है वो फिर सामने आ रही है। तो वर्टिकल फार्मिंग तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मिट्टी का यूज होता है वर्टिकल फार्मिंग में। प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट दिए जाते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स जिसे हम कहते हैं। वही LED लाइट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, सूरज की रोशनी का बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ एक एक एक क्योंकि सूरज की रोशनी उस तरह से बिल्डिंग्स के अंदर तो नहीं आ सकती, लिहाजा LED लाइट्स जो है वो यहाँ पर काम करती है। और हर चीज AI कंट्रोल करती है, फिर चाहे टेम्परेचर हो, पानी हो या फिर हो हवा। इस सब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम जगह में ज्यादा फूड उगाया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक छोटी सी स्पेस में ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले में कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े शहरों में भी फ्रेश फूड अब मिल सकेगा बिना दूर से लाए। ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, टाइम बचेगा और फूड यानी जो खाना है वो ज्यादा फ्रेश होगा। लेकिन हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। देखिए, वर्टिकल फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा होता है क्योंकि लाइट्स और मशीन्स हमेशा चलती रहती हैं। अगर एनर्जी क्लीन ना हो तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान भी दे सकती है। फ्यूचर का सीन ये हो सकता है कि दोहा जैसे शहरों में जहाँ पर हाई राइज फार्म्स आम हो जाएं, जहाँ बिल्डिंग्स के अंदर ही सब्जियां ग्रो हो और सीधे सुपरमार्केट या फिर रेस्टोरेंट्स तक पहुंचा दी जाएं। तो ये है वन स्टेप टू 2030, जहाँ वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग हमें यही सिखाती है कि फ्यूचर में जमीन की कमी बड़ी प्रॉब्लम ना बने। इंसान अपनी सोच और टेक्नोलॉजी से कभी भी कहीं भी फूड उगा सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बैलेंस टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट दोनों के बीच। अगर ये बैलेंस अच्छे तरीके से बना रहा तो दोनों ही हमारे साथ आराम से चल सकेंगे। कोई भी चीज नुकसान में अगर आएगी तो सीधा नुकसान सबसे पहले इंसान का होगा, तो टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट में गुड बैलेंस बनाने का काम भी इंसान का है। तो चलिए, ये तो आज का वन स्टेप टू 2030 हुआ, जहाँ हमने बात की वर्टिकल फार्मिंग की। हर रोज हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर इसलिए भी आ रहे हैं ताकि आप इन फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स के हवाले से थोड़ा सा जो है ना मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, अवेयर हो जाएं। बस हमारी कोशिश है हल्के फुल्के अंदाज में आपको समझाएं, फिर आगे आने वाले दिनों में इन्हें डिटेल में भी आपको समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हैं FM 107, दिल से देसी। One step to

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर।
1: दोस्तों अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। भाई ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ गोल क्या है, कितना टाइम अवेलेबल है और किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है जब आप ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोस बिल्ड करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एपिसोड होने जा रहा है, एंड तक जरूर सुनिएगा। इस एपिसोड में मैं बहुत से ऐसे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इनमें से कोई भी पार्ट मिस नहीं करना चाहिए। भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूँ आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107।
0: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रोग्राम के शुरुआत में कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम ब्रश अप करेंगे, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या हमें ध्यान रखना है उसके हवाले से। सबसे पहले एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बार बार सिक्योरिटीज का लेना और बेचना, गोल मार्केट टू आउट परफॉर्म करना। दूसरा पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, किसी मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करना, गोल मार्केट परफॉर्मेंस को लो कॉस्ट पर मैच करना। तीसरा डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैनेजर क्लाइंट की तरफ से डिसीजंस लेता है, उन इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है जो हैंड्स ऑफ इन्वेस्टिंग चाहते हैं। और आखिर में नंबर 4 पे नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी मैनेजर सिर्फ एडवाइस देता है, फाइनल डिसीजंस इन्वेस्टर के होते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड उन सब लोगों के लिए है जो खुद से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम करना चाहते हैं। अगर आप एक डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हैं तो ये एपिसोड आपको गाइड करेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम करना चाहते हैं तो आज के पॉइंट्स आपको ये समझने में मदद देंगे कि क्या आपके फाइनेंशियल प्लानर वाकई आपके लिए सही काम कर रहे हैं या सिर्फ बातों में आपका वक्त जाया कर रहे हैं, क्या उन्हें अपना सब्जेक्ट ठीक से आता भी है या नहीं, ये आप खुद जान पाएंगे अगर आप ये एपिसोड ध्यान से सुने। तो भाई मैं आपको ले चलता हूँ कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस के जरिए। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। पोर्टफोलियो बिल्ड करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लें तो बेहतर होगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को चूज करने से पहले कुछ चीजें समझना जरूरी होती हैं, जैसे कि आपके पास कितना वक्त बाकी है अंदाजन अपने लाइफ गोल तक पहुंचने के लिए। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं

मसलन अगर आप 58 साल के हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 2 साल का वक्त है। लेकिन अगर आप 25 साल के हैं और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास तकरीबन 35 साल का वक्त है। वहीं दूसरा नंबर आता है जनाब, आपको पैसे एक ही वक्त में चाहिए या धीरे धीरे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप अपने बच्चों की शादी के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो आपको एक ही वक्त में लमसम अमाउंट चाहिए होगा। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के बाद कैश फ्लो के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पैसा एक ही साथ नहीं बल्कि रेगुलरली इनकम के तौर पर चाहिए होगा। ये दोनों सिचुएशंस में स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी, इसलिए ये समझना जरूरी है कि आपके पास कितना टाइम है, आपको पैसा एक साथ चाहिए या कैश फ्लो के तौर पर। इन्वेस्टमेंट टेन्योर के मुताबिक कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, तो उनपे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को टेन्योर के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करें। कोई क्रिस्टल क्लियर गाइडलाइन नहीं है, सबसे साफ और क्लियर बात यह है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस और दूसरों की लाइफ से जो सीखा है उसके बेसिस पर 0 to 3 years तक शॉर्ट टर्म, 3 to 10 years तक मिड टर्म और 10 years से ज्यादा लॉन्ग टर्म। ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि पोर्टफोलियो में जो आइटम्स आप चूज करते हैं वो आपके टेन्योर पर डिपेंड करते हैं। चलिए दोस्तों अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे। जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ये पैसा कब चाहिए। अक्सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कैश फ्लो का कंसेप्ट नहीं होता क्योंकि आपको पैसा एक ही वक्त में चाहिए होता है। एक मिसाल से समझते हैं, अगर आपको घर की रिपेयरिंग करनी है तो जैसे ही काम शुरू होता है आपको पूरा पैसा एक साथ चाहिए होता है। मगर अगर आपकी बेटी की शादी 2 साल बाद है तो आपको उस वक्त पूरा पैसा चाहिए होगा। वहीं अगर आपका बेटा कॉलेज जा रहा है और आपने फीस के लिए पैसा रखा है तो भी आपको एक वक्त में ही वो पैसा चाहिए होगा। तो जब भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि पूरा पैसा एक ही वक्त में चाहिए होगा, इसलिए कैश फ्लो प्लानिंग का यहाँ कोई रोल नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले सेफ्टी ऑफ कैपिटल, आपके पैसे की हिफाजत। भाई, आप अपना पैसा किसी ऐसे एसेट में नहीं लगा सकते जहां रिस्क ज्यादा हो। आप किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन, पर्सन या स्कीम में पैसा नहीं लगा सकते जहां से पैसा वापस मिलने का भरोसा ना हो और शॉर्ट टर्म में आपके पास एडजस्ट करने का वक्त नहीं होता है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का टाइम भी कम होता है, इसलिए कैपिटल की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहीं अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, यानी आसानी से पैसा निकालना, आपको ये पैसा जल्दी चाहिए होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल में। आप पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगा सकते जो लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाए। अगर आप पैसा 5 साल के लिए लॉक कर देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए काम का नहीं होता, जैसे NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम या रियल एस्टेट वगैरह। ये दोनों लिक्विड होते हैं और वक्त पर पैसा निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए लिक्विडिटी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत जरूरी होती है। नंबर 3 पे वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है, यानी कि एसेट प्राइसेस का ऊपर नीचे होना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको ऐसे एसेट्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए जो वोलेटाइल हों। मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड खरीदा, 1 महीने बाद या 1 साल बाद उसकी प्राइस बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है। कमोडिटीज भी कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स भी वोलेटाइल हो सकते हैं। तो अगर आप इन एसेट्स में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि स्पेकुलेशन कर रहे हैं। स्पेकुलेशन का मतलब अंदाजा लगाना कि शायद प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अगर आपका लाइफ गोल सर के ऊपर है तो आप अंदाजों पर अपना पैसा रिस्क में नहीं डाल सकते। आपको किसी को पैसा देना है, किसी जरूरत को पूरा करना है, तो वॉलेटिलिटी से बचना जरूरी है। नंबर 4 पर है साहब टैक्स एफिशिएंसी, यानी आप कितना काम टैक्स देकर ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टैक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका गोल 2 साल बाद का है तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चूज करें जो बैंक FD से बेहतर टैक्स एफिशिएंसी देते हों, जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स या टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में भी टैक्स का एंगल जरूर देखें। और 5वें नंबर पे है साहब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, यानी मुनाफा कितना होगा। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? जवाब है नहीं। अगर आप लो विटेलिटी वाला इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं, हाई लिक्विडिटी चाहते हैं और कैपिटल की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि रिटर्न थोड़ा कम होगा। अगर कोई फाइनेंशियल प्लानर आपको कहता है कि 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, तो या तो वो रिस्क ले रहा है या आपको स्पेकुलेशन की तरफ ले जा रहा है। सही अप्रोच ये होगी कि आप पैसा बैंक FD, लिक्विड फंड या डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाएं।

जहां वोलेटिलिटी जीरो हो, लिक्विडिटी 100% हो और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। रिटर्न कम हो सकता है लेकिन आपका गोल्ड सिक्योर रहेगा और ये सबसे जरूरी बात है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पे। भाई मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती हैं जो 3 से 7 साल के दरमियान होती हैं, लेकिन मैं इसे 10 साल तक एक्सटेंड करना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ने हमें दिखाया है कि कभी कभी 10 साल तक भी मार्केट्स स्टैग्नेंट रहती हैं, ना ऊपर जाती हैं ना नीचे आती हैं। तो अगर आप अपने किसी लाइफ गोल के लिए मीडियम टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको संभल कर चलना होगा। आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट अगले कुछ सालों में क्या करेगी। वहीं मीडियम टर्म प्लानिंग क्यों मुश्किल है? ये सबसे ट्रिकी प्लानिंग होती है, चाहे आप खुद से कर रहे हो या किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ। आपको बेस्ट जजमेंट लेना होता है। आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। अगर आपका गोल है बेटा या बेटी की एजुकेशन और आपको 5 साल में फीस और खर्चे देने हैं तो ये मैनेजेबल है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 7 साल बाद शादी करनी है तो ये प्लानिंग और भी ट्रिकी हो जाती है। भाई आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो शायद आउटकम मिले, शायद ना मिले। वहीं अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो पैसा ग्रो नहीं करेगा और इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगा, तो बीच का रास्ता लेना जरूरी है। मीडियम टर्म पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये चीजें याद रखें। वोलेटिलिटी, आप थोड़ी वोलेटिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से ज्यादा लेकिन लिमिटेड, लेकिन पूरी इक्विटी में पैसा डालना रिस्की हो सकता है। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, सेफ्टी अब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब वोलेटिलिटी से ज्यादा कंसर्न ये है कि आपने किस स्कीम, स्टॉक, बॉन्ड या इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाया है। मीडियम टर्म में वक्त जल्दी निकल जाता है तो गलत चॉइस का टाइम नहीं होता। वहीं बात करें अगर लिक्विडिटी की, तो आपको हर वक्त पैसा नहीं चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट में हाईली लिक्विड होने की जरूरत नहीं। अगर आप 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और पहले 5 साल पैसा लॉक कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ULIPs जैसे प्लान्स जो 5 साल के लिए लॉक करते हैं मीडियम टर्म के लिए सुइटेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है और 54EC बॉन्ड्स में पैसा लगाया है टू सेफ टैक्स, तो वो ठीक है क्योंकि वो 5 साल बाद पैसा दे देते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की, तो 5 से 7 साल में परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इसलिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर लेना पड़ेगा, लेकिन 60-70% इक्विटी लेना रिस्की हो सकता है। अगर मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया तो आपका गोल मिस हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: बात करें अगर बेस्ट अप्रोच की बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बेस्ट होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, थोड़े अग्रेसिव फंड्स, थोड़ा डेट फंड और थोड़ा बैंक एफडी। ये सब मिलकर आपका पैसा सेव भी रखेंगे और ग्रो भी करेंगे ताकि आप अपना लाइफ गोल अचीव कर सकें। तो ये आज के प्रोग्राम का हमारा तीसरा और आखिरी एलिमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात

इसे लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, लेकिन वक्त कम है और रिस्क ज्यादा। भाई स्टॉक मार्केट्स को जो वक्त चाहिए होता है, माइक्रो इकोनॉमिक चेंजेस को एडजस्ट होने में वक्त लगता है, जैसे रियल एस्टेट का साइकिल 8

स्टॉक मार्केट का साइकिल अनप्रिडिक्टेबल होता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी कभी कभी बदल सकती हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, डायरेक्ट स्टॉक्स, पीएमएस, ETF या ULIPs, एक चीज सब में कॉमन है और वो ये कि ये सब टाइम मांगती हैं। दोस्तों, इस बात को भी समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आसान क्यों है। भाई, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आसान है, लेकिन मीडियम टर्म ट्रिकी होता है। लॉन्ग टर्म में वक्त आपका दोस्त बन जाता है। भाई, अगर आपका एडजस्टमेंट ठीक है या आपके फाइनेंशियल प्लानर की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए, वक्त के साथ करेक्शन हो जाता है। जो लोग लॉन्ग टर्म में पैसा खोने देते हैं, वो अक्सर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखते। अगर आप थीमेटिक फंड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 2005, 6, 7 में लोगों ने किया था, तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में भी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सेंटर लाइन पर रहते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड या हाइब्रिड फंड, 60 या 40 या 40 या 60 के हिसाब से, तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले, टैक्स एफिशिएंसी। बार बार फंड स्विच करना या निकालना टैक्स इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है। अगर आपने सही फंड चूज किया है, तो उसमें बने रहिए। इंटरनेट पर रिटर्न्स चेक करना या दोस्तों से कंपेयर करना, ये सब अवॉइड करें। पेशेंस रखें और अपने डिसीजन पर टिके रहिए। नंबर दो पे, इमोशनल डिसिप्लिन। लॉन्ग टर्म में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। पैनिक में आकर फंड स्विच करना या निकालना नुकसानदेह हो सकता है। नंबर तीन पे, प्रोडक्ट सिलेक्शन। भाई, ULIPs आज के जमाने में म्यूचुअल फंड्स के कई मामलों में बेहतर साबित हो रही है, जैसे लोअर टैक्स स्ट्रक्चर, इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन, बोनस पे आउट्स, फोर्स्ड डिसिप्लिन। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। ये सब चीजें आपके हक में काम करती हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है। आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी काम करेगा जब आप सही सिलेक्शन करें, डिसिप्लिन के साथ बने रहें और वक्त को अपना दोस्त बनाएं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में कामयाबी का राज क्या है? भाई, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइम इज द की, वक्त आपका सबसे बड़ा दोस्त है। टैक्स एफिशिएंसी इज द की, जितना टैक्स बचा सके उतना आपका रिटर्न बढ़ता है। और सिलेक्शन इज द की, सही इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब आपके पोर्टफोलियो की सक्सेस का बुनियाद है। अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो चाहे आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी इन्वेस्टमेंट में हो, आप आसानी से अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं बिना किसी बड़ी मुश्किल के। और वहीं हर इन्वेस्टमेंट में कुछ बातें हमेशा याद रखिए। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, पैसों की हिफाजत। आपका पैसा सिक्योर जगह पर होना चाहिए, ये सबसे पहला कदम है। जजमेंट, सोचना, समझना और उसके बाद फैसला लेना। हर वक्त सही डिसीजन लेना जरूरी है, भाई कब इन्वेस्ट करना है और कब नहीं। क्लियरिटी यानी वजाहत होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही है और किस वक्त सही है। और आखिर में, टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स का फायदा उठाना चाहिए। जो टैक्स आप सेव करते हैं, वो आपका एफर्टलेस रिटर्न होता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ सही प्लानिंग से आपका पैसा बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इन बुनियादी बातों को समझ लें, तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान नहीं, एक पावरफुल टूल बन जाएगा आपकी लाइफ गोल को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको ये समझने में मददगार साबित हुआ होगा कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाता है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। ये सब कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट के टेन्योर पर डिपेंड करता है। अगर इस एपिसोड ने आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए एक डायरेक्शन दिया है, तो हमें जरूर अपना फीडबैक भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 666-222-1212।
107 भाई आपके मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा। आज के लिए सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तो तब तक अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरा

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेव आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। हर हफ्ते एक ऐसी मूवी के बारे में हम बात करते हैं जिसके बारे में आपको सोचना और समझना चाहिए देखने से पहले। वेल, अगर आपने FM 107 पे ये रिव्यू सुन लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मूवी देखनी है या इग्नोर करनी है, अपने पैसे बचाने हैं। वेल, इस मूवी ने काफी धमाल मचाया था एक वक्त पे, और इस हफ्ते जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो धमाल तो मचा चुकी है, लेकिन क्या इतना धमाल मचाया है कि वो लॉन्ग टर्म में और धमाल मचा पाएगी?
2: अपने एकदम ठीक सामने देखिए, व्हील के साइड में एक रेड बटन है,
3: दबा दिया।
2: नहीं दबाना था।
1: Well, ये तो आज का रिव्यू देखने के बाद और मूवी पर आपके डिसाइड करने के बाद ही तय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का मूवी रिव्यू, और आप सुन रहे हैं रिव्यू ऑफ द वीक। तो दोस्तों, मेरा नाम है फजील और इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं धमाल 4 मूवी के बारे में। और ये एक ऐसी मूवी है जो 2007 में जब पहली मूवी आई थी इसने इतना धमाल मचाया था कि उसके मीम्स आज तक रेलेवेंट है, आज तक लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद जितनी मूवीज आई उसके भी मीम अभी तक बन रहे हैं। तो ये धमाल 4 मूवी का जो रिव्यू है जब आप आज सुनेंगे तो फिर मूवी देखने के बाद डिसाइड होगा कि इसका रिव्यू 2026 के बाद क्या 2040, 45 या 37, 38 तक रिलेवेंट रहेगा या नहीं। ये तो मूवी पर डिपेंड करता है कि कैसी मूवी चलती है और क्या उतनी हंसी, क्या उतनी मजेदार ये मूवी है। तो सबसे पहले हम मूड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस मूवी का मूड क्या है। धमाल 4 मूवी का जो मूड है वो बड़ा ही लाजवाब कहा जा सकता है।
4: मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे। किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए।
5: जोर से बोल। एम के नीचे।
4: ये तो गया।
6: ये भी गया।
4: कौन?
6: जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था।
1: धमाल 4 एक ऐसी मूवी है दोस्तों जो आपको पूरी तरह अपना दिमाग थिएटर के बाहर रखने पर मजबूर कर देगी। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात तो पहली यही है। इस बार फिल्म का मूड बहुत ज्यादा लाउड, ओवर द टॉप और केओटिक है। अगर आप ओरिजिनल धमाल 2007 वाला सटल और स्मार्ट ह्यूमर ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, पर अगर आपको स्लैपस्टिक माइंडलेस कॉमेडी पसंद है तो ये एक टाइम पास फैमिली वॉच बन सकती है। फिल्म में फिर से वही पुराना खजाना ढूंढने का फॉर्मूला यूज किया गया है, मतलब 2007 के बाद 2026 में 20-21 साल में आप कुछ चेंज कर सकते थे, लेकिन पता नहीं डायरेक्टर को समझ आया होगा कि यार वो पुराना ही वाला लेकर चलते हो, क्योंकि 2007 वाली जनता बड़ी हो गई है, उसको शायद इतना याद हो या ना हो। यार आप कैसी बात करते हैं, हमें 90s के गाने याद है और आज भी हम 90s की मूवीज को देखा करते हैं, तो 2007 के बाद अब हमें सब चीजें याद है। अब ऐसा भी नहीं है कि 2007 की जनता जो है 20 साल की हो गई तो उसको फिर यही दिखा दो, है ना। 2005-2004 की जनता जो है 3 साल की रही होगी और उसको अभी से मूवी का बड़ा शौक आ गया है और उसी जनता के लिए ये मूवी बना दो। लेकिन ये वही है कि यार सबके पास से होते हुए ये मूवी आ चुकी है तो ये पुरानी लगेगी, बट जहां सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में पागलपन की सारी हदें पार कर जाते हैं जब उनको खजाना ढूंढना होता है,

0: वैसे ही इस मूवी को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा यू नो लेजी राइटिंग जैसी लगती है। कुछ सीन्स में पुरानी यादें ताजा होती हैं जब अरशद वारसी यानी कि आदि और जावेद जाफरी यानी कि मानव स्क्रीन पर आते हैं, पर ओवरऑल मूड बहुत ज्यादा लाउड और थोड़ा थका देने वाला लगता है क्योंकि स्क्रिप्ट में नए जोक्स की बहुत ज्यादा कमी है। दोस्तों इस मूवी की हाइप जो है वो बड़ी लाजवाब थी, लेकिन राइटिंग जो है इतनी वीक है कि अब इतनी हाइप बनी रहे ये मुमकिन नहीं है। रिलीज से पहले धमाल 4 को लेकर मार्केट में काफी तगड़ा हाइप था क्योंकि अजय देवगन, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा ये ऐसे जबरदस्त एक्टर थे जिनकी कॉमेडी टाइमिंग भी अच्छी है, जिनके पंच लाइंस भी बहुत बेहतरीन तरीके से निकलती हैं, बढ़िया कॉमेडी एक्टर्स एक साथ आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि धमाल 4 एक बार फिर से धमाल मचाएगी। फैन पेजेस, सोशल मीडिया पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार मीम मटेरियल का डबल डोज मिलेगा, है ना। जो मीम आज भी इस्तेमाल होता है 2007 की मूवी से वो 2040 तक, मतलब मीम समाज बड़ा खुश हो गया था। अनफॉर्चुनेटली रिलीज के बाद का हाइप थोड़ा ठंडा पड़ गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस का कहना है कि फिल्म ने नॉस्टैल्जिया बेचने की कोशिश तो की है पर इसका वीएफएक्स और राइटिंग बहुत कमजोर है। ट्रेलर में जो अच्छे जोक्स थे बस वही फिल्म में बेस्ट लगते हैं। रवि किशन का पायरेट अवतार और उनका स्वैग जरूर थोड़ा ट्रेंड कर रहा है, पर वीक स्क्रीन प्ले की वजह से मूवी पहले पार्ट जैसा कल्ट स्टेटस हैंडल नहीं कर पा रही है। वैसे दोस्तों मेरा ये मानना है, क्रिटिक्स अपना अपना हिसाब लगाते हैं, मेरा अपना हिसाब ये है कि ये मूवी बनाई गई है 2004, 2003, 2002 के बच्चों के लिए जो अब 22, 23, 24, 20, 18, 25 साल के हैं, उनके लिए वही पुराने जोक्स लाकर रख दो। मूवीज पर पैसे वही खर्च कर रहे हैं, वही एक टीनेजर पर खर्च करने वाला या टीनेजर पर मार्केटिंग करने वाली टैक्टिक्स जिसके वजह से पैसे कमाई कर ली जाए, कुछ राइटिंग करके नया कर दें, कुछ अनोखा कर दें, कुछ अलग से यू नो क्रिएटिविटी डाल दें। वो डायरेक्टर का विजन नहीं रहा, मुझे डायरेक्टर के विजन पर शक होने लगा, इसीलिए फिल्म की स्टार रेटिंग बहुत मुतासिर हुई। ओवरऑल मैं इसे 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। एक्टिंग के मामले में अगर हम बात करें तो यू नो थोड़ा अलग है मामला। एक्टिंग में 5 में 3.5 दिया जा सकता है, एक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई है। रितेश देशमुख की बात कर ले, उनका भोजपुरी एक्सेंट, संजय मिश्रा का ब्रो बोलने वाला स्टाइल कुछ जगह हंसाता है, अरशद और जावेद की जोड़ी हमेशा की तरह क्यूट लगती है, मजेदार लगती है, इंटरेस्टिंग है, ये क्रिएटिव है, ये पार्ट क्रिएटिव है जो कि ऑब्वियसली 2007 से यहां पर इसे इंडल्ज कर दिया गया है, ठांस दिया गया है, लेकिन एक्टिंग अच्छी हुई है तो इसलिए 5 में से 3.5 स्टार।
1: डांसिंग के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे, किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए। ये तो गया,
2: ये भी गया,
1: कौन?
0: अब आते हैं डायरेक्शन और वीएफएक्स। 5 में से 1.5 डायरेक्शन और वीएफएक्स को। इंद्र कुमार का डायरेक्शन इस बार काफी पुराना लगता है। फिल्म का सीजीआई वीएफएक्स बिल्कुल सस्ते पेंट जैसा नकली फील होता है जो मजा जो है वो खराब कर देता है। अब सोचिए यार, घर को आपने खूबसूरत बनाया, लग्जरी बनाया है, नए जमाने की आपने ब्रांडिंग या कहें नए जमाने की आपने डिजाइन बनवाई है, आपने आर्किटेक्ट का इस्तेमाल किया है, पेंटिंग आपने चूने से करवा दिया यार, नहीं मजा है। तो वो वाली चीजें हैं, डायरेक्शन और वीएफएक्स बहुत ही सस्ता और आउटडेटेड है। स्टोरी और स्क्रिप्ट में 5 में से 1, मतलब डायरेक्शन इससे ज्यादा बेहतर था स्टोरी और स्क्रिप्ट एकदम ही बेकार। कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड यानी कि खिंचा हुआ है और बॉडी शेमिंग जैसे पुराने रिग्रेसिव जोक्स पर हंसाने की कोशिश की गई है जो बिल्कुल काम नहीं करती। ये फिल्म सिर्फ उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक है जो बिना किसी लॉजिक के बस हल्की फुल्की पॉपकॉर्न कॉमेडी इंजॉय करते हैं, जो मतलब फैमिली इंटरटेनमेंट है ना। अगर आप कुछ नया देखने जा रहे हैं या फिर जैसा मुझे लगता है कि ये 2002 से 2007 या 8 या 9 या 10 की जो पैदाइश वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाई जा रही है, ये तो मतलब सीरियसली अब तो उनका भी ह्यूमर बहुत अच्छा हो गया ना। आप सोचिए 2007 वाले बच्चों का ह्यूमर ऐसा थोड़ी 2026 में वैसा रहेगा जैसा हम लोग का ह्यूमर था। उनका तो और ज्यादा बेहतरीन ह्यूमर हो गया, वो और ज्यादा टैलेंटेड हो गए, उनको अलग तरह के जोक चाहिए भाई, उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हम सबसे कहीं ज्यादा बेहतरीन हो गए। तो ऐसे में यार आपको कुछ तो नया और कुछ तो चेंजेस वाले काम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ओवरऑल ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग लेकर जा रही है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जरा मूवी के बाकी चीजों के बारे में, जैसे कि मूवी का फन फैक्ट क्या रहा प्रोडक्शन में।

0: किया था इस फिल्म को बनाने के लिए, किन लोकेशंस का यूज किया गया, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा, सिनेमाटोग्राफी और साउंड पर भी जरा नजर डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फन फैक्ट अबाउट दिस मूवी। धमाल 4 के प्रोडक्शन को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था जिसे लगभग 200 करोड़ के मेगा बजट के साथ हैंडल किया गया। इस मूवी के प्रोडक्शन से जुड़े एक बहुत ही हैरान करने वाला किस्सा इसके डेंजरस क्लिफ हैंगर सीक्वेंस से आता है। जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों को लगा कि ये सीन पूरी तरह से VFX और ग्रीन स्क्रीन पर बनाया गया है, पर अरशद वारसी ने ट्रेलर लॉन्च पर रिवील किया कि ये सीन किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि एक रियल और बहुत ऊंची लाइव लोकेशन पर शॉट किया गया था। इस पूरे सीक्वेंस के लिए पहले 15 से 20 दिन का लंबा स्केड्यूल प्लान किया गया था, पर अजय देवगन ने अपनी एक्शन एक्सपर्टीज का यूज करके इस पूरे काम को सिर्फ 3 दिन में रैप अप कर दिया, जिसने पूरी प्रोडक्शन टीम को हैरान कर दिया था। तो इस मूवी को जब आप देखेंगे तो एक सीन है जिसमें क्लिफ का इस्तेमाल, या कहें बहुत पहाड़ी का सीक्वेंस है, एक डेंजरस क्लिफ हैंगर सीक्वेंस है, वो आपको समझ में आएगा जब आप मूवी देखेंगे। फिर पूरी डिटेल में चले जाएंगे तो फिर क्या मजा है आपको मूवी देखने का। बजट के मामले में भी प्रोडक्शन टीम को काफी समझदारी से काम लेना पड़ा क्योंकि फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ज्यादा बड़ी थी। अजय देवगन इस फिल्म के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे जिन्होंने गुड्डू के रोल के लिए 40 करोड़ चार्ज किए थे। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अजय देवगन की तारीफ करते हुए बताया कि वो एक काफी प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर हैं और उन्होंने फिल्म के बढ़ते प्रोडक्शन कॉस्ट को मैनेज करने के लिए अपनी फीस में खुद बड़ा कट लिया। 40 करोड़ के बाद भी मुझे तो नहीं लगता ये कट है लेकिन फिर भी विजुअल स्केल पर अगर हम देखें, फिल्म की विजुअल स्केल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। उनके अलावा रितेश देशमुख, अरशद और रवि किशन ने इस फिल्म के लिए 10-10 करोड़ लिए। फिल्म को रिलीज से ठीक पहले सेंसरशिप का भी सामना करना पड़ा जहां CBFC ने 2 ऑब्सीन हैंड जेस्चर्स को हटाने का ऑर्डर दिया और लगभग 7 अब्यूजिव वर्ड्स को बदलने के लिए कहा। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर वेलकम टू द जंगल के साथ बड़े क्लैश से बचाने के लिए मेकर्स ने स्ट्रेटेजिकली इसकी रिलीज डेट को 3 जुलाई से बदलकर 10 जुलाई कर दिया ताकि फिल्म को पूरे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन मिल सके। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टर के विजन को लेकर। बड़े पुराने डायरेक्टर हैं इंद्र कुमार, बॉलीवुड कॉमेडी को लेकर हमेशा से एक बहुत ही क्लियर और लाउड विजन रहा है। धमाल 4 के लिए उनका मेन गोल एक ऐसी ब्रेनलेस केओस और स्लैपस्टिक कॉमेडी क्रिएट करना था जिसे पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर एंजॉय कर सके। वैसे आजकल दौर चल रहा है स्लैपस्टिक कॉमेडी का।
1: उंगली तो किस्मत ने किया है हमारी, इतना भारी सजा दे दिया, इतना भारी।
0: अपना इंटरव्यू जब दे रहे थे इंद्र कुमार तो हमेशा इस बात पर वो जोर देते हैं और दिया इस बार भी कि इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत है इसका एंसेंबल कास्ट। उनका मानना है कि आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में ऑडियंस थिएटर में सिर्फ इसलिए आती है ताकि वो कुछ देर के लिए अपना दिमाग बंद करके खुलकर हंस सके, और उनका ये फॉर्मूला पहले भी बहुत बार चल चुका है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे ऐसे दिन बदलते हैं, जैसे ऐसे साल बदलते हैं, जैसे ऐसे दशक बदलते हैं, तो ह्यूमर भी बदलता है। लेकिन अगर हम देखें तो वो जो पुराना ह्यूमर था इस बार से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाया। ये ओल्ड स्कूल कॉमेडी विजन मॉडर्न फिल्म क्रिटिक्स को बिल्कुल रास भी नहीं आया। पारितोष पेंटर, वेद प्रकाश और बंटी राठौड़ ने मिलकर जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो एक लंबी कहानी लगने के बजाय अलग अलग कॉमेडी स्केचेस का एक झुंड लगता है। इंद्र कुमार का डायरेक्शन इस सिंपल लॉजिक पर चलता है कि अगर स्क्रीन पर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे, शोर करेंगे और एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे तो ऑडियंस को अपने आप हंसी आ जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। वेल, इस मूवी को सिर्फ इसलिए आई गेस देखना चाहिए कि इसमें स्टार बहुत हैं और पहला हाफ अच्छा है, ठीक है। एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा,
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं, बट डोंट वरी,
4: भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। इसके अलावा फिल्म में कैरेक्टर पारो यानी कि अंजलि आनंद पर लिखे गए फैट शेमिंग जोक्स को लेकर काफी बवाल भी है। इंद्र कुमार ने इस पर अपना विजन क्लियर करते हुए कहा कि ये जोक्स कहानी के स्क्रीन प्ले का हिस्सा हैं और उन्हें गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। भले ही लोग कहें कि उनका कॉमेडी सेंस 2000 के एरा में अटका हुआ है, पर इंद्र कुमार का सिंगल माइंडेड विजन हमेशा से वही आइकॉनिक ट्रेजर हंट फॉर्मूला को नए तरीके से पेश करना था, जहां दिमाग से ज्यादा फिजिकल गैग्स और हल्ला गुल्ला में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस फिल्म में आपको कुछ नया मिलेगा, तो इसीलिए 5 से 2.5 स्टार है। अब बात कर लेते हैं फिल्मिंग लोकेशन के बारे में दोस्तों। धमाल 4 का जो जंगल ट्रैक और वाइल्ड एडवेंचर वाला लुक है, उसे स्क्रीन पर लाने में इसकी फिल्मिंग लोकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इस फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में की गई है, जहां रियल लोकेशंस और स्टूडियो सेट्स का एक बहुत बड़ा मिक्स देखने को मिलता है। फिल्म के शुरुआत के और कुछ आउटडोर कॉमेडी सीन्स की शूटिंग मुंबई के पास मड आइलैंड पर की गई है। मड आइलैंड के खुले बीचेस और गांव वाले सेटअप्स ने फिल्म के केओटिक कैरेक्टर्स को एक बहुत ही फ्रेश और सुंदर बैकड्रॉप दिया। जब बात फिल्म के हाई स्टेक्स चेज और एडवेंचर सीक्वेंसेस की हो, तो पूरी कास्ट और क्रू डीप मालेघाट के पहाड़ों में शिफ्ट हो गई। वेस्टर्न घाट्स में बसा ये हिल स्टेशन अपने घने कोहरे, गहरी खाइयों और ग्रीन लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। मालेघाट के खतरनाक और घुमावदार रास्तों ने फिल्म के कॉमेडी सीन्स में एक रियल टेंशन भी ऐड की है, जहां जब कैरेक्टर्स जंगल में फंसते हैं तो ये पहाड़ से गिरते भी हैं, वो देखने में सच में डर और एडवेंचर का फील होता है। तो एक चीज कही जा सकती है कि इस फिल्म को बनाने के लिए रेकी तो की गई है ना, कि कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी, किस जगह पे फनी शूट किया जा सकता है। रियल लोकेशन के अलावा फिल्म के गाने और हैवी इंडोर स्टंट्स को शूट करने के लिए सत्य ड्रीम स्टूडियोज वसई विरार में, जो मुंबई में मौजूद है, उसका यूज किया गया है। इस बड़े स्टूडियो फैसिलिटी के अंदर बहुत ही बड़ा और कलरफुल इंटीरियर सेट बनाया गया था, जहां एक्टर्स बिना किसी टेंशन के स्लैपस्टिक स्टंट्स परफॉर्म कर सके। फिल्म का सबसे बड़ा प्रमोशनल सॉन्ग चटनी भी इसी सत्य ड्रीम स्टूडियोज के अंदर कस्टम बिल्ड सेट पर शूट किया गया था। रियल नेचर और पॉलिश्ड स्टूडियो का ये कॉम्बिनेशन फिल्म को एक बड़ा कमर्शियल लुक देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। धमाल 4 के लिए जहां फिल्म के पुराने एक्टर्स ने अपने उसी सेफ जोन में काम किया, वहीं कुछ बड़े एक्टर्स ने इंद्र कुमार के इस पागलपन से भरी दुनिया में फिट होने के लिए काफी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाए। सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की, जिन्होंने गुड्डू के रोल में अपना हमेशा वाला इंटेंस और एंग्री एक्शन हीरो अवतार छोड़कर एक बहुत ही लाउड और कार्टूनिश कैरेक्टर प्ले किया है। वो फिल्म में एक स्वैश बकलिंग पर बेवकूफ एडवेंचर बने हैं और उनका स्पीड बोट पर होने वाला एंट्री सीन उनकी अपनी ही सीरियस फिल्मों का मजाक उड़ाता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन अगर लोगों की अच्छी है तो वो इस सीन में या अजय देवगन की सीन में उनको हंसी जरूर आएगी। रितेश देशमुख के बारे में बात करें तो उन्होंने इस फिल्म के लिए एक अलग ही वोकल ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, जहां उन्होंने देश बंधु लल्लन रॉय के रोल के लिए एक बिल्कुल देसी और टाइट भोजपुरी एक्सेंट अपनाया। रितेश ने इस लैंग्वेज का यूज अपनी फिजिकल कॉमेडी को और ऊपर ले जाने के लिए किया है, जहां उनका कैरेक्टर एक लालच से भरा इंसान है जो एक एक्स्ट्रा लार्ज रिच लाइफस्टाइल का सपना देखता है। इसके साथ ही संजय मिश्रा ने जॉनी के रोल में अपना कॉमेडी स्टाइल बदला है, जहां वो आजकल के यूथ से कनेक्ट करने के लिए हर दूसरी लाइन में मॉडर्न इंटरनेट स्लैंग ब्रो का यूज करते हैं। यो ब्रो ब्रो का इस्तेमाल करते हैं। पर सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन का, जिन्होंने अधूरा नाम के एक बहुत ही अजीब पायरेट का लुक लिया वाइल्ड कॉस्ट्यूम्स और क्रेजी एक्सप्रेशंस के साथ रवि किशन इस फिल्म के सबसे बढ़िया और एनर्जेटिक सरप्राइज बनकर सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने अपने पुराने आइकॉनिक लुक और स्टाइल को बिल्कुल वैसे ही रखा है। जावेद जाफरी ने आज भी मानव के उस भोलेपन और नादानी को इतने सालों बाद भी स्क्रीन पर बिल्कुल जिंदा रखा है। बहुत ही लाजवाब काम। इसीलिए जब एक्टर्स को रेटिंग देने की बात आई तो 5 में से 3.5 मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में। टेक्निकल साइड पर देखा जाए तो धमाल 4 मॉडर्न बॉलीवुड की एक बहुत ही ब्राइट और लाउड कमर्शियल फिल्म है। इसकी सिनेमाटोग्राफी को इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने हैंडल किया है। उन्होंने फिल्म के लिए एक बहुत ही ब्राइट और हाईली सैचुरेटेड कलर पैलेट चुना, जहां हर फ्रेम इतना ओवरलिट लगता है ताकि एक्टर्स के फनी फेशियल एक्सप्रेशंस और जंगल का माहौल बिल्कुल साफ दिखे। हालांकि मालेघाट के रियल लोकेशंस और क्लिफ सीन्स में उनका कैमरा वर्क स्केल दिखाने में कामयाब रहा, पर फिल्म में यूज किया गया खराब सीजीआई और ग्रीन स्क्रीन का जो काम है इस विजुअल को और ज्यादा खराब कर देता है। मजा वो नहीं रह जाता जहां एक्टर्स कई बार बिल्कुल नकली बैकग्राउंड के सामने खड़े लगते साफ नजर आता है मूवी में और बड़े पर्दे पर और क्लियर हो जाता है। साउंड डिजाइन के मामले में ये फिल्म बहुत ही ज्यादा लाउड और नॉन स्टॉप है। बैकग्राउंड स्कोर का जिम्मा अमर मोहिले ने संभाला है और उन्होंने स्लैपस्टिक साउंड इफेक्ट्स, कार्टूनी नॉइजेस और अजीब इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स का इतना ज्यादा यूज किया है ताकि ऑडियंस को समझ आए कि उन्हें किस सीन पर कब हंसना है। फिल्म में एक पल की भी शांति नहीं है, हर कोने में बस आवाजें और क्रैशिंग साउंड्स भरी पड़ी हैं। इसलिए फिल्म में वो मजा नहीं है। फिल्म का म्यूजिक एल्बम नए गाने बनाने के बजाय इंटरनेट पर चल रहे वायरल हिट्स को रीयूज करने पर फोकस करता है। साउंड ट्रैक में संजू राठौड़ का सुपरहिट

और नील कमल सिंह का फोक पॉप ट्रैक गिल्लौरी बिना चटनी शामिल किया गया है। भले ही ये गाने थिएटर में लोगों को थोड़ा नचाने और प्रोमो वीडियोस में अच्छे लगते हैं, पर क्रिटिक्स का मानना है कि ये गाने फिल्म की मेन कहानी में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं, बस थोपे जा रहे हैं। देखिए, ये सब गाने जो है ना, ये छोटे गाने अच्छे लगते हैं जब आप ट्रेलर देखते हैं। और आजकल के, वैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ट्रेलर बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, लगता है कि यार ये फिल्म देख लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, लेकिन वो मज़ा है नहीं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि फिल्म में कुछ नया रंग डाला जाए, वही पुरानी चीज़ें लाकर ना ठूस दिया जाए, तो कुछ तो नया रखें, कुछ तो क्रिएटिविटी हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। धमाल 4 की कहानी वही पुराने और दिलों पर राज करने वाले आइकॉनिक ट्रेजर हंट फॉर्मूला पर बेस्ड है, यानी कि डब्लू के नीचे एक कोई बड़ा सा खजाना रखा है, बस ऐसा वाला मामला, उसको ढूंढने के लिए सब निकले हैं। जिसे देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है हमारे जैसे लोगों का जिनकी पैदाइश 2000 के पहले की है। 2000 के बाद से लेकर 2010 वालों के लिए ये फिल्म नहीं हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये ह्यूमर पुराने हो जाएंगे। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब एक अजीब और बहुत बड़े खजाने की अफवाह मार्केट में फैल जाती है, जिसके अंदर 100 करोड़ रुपये छुपे होते हैं। ये खबर सुनकर सारे एक्टर्स इकट्ठा होते हैं, सभी लालच से भरे कैरेक्टर्स के कान खड़े हो जाते हैं। अजय देवगन हो, जैसे कि गुड्डू हैं, लल्लन जो कि ऑब्वियसली रितेश देशमुख कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अरशद वारसी, आदि, मानव, ये इकट्ठा हो जाते हैं इस खजाने को सबसे पहले पाने के लिए। एक दूसरे के पीछे पागल हो जाते हैं ये सारे एक्टर्स। इस बार ये पागलपन किसी सिटी के रास्तों पर नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और घने जंगल में सेट किया गया है। कहानी एक ऐसी एपिसोडिक रोड ट्रिप बन जाती है, जहां हर कैरेक्टर सिर्फ इस कोशिश में रहता है कि वो कैसे सामने वाले को धोखा देकर आगे निकल सके। वही पुरानी वाली स्क्रिप्ट। जंगल के इस सफर में उनका सामना कई अजीब और क्रेजी लोगों से होता है, जिसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन है एक बेहद अतरंगी पायरेट अधूरा, जिसका नाम है रवि किशन। ऑब्वियसली रवि किशन इस रोल को प्ले करते हैं। फिल्म में कोई फालतू इमोशनल ड्रामा, रोमांस या हैवी सब प्लॉट्स नहीं है, पूरा फोकस सिर्फ वाइल्डरनेस के हजार्ड्स और फिजिकल कॉमेडी पर रखा गया है। कैरेक्टर्स कभी जंगली जानवरों के सामने फंसते हैं, तो कभी खतरनाक क्लिफ साइड ट्रैप्स में लटक जाते हैं। ये पूरी स्क्रिप्ट इस सिंपल पॉइंट पर चलती है,

0: लोगों ने इसे एक थका देने वाली और आउटडेटेड स्लैपस्टिक कॉमेडी बताया। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म पारितोष पेंटर, वेद प्रकाश और बंटी राठौड़ के लिखे गए फ्रेगमेंटेड स्क्रीन प्ले पर हुआ है। रिव्यूवर्स का कहना है कि ये फिल्म एक पूरी प्रॉपर मूवी लगने के बजाय अलग अलग कॉमेडी स्केच का एक सस्ता कलेक्शन लगता है, जिसे बिना किसी फ्लो के एक साथ जोड़ दिया गया है। फिल्म को इसकी रिग्रेसिव राइटिंग और आउटडेटेड जोक्स के लिए भी काफी सुनना पड़ा। क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया कि स्क्रिप्ट में कैरेक्टर अंजलि आनंद पर, यानी कि पारो पर लिखे गए फैट शेमिंग जोक्स आज के सिनेमा के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है और बहुत टोन डेफ लगते भी हैं। भले ही डायरेक्टर इंद्र कुमार ने इन जोक्स को स्क्रीन प्ले का एक इनोसेंट कॉन्टेक्स्ट बताकर डिफेंड किया, पर रिव्यूवर्स ऐसे नहीं जाने देते। रिव्यूवर्स का साफ मानना है कि फिल्म में सिर्फ कैरेक्टर्स के चिल्लाने, गाली देने, एक दूसरे पर गिरने पर हंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ नया नहीं है। भले ही डायरेक्टर इंद्र कुमार ने इन जोक्स को स्क्रीन प्ले का बड़ा ही इनोसेंट कॉन्टेक्स्ट बताकर डिफेंड किया, पर रिव्यूअर्स का साफ मानना है कि फिल्म में सिर्फ कैरेक्टर्स के चिल्लाने, उल्टी सीधी बात कहने और एक दूसरे पर गिर जाने से हंसाने की कोशिश की गई है, बस और कुछ नया नहीं है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर भी क्रिटिक्स बिल्कुल खुश नहीं दिखे। सुधीर के चौधरी की ब्राइट और कलरफुल सिनेमाटोग्राफी के बावजूद फिल्म का खराब ग्रीन स्क्रीन और सस्ता CGI काम साफ झलकता है, जो जंगल के एडवेंचर को बिल्कुल नकली बना देता है। हालांकि कुछ ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस और रीवॉच पोटेंशियल को लेकर हल्के पॉजिटिव दिए हैं। उनका कहना है कि भले ही फिल्म में कोई आर्टिस्टिक वैल्यू ना हो, पर उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट माइंडलेस टाइम पास है जो बिना दिमाग लगाए 2 घंटे हंसना चाहते हैं। अब ये लाइन इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, अब ये लाइन कहने के बाद बताइए जो सच में ऐसा सोचते हैं कि यार चलो एक मूवी देखकर आते हैं जिसमें ज्यादा बस दिमाग ना लगाना पड़े। और क्योंकि क्रिटिक्स ने ये बात कह दी है, अगर आप मूवी देखने गए तो लोग आपको क्या समझेंगे, अरे बगैर दिमाग के देखने जाता है मूवी, तो ये लाइन भी कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मूवी इतनी कोई परफेक्ट नहीं है कि इसको 2 बार जाकर देखा जाए, 1 time watch कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में दोस्तों, कि इस मूवी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। धमाल 4 एक प्योर अनअडल्टरेटेड लीव योर ब्रेन्स एट होम स्लैपस्टिक कॉमेडी है, ये तो मानना पड़ेगा। 5 में से 2.5 star रेटिंग मिली है तो कहना पड़ेगा। अगर आप सिनेमा में लॉजिक, डीप स्टोरी या सेंसिबल ह्यूमर ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। छोड़ दो भाई, मत जाओ, मैं तो कहता हूँ ऑफिस का काम करो इससे अच्छा। पर अगर आपको फ्रेंचाइजी का वही पुराना लाउड और क्योटिक ट्रेजर हंट फॉर्मूला पसंद है तो ये आपको एक अच्छा माइंडलेस टाइम पास दे सकती है। अच्छा और बुरा क्या है ये बात कर लेते हैं। कास्ट की एनर्जी अच्छी है, उनकी आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, प्लस पॉइंट है। रितेश देशमुख का भोजपुरी एक्सेंट लाजवाब, रवि किशन का पायरेट अवतार जबरदस्त, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की जोड़ी नॉस्टैल्जिक फील देगी आपको। ये जो पॉइंट है ना अरशद वारसी और जावेद वाला, ये मजेदार है। बुरा क्या है, फिल्म का सस्ता CGI और VFX। वैसे आप इसके लिए जाते नहीं, अच्छी कॉमेडी के लिए जाते, ऑल्दो अच्छी कॉमेडी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी CGI VFX को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो देखा जा सकता है, थोड़ा बहुत मूवी एंजॉय तो कर ही सकते हैं फैमिली के साथ। इसके अलावा स्क्रीन प्ले बहुत ही बिखरा हुआ है, स्क्रिप्ट में बॉडी शेमिंग जैसे कुछ रिग्रेसिव और पुराने जोक्स यूज किए गए हैं जो मॉडर्न ऑडियंस को थोड़े अजीब लग सकते हैं। फाइनल अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये फिल्म ओरिजिनल धमाल 2007 के क्लासिक लेवल को टच नहीं कर पाती है, पर ये एक ऐसी मासी कमर्शियल फिल्म जरूर है जिसे आप संडे को बिना दिमाग लगाए एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिव्यू ऑफ द वीक इस हफ्ते का, जहां पर हमने बात करी मूवी धमाल 4 के बारे में। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते एक नई मूवी के साथ और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है। विदारत दाखला अपने इरादों का वाजे तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग ना सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो,
3: And he's hooked that away. That's four runs.
2: फुटबॉल हो, Goal! या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
5: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कथा 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: सेहत की बात हो तो आत्मा चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉज के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
5: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फुटबॉलर के बारे में। फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, आप लोगों को पता है, एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर की टीम जो है मुसलसल दूसरी मरतबा क्वालिफाइड। सो इस टीम में खिलाड़ी हैं पेड्रो मिगेल, नाम समझ लीजिए पेड्रो मिगेल, ऑब्वियसली अरब खत्ते से नहीं है। पेड्रो मिगेल कतर के सबसे अहम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। उनका असल नाम पेड्रो मिगेल कारवालो डियोस कोरिरा है और वो पोर्चुगल में पैदा हुए थे लेकिन बाद में कतर में मुकीम बने और वो कतरी नेशनल टीम में उन्होंने ज्वाइन किया। इनफैक्ट क्लब से शुरू किया था अपना जर्नी यहाँ पे और उसके बाद कतर नेशनल टीम में उन्होंने जगह बना ली। इनफैक्ट देखा जाए तो टैलेंट कतरी नेशनल टीम सेलेक्टर्स और कतर फुटबॉल एसोसिएशन के जितने भी टेक्निकल कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने नोटिस किया कि इस लड़के में टैलेंट तो है एंड ही प्लेज एज अ राइट बैक पोजीशन और राइट बैक पोजीशन में काफ़ी मजबूत हैं और स्ट्रॉन्ग है। एंड लास्ट जो क्वालिफाइंग मैच हुआ था अगेंस्ट UAE अल सद स्टेडियम में पिछले साल, तो पेड्रो मिगेल ने एक गोल किया था। दैट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल, क्रूशियल गोल दैट हेल्प कतर क्वालिफाई फॉर द 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्योंकि इन दिनों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है। पेड्रो मिगेल अपनी वर्सैटिलिटी, डिसिप्लिन और डिफेंसिव मजबूती के लिए मशहूर है। जैसे कि मैंने कहा वो राइट बैक, सेंटर बैक और डिफेंसिव मिडफील्ड जैसे मुख्तलिफ पोजीशंस पर खेल सकते हैं, बहुत मजबूत है, जिस वजह से कोचेज उन पर खास भरोसा करते हैं। पेड्रो ने कतर स्टार्स लीग में असद के लिए खेलते हुए कई डोमेस्टिक और कंटिनेंटल कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया है। उनकी मजबूत डिफेंडिंग, टैक्टिकल समझ और प्रेशर में पुरसुकून रहने की सलाहियत ने उन्हें टीम का एक कीमती रुकन बना दिया। कतर की कौमी टीम के साथ उनका सबसे यादगार लम्हा 2019 AFC एशियन कप था, जब कतर ने पहली मरतबा टूर्नामेंट जीतकर तारीख रची। पेड्रो उस स्क्वाड का अहम हिस्सा थे और पूरे टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही। 2022 वर्ल्ड कप में भी पेड्रो ने कतर की नुमाइंदगी की और उनकी मेहनत, प्रोफेशनलिज्म और टीम के लिए वफादारी ने उन्हें कतर फुटबॉल के मॉडर्न दौर के नुमाया खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक आपने डिजिटल स्कैम के बारे में सुना है, लेकिन अब लोग सामने आना शुरू हो गए हैं, यानी कि फिजिकल स्कैम। आपके सामने वो आते हैं, आपसे QR कोड, लिंक या फिर आपसे किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बनकर बात करते हैं। ऐसे में आपको होशियार रहने की जरूरत है। आजकल एक नया स्कैम चला है जिसे कहते हैं फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम। रूरल एरियाज और विलेजेस में डिजिटल अवेयरनेस कम होने का फायदा उठाकर स्कैमर्स ने अब एक नया तरीका ढूंढा है, जिसे फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स खुद को गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कभी इलेक्ट्रिसिटी या कभी वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय या अफसर बताते हैं, और ये लोग आम या भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। ये लोग घरों पर अचानक आते हैं और दावा करते हैं कि उनके स्मार्ट मीटर खराब है या उनका पिछला बिल बाकी है। लोगों को डराने के लिए ये स्कैमर तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। रूरल एरियाज में लंबा पावर कट किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकता है, इसलिए लोग डर जाते हैं। इस डर का फायदा उठाकर स्कैमर्स तुरंत पैसे डिमांड करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि मामला अभी खत्म करने के लिए फिजिकल कैश दे दें, या फिर उनके पास मौजूद एक फेक POS मशीन पर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने को भी आपसे कहते हैं। कार्ड स्वाइप करते ही आपके अकाउंट का सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है और अकाउंट पलक झपकते ही खाली हो जाता है। ये पूरा फ्रॉड बिना किसी ऑफिशियल पेपर या नोटिस के सिर्फ डर और झूठ के दम पर किया जाता है। सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कभी भी इस तरह अचानक आकर तुरंत कैश या ऑन द स्पॉट कार्ड पेमेंट की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। हमेशा किसी भी एम्प्लॉय का या ऑफिशियल एम्प्लॉय का आईडी कार्ड जरूर मांगे। इसके अलावा एक और आसान तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, जो है नो कैश ऑन स्पॉट। सरकारी रूल्स के मुताबिक कोई भी टेक्नीशियन घर आकर कैश या कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा जब आपके पास कोई बिल आए या कोई शख्स आपको बिल दे, तो उसे ऑनलाइन वेरीफाई करें। कोई भी पेमेंट करने से पहले अपनी ऑफिशियल यूटिलिटी ऐप या वेबसाइट पर बैलेंस चेक करें। उसके अलावा आप हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सोच की जरूरत नहीं है, सीधे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बोर्ड के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कंफर्म करें कि क्या किसी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल एम्प्लॉय आपके घर भेजा है या नहीं। इस तरह की होशियारी से आप हमेशा खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को स्कैम होने से बचा सकते हैं। स्कैम अलर्ट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी,

0: जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जूनियर जनाब सफा के साथ, वो शो जहां हम मिलते हैं छोटे छोटे सुपरस्टार से जो अपनी मेहनत, टैलेंट और क्रिएटिविटी से सबको इंस्पायर कर देते हैं भाई। और आज हमारे इस शो में हमारी सुपरस्टार हैं एक छोटी सी पावर हाउस जिनका नाम है जन्नत। तो भाई अगर जन्नत के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं तो जन्नत को सबसे ज्यादा क्या पसंद है बताऊं? जन्नत को पसंद है रीडिंग एंड राइटिंग। वो हर वक्त बुक्स और नोटबुक्स के साथ ही बिजी रहती हैं भाई, नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करती हैं और अपनी कहानियां और पोएम्स भी लिखती हैं। अच्छा, और गेस कीजिए, गेस व्हाट, जन्नत सिर्फ बुक्स की ही क्वीन नहीं है, वो एक अमेजिंग सी आर्टिस्ट भी हैं भाई, यानी कि मल्टी टैलेंटेड चल रही हैं। वो कई आर्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुकी हैं और अपनी क्रिएटिविटी को सबके आगे एक्सप्रेस करने से बिल्कुल भी नहीं घबराती। और हाँ भाई, इनकी डिबेट्स भी लाजवाब हैं। जन्नत एक स्मार्ट डिबेटर भी हैं, जो अपने पॉइंट्स क्लियरली और कॉन्फिडेंटली अपने स्टाइल में सबके सामने प्रेजेंट करती हैं। स्कूल की डिबेट्स हो या कॉम्पिटिशन्स, वो हमेशा अपने आइडियाज को जबरदस्त तरीके से शेयर करती हैं। तो भाई दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि हम जाने वाले हैं एक शॉर्ट से ट्रिप पर जो कि होगा जन्नत के वर्ल्ड में, जहां इमेजिनेशन, आर्ट और कॉन्फिडेंस मिलके इंस्पायरिंग स्टोरीज बनाते हैं। और फिर हम आपको सुनाएंगे एक छोटी सी स्टोरी भी, लेकिन जन्नत की स्टोरी जन्नत से। तो भाई अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप?
2: वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जन्नत की आवाज़ सुन के एनर्जी पता चल रही है, तो ये तो मैं पूछूंगी नहीं कि जन्नत नर्वस तो नहीं हो रही?
2: नहीं हो रही।
1: अच्छा, नहीं हो रही। अच्छा, जन्नत बहुत क्यूट सी हैं, मैं भी यही बोल रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह गर्ल्स जो होती हैं ना वो डॉल्स की तरह होती हैं, जन्नत बिल्कुल डॉल जैसी है। अच्छा ये बताएं जन्नत कि आपको जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे, वैसे तो मैंने बता दिया कि आपको इंटरेस्ट है बुक्स में और आर्ट में, डिबेट्स में, लेकिन इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी वाली पसंद है?
2: सबसे ज्यादा लाइक ड्राइंग में मेरा टैलेंट है, हॉबी है, लेकिन मुझे डिबेट्स करना भी अच्छा लगता है, बिकॉज इस वर्ल्ड में सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स मैटर करते हैं। एंड ओवरऑल ड्राइंग में भी मेरा बहुत ज्यादा, मैंने कॉम्पिटिशन्स को विन किया है, सोशल मीडिया पे भी विन किया है, एंड ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड, मतलब मुझे सब अच्छा लगता है।
1: सही, और हम हिलेंगे नहीं। जन्नत रेडी रेडी चेयर पे झूल रही हैं। अच्छा ये बताएं जन्नत, अगर मैं आपसे कहूं कि, अगर पूछूं कि भाई जन्नत आपको याद पड़ता है आपने, आपको रीडिंग का शौक कौन सी एज से डेवलप हुआ था?
2: When I was like 6, तब मुझे रीडिंग करनी आ गई थी।
1: माशाल्लाह, ओके।
2: 5 years तक मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जैसे ABC और कैट डॉग उसके स्पेलिंग आ गए थे, लेकिन जैसे रीडिंग का शौक होता है तब मेरी जो ओल्डर सिस्टर्स थे, ओल्डर सिबलिंग्स थे, उनके पास स्टोरी बुक्स होती थी एंड मैं अपनी दादों से उर्दू में स्टोरी सुनती थी।
1: Oh, wow, nice.
2: उनको मतलब सुन के मुझे मजा आता था और मैं रात को सोते वक्त भी स्टोरीज सुनती थी। देन मुझे रीडिंग का शौक आया, मैंने स्कूल में भी काफी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। उसमें स्कूल में भी सबसे पहले जब रीडिंग करी होती थी, टीचर कहती थी कि आप स्टार्ट करो रीडिंग करना। और रीडिंग मेरी हॉबी है।
1: ओह, यू लाइक रीडिंग, नाइस नाइस। अच्छा ये बताएं कि जैसे आप बता रही हैं कि आपको रीडिंग का शौक है, तो कभी अपनी पोएम्स और अपनी स्टोरीज लिखी हैं खुद कभी?
2: जी, जब मैं छोटी थी मैं स्टोरीज लिखती रहती थी, कुछ भी, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, फिर भी मैं लिखती थी
1: अपने मजे से। अच्छा ये बताएं, ये जो स्टोरीज और ये जो पोएम्स हैं, ये दोस्तों वगैरह को सुनाती थी? अच्छा, उनका क्या रिस्पॉन्स आता था?
2: उनका रिस्पॉन्स आता था कि अच्छी स्टोरीज लिखी हैं। कुछ लोग जो जेलस होते थे वो बोलते थे कि नहीं अच्छी नहीं लिखी, मत करो कंटिन्यू। जो मेरे रियल फ्रेंड्स थे वो तो बोलते थे कि बहुत अच्छी आपकी सारी स्टोरीज है, कीप गोइंग।
1: अच्छा मैं आपसे ये पूछना भूल गई शुरू में कि ये बताएं मुझे, आप हैं कितने साल की भाई?
2: 10 years
1: की, माशाल्लाह। अरे वाह भाई, तो ये बताएं कि ज्यादा दोस्त जो हैं वो वाले हैं जिनका आपको पता है कि ये अच्छे और सच्चे दोस्त हैं, या ज्यादा दोस्त वो वाले हैं जिनका आपको पता है कि अच्छा ये तो मुझसे जलसी रखते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन क्या करूं क्योंकि क्लास फेलोज हैं तो बात करना ही पड़ता है? कौन से वाले दोस्त हैं आपके ज्यादा?
2: मेरे ज्यादातर अच्छे और सच्चे दोस्त ही हैं, और जो बुरे हैं मैं

0: को अपना दोस्त कंसीडर नहीं करती।
1: ओह गुड नाइस, अच्छा भाई इनको पता है, इनको ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट चल रही है इस मामले में, यू आर क्लियर अबाउट इट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि आप जैसे स्टोरीज या पोएम्स लिखती हैं तो वो किस जेनर की होती हैं, मतलब आप कहेंगे ना कि भाई हॉरर होती हैं, सस्पेंस होती हैं, किस टाइप की होती हैं?
0: ज्यादातर मैं हॉरर लिखती हूँ, मुझे हॉरर स्टोरीज लिखने का भी बहुत मजा आता है।
1: डर नहीं लगता हॉरर स्टोरी से?
0: लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन लिखने में ज्यादा।
1: अच्छा चले, अच्छा ये तो एक अच्छी बात है, मजा भी आता है, अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपको आर्ट में सबसे ज्यादा कौन सी चीज यूज करना पसंद है? जैसे एक होता है ना कलर, कलर पेंसिल्स, पेंट्स या क्ले या कुछ एनीथिंग, कोई स्पेसिफिक मटेरियल हो जो आपको यूज करना अपने आर्ट में बहुत ज्यादा पसंद है?
0: मुझे वैसे ज्यादातर कलरिंग ज्यादा अच्छी लगती है, बट आई एम बेटर इन स्केचिंग।
1: स्केचिंग नाइस,
0: मेरी स्केचिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे हैं पेंटिंग से। पेंटिंग मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं तो सही हो जाता है, अच्छा होता है फिर भी।
1: अच्छी होती है तो कलर पेंसिल से। अच्छा पेंटिंग, हाँ ठीक है, ओके सॉरी सॉरी, पेंटिंग ठीक है ओके। अच्छा ये बताएं कि किस टाइप की स्केचिंग या किस टाइप की पेंटिंग, कुछ लोग कहते हैं ना फ्लावर्स बनाना पसंद है, सीनरीज बनाना पसंद है, या कोई इमेजेस बनाना पसंद है, कार्टून्स बनाना पसंद है, तो आपको क्या पसंद है?
0: मुझे सीनरीज बनाना ज्यादा अच्छा लगता है एंड कार्टून्स भी मैं बनाती हूँ।
1: अच्छा मेरे लिए क्या बनाएंगी फिर? बनाएंगी तो

0: डाइंग टाइप की बीच की जो है ना वैसी वाली सीनरी बनाकर देंगे मुझे पक्का? चलिए मैं देखें, रेडियो पे प्रॉमिस कर रही हैं। ओके। अच्छा भाई ये बताएं कि आपका अभी तक की जो फेवरेट कार्टून, यानी आप कह रही हैं आप सीनरीज बनाती हैं, तो अभी तक की कौन सी ऐसी आर्ट की आपकी क्रिएशन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
1: माउंटेन, वैली, स्काई, अच्छा मौसम होता है, वेदर,
0: सैंड ड्यून्स। तो मैं सही बोल रही थी, हाँ वो सी लाइन वाली ना, सैंड ड्यून्स वाली मुझे गिफ्ट करना फिर, ठीक है? वो तो अच्छी से बना लेंगी ना, फिर मैं अपने घर में फ्रेम करवा के लगवाऊंगी, ठीक है? चलो भाई, ओके भाई, देखें हम फ्री फंड में काम कराते हैं। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
0: अच्छा ये बताएं कि आर्ट बनाते वक्त आपको आइडियाज कैसे मिलते हैं?
1: आइडियाज ज्यादातर इंटरनेट का यूज करके मिलते हैं, बट अगर आप खुद से कुछ ड्रॉ करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपके आंखों के सामने कोई आपको चीज बहुत अच्छी लगी है तो उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ठीक है। अच्छा ये दिस इज, आपने जो बात बोली ना, आई रियली एडमायर इट कि इंटरनेट की दुनिया ऐसी है, द वे यू यूज इट वो आपको वैसा ही रिवर्ट देती है, यू यूज इट फॉर क्रिएटिविटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे बच्चों के लिए ना एक बड़ी अच्छी बात है सीखने के लिए। अच्छा ये बताएं कि आप अपने आर्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए कैसे प्रिपेयर करती हैं? अच्छा ये भी होता है ना कि स्टडीज भी साथ साथ चल रही हैं, तो कुछ और एक्टिविटीज भी साथ साथ चल रही हैं, तो ये स्पेसिफिकली उसके अंदर मैनेज करना कैसे मैनेज करती हैं?
1: स्टडीज तब जब मेरा लेटेस्ट कॉम्पिटिशन हुआ था तब मेरी समर वेकेशन थी, एंड मैंने ड्राइंग की प्रिपेयरमेंट बार बार करी थी, बार बार करी थी। अगर अच्छा भी बन गया था उसको और अच्छा बनाने में कन्वर्ट करी थी, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा फर्स्ट प्राइज आया था।
0: वाओ, नाइस, ओके, गुड गुड गुड गुड। अच्छा ये बताएं, सोचिए, सिर्फ इमेजिन करें, क्योंकि आपको पेंटिंग पसंद है, चलें भाई आपके हाथ में हमने एक पेंट ब्रश दे दिया, ठीक है, तो ये बताएं कि उस पेंट ब्रश से आप क्या चीज क्रिएट करेंगे?
1: उस पेंट ब्रश से
0: मतलब वो एक मैजिक पेंट ब्रश है जिससे आप कुछ भी बना सकती हैं अपनी पसंद का।
1: पेंट ब्रश से अपने लिए कुछ स्वीट्स ड्रा करूंगी।
0: लो जी, वाह भाई, घूम फिर कर हम आ गए स्वीट्स पर। अच्छा ठीक है, और क्या ड्रा करेंगी?
1: एंड मैं कोई अच्छी चीज ड्रा करूंगी, लाइक स्टोरी बुक,

0: सब कुछ अपने लिए करेंगे, हम दूसरों के लिए झूठी बोल देती, मैं आपके लिए भी स्वीट ड्रॉ कर लूंगी, आपको भी थोड़ी सी दे देंगे, नहीं मैं अपने लिए करूंगी।
1: आपके लिए भी आपने तो ब्रश दिया।
0: चलो मैं बाद में याद आई इतना जताने के बाद, चलें कोई बात नहीं, खैर है मैं आपसे शेयर कर लूंगी, इट्स ओके, जबरदस्ती शेयर कर लूंगी। अच्छा ये बताएं कि आपने आपको कब अंदाजा हुआ दैट यू आर गुड इन डिबेटिंग? एक होता ना टैलेंट होता है, या शुरू से करती थी डिबेटिंग?
1: डिबेटिंग तो मैंने तभी स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज इन क्लास 3। पहले मैं रीडिंग करती थी, मेरा फर्स्ट कंपटीशन क्लास 4 में हुआ था। तब मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि आप डिबेट कर सकती हैं, रीडिंग कर सकती हैं। देन उन्होंने मुझे कंपटीशन में दिया, कंपटीशन में गई थी मैं। तो मेरा टॉपिक था मोबाइल फोन आपके लिए अच्छे हैं या नहीं, उसमें मैंने किया था डिबेट एंड मेरे थर्ड पोजीशन आई थी।
0: तो आपने क्या किया था, मतलब मोबाइल फोन अच्छे हैं?

0: बहुत ज्यादा यूज करते हैं
1: एक्सेसिव यूज, सही,
0: तो उसको थोड़ा सा यूज करना चाहिए और जरूरत के लिए यूज करना चाहिए. जैसे इफ यू वांट टू स्टडी और आपका मैसेज आया है कोई ग्रुप में, आपने स्टडीज से पढ़ना है, आपको कोई चीज नहीं आ रही, तो आप लोग वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. तो उससे पूरा आप इंटरनेट को, इस मोबाइल को इस चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं. मोबाइल सिर्फ देखने के लिए, गेम्स के लिए, इन चीजों के लिए नहीं होता. मोबाइल इज नॉट अ बैड थिंग.
1: वाइजली यूज इट वाइजली, ये बात आपने बिल्कुल सही कही. अच्छा, एक रिसर्च ये कहती है कि पर्सनल यूज के लिए भी ना मोबाइल, खासतौर पर बच्चों के लिए कहा जाता है कि मतलब आप एंटरटेनमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट यूजेज मैक्सिमम 2 आवर्स से ऊपर नहीं करना चाहिए. अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको ब्रेक्स लेनी चाहिए और आपको अपने आप को स्केड्यूल करना चाहिए कि जब आप मोबाइल यूज करें. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा भाई, ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डिबेट करते वक्त, क्योंकि ये मेरे साथ बचपन में होता था, मैं जब डिबेट्स करती थी ना, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फोबिया था सबके सामने, जबकि आई वॉज अ वेरी फ्रीक्वेंट स्पीकर, लेकिन एवरी टाइम आई यूज टू गेट स्केयर्ड द मोमेंट वो स्टेज के ऊपर से कर्टन यूं करके हिलता है ना, फिल्मों में दिखाते हैं यूं करके, और फिर जब मैं ऑडियंस देखती थी तो आई यूज्ड टू पैनिक. आपके लिए सबसे टफ चीज क्या लगती है आपको जब आप डिबेट के लिए जाती हैं?
0: जब भी मैं डिबेट के लिए जाती हूँ, मुझे हेटर्स से बहुत मतलब होता है कि कोई मेरे पसंद आएगा लोगों को, मेरा डिबेट लोगों को अच्छा लगेगा. कईयों को बहुत पसंद आता है, कई लोग हेट करते हैं, कईयों को नहीं पसंद आता. उस चीज का मुझे बस डर लगता है कि जो मैं चीज करने जा रही हूँ उस लोगों को वो चीज पसंद आएगी या नहीं आएगी.
1: अच्छा, इसका एक मामला ये है कि इसको हम लोग कहते हैं, आप जो ना लोगों से डर जाते हो, पीपल प्लीजर बन जाते हो. ऑनेस्टली जस्ट एन एडवाइस, बी योरसेल्फ. जो आपको चीज अच्छी लगती है ना, इफ यू नो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन अ पॉजिटिव वे, वो आप करो. भूल जाओ एवरी, देयर विल ऑलवेज बी समबडी हु थिंक्स अबाउट यू एज अ विलन. तो भूल जाओ वो जो लोग हैं ना जो आपको कहते हैं कि देयर यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ, तो उनको भूल जाओ. जो अच्छा अच्छा ना कमेंट वो अपनी जेब में रख लिया करो. ठीक है. अच्छा, ये बताएं कि खासतौर पर अगर डिबेट्स के बारे में बात की जाए, तो डिबेट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करती हैं?
0: डिबेट्स के लिए मेरी टीचर्स, मेरी मदर भी पहले डिबेट्स करती थी बहुत ज्यादा.
1: नाइस, अम्मी की हेल्प मिलती है माशाल्लाह से. ओके,
0: उन्होंने कॉलेज में भी डिबेट्स किए थे, तो वो मुझे ज्यादातर सिखाती हैं.
1: गुड गुड, वेरी गुड. हाँ, तो ये बात सही है ना, जो हम लोग कहते हैं बच्चों का पहला स्कूल उनके पेरेंट्स होते हैं. ठीक है. अच्छा भाई, ये बताएं कब लगता है कि आपने डिबेट में सबसे बेस्ट पॉइंट्स दिए थे? कौन सी वाली डिबेट थी आपको याद है, कोई ऐसी डिबेट जब आपने आपने कहा ये तो मेरी बेस्ट वाली डिबेट थी, इसका टॉपिक मेरा बेस्ट वाला था?
0: मेरी एक दफा डिबेट हुई थी when I was in third class and मुझे पता लग गया था कि मैंने ये जीतना है. तब रिजल्ट अनाउंस भी नहीं हुए थे, मैंने सही किया था, सबसे ज्यादा बेटर मेरा था. मुझे वो पता लग गया था कि मैंने ही जीतना है और मैं ही जीत गई थी. बच्चों के हिसाब बच्चों का इतना अच्छा नहीं था, मुझे ये था कि मेरा टॉपिक सबसे अच्छा.
1: अच्छा, वो टॉपिक याद है, क्या टॉपिक था उसका?
0: टॉपिक था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना था जस्ट.
1: सही, ठीक है, गुड. सो यू गेव गुड पॉइंट्स एंड यू डिलीवर्ड इट वेरी नाइस. अच्छा, डिबेट्स में ये होता है कि इट्स नॉट जस्ट द पॉइंट्स व्हिच यू आर गिविंग.

0: वो एक आपका अपना स्टाइल भी होता है ना डिबेट करने का, तो योर स्टाइल वॉज इम्प्रेसिव, योर प्रेजेंटेशन वॉज गुड. अच्छा ठीक है. अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि डिबेट करते हुए आपके पास कोई एक सुपर पावर होती है जो आप कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है तो ये मैं अप्लाई करूँ, तो वो क्या चीज़ होती?
1: वो होती कि मैं कभी भी अटकू ना, भूलू ना बीच में. कभी कभार जैसे आप लोग अगर बोलते बोलते एक वर्ड भूल गए होते हैं तो मैं ना भूलू उसको, अटकू ना बीच में. अच्छा, ना लू.
0: ये एक चीज है, इसकी एक ट्रिक होती है. मेरी टीचर हमेशा मुझसे कहती थी उसको याद नहीं करो, उसको समझो. मेक इट, बिल्ड इट लाइक अ स्टोरी. If you build it like a story, you're not going to, you can add words by yourself. अगर आपको concept समझ में आ जाए ना उस चीज़ का, तो आप words अपने पास से उसके अंदर add up कर सकते हो और आप अपने पास से बोल सकते हो. तो कोशिश किया करें कि इंशाल्लाह you'll get better at it. When obviously आप जब बड़े होते जाते हैं आपको experience होता जाता है, तो you will इंशाल्लाह cope up with it. अच्छा ये बताएं कि चीज़ों के लिए अपने आप को खुद मतलब इतना कुछ करती हैं, आर्टिस्ट हैं, कहानियाँ लिखती हैं, ये करती हैं, डिबेट्स करती हैं, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हैं सब चीज़ों के लिए?
1: अपने आप को मोटिवेट तो बस इसी नफा बारे में करना होता है कि आई हैव टू विन, आई हैव टू डू इट. अगर आप लोग अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, जस्ट बी योरसेल्फ. जो आपको करना है वो आप एक ही दिन के लिए कर, कल क्योंकि कभी भी नहीं आता. अगर आप लोग एक चीज़ कल पर डालते रहेंगे तो कल कभी भी नहीं आएगा और आप लोगों का वो काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा. जो करना है आज ही करें, खत्म करें आज करके.
0: वो जो कल जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं वो प्रेजेंट होता है एक्चुअली. वो एवरी सेकंड इज पासिंग बाय एंड इट टर्न्स इनटू प्रेजेंट. वेरी गुड. कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी करे सो इसी वक्त, है ना? ठीक है भाई. अच्छा भाई, मैं भी इसको याद रखूंगी. चलिए जन्नत, मुझे ये बताएं कि स्कूल जब ख़त्म हो जाता है सब कुछ, तो आपकी सबसे फेवरेट वाली हॉबी क्या होती है अपने फ्री टाइम में, जब आप फ्री होती हैं?
1: अपने फ्री टाइम में आई लाइक ड्राइंग एंड मतलब अगर मेरा कोई कंपटीशन है स्पीच का, जैसे अभी मेरा एक कंपटीशन है डायलॉग बोलने का, उसकी मुझे प्रिपेयरमेंट मैं कर रही थी. जैसे ही मैं फ्री थी, मैं फ्री टाइम निकालना पड़ता है. फ्री आप कभी भी नहीं होते, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ता है.
0: ओए बच्चे ने बात बोली है, सुन ले सब बड़ों के लिए भी. फिर से एक दफा रिपीट करें, फ्री
1: फ्री आप लोग कभी भी नहीं होते, आपको कुछ टाइम निकालना पड़ता
0: है. ये बात प्रायोरिटी रखनी पड़ती है अपनी. आई रियली लाइक दैट, माशाल्लाह वेरी गुड. हाँ जी, फिर आगे.
1: फिर मैं जैसे मैं फ्री होती हूँ, अगर मैं फ्री नहीं भी होती फिर भी मैं ड्राइंग करती हूँ, मैं स्पीचेस के लिए लर्न करती हूँ. मेरे जो भी पार्टनर्स हैं मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहती हूँ, उनसे मतलब अच्छे तरीके से बात शायद करके अच्छे से प्रिपेयरमेंट करते हैं.

0: फ्री टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, यूटिलाइज करना सीखो. चलो मैं ये, मैं मुझे पापा से वही चीज़ नजर आ रही है जो अब्बा ने कही थी, भी अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना सीखो.
1: आप सुन रहे हैं FM 107. FM 107. दिल से देसी.
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में. हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए. अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं. हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं. माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है. इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं. तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं. सामने किराम, कुरान में अल्लाह फरमाता है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. और वो रोते हुए अपने चेहरों के बल गिर पड़ते हैं और कुरान उनके खुशू में मजीद

इजाफा करता है। समझ कर ये अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है कि कुरान उनके दिलों में उतर जाता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुरान सुनाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, फिर मैं आपको कैसे सुनाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दूसरे से सुनना पसंद करता हूँ। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सूरह निसा की तिलावत शुरू की। जब इस आयत पर पहुंचे, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سامعین کرام، یہ وہ ہستی ہیں جس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی قرآن سن کر आंखें अश्कबार हो जाती हैं। कुरान पढ़ते हुए रोना कमजोरी नहीं। जब बंदा अल्लाह की अजमत महसूस करता है, अपनी कमजोरी को देखता है, अपने गुनाहों को याद करता है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद बांधता है तो दिल नरम हो जाता है, आंखें तर हो जाती हैं। यहां तक कि बाज ने तो ये भी कहा कि अगर तुम रो ना सको तो रोने की कैफियत इख्तियार करो। अब इसका मतलब मसनूई आंसू बहाना नहीं बल्कि अपने दिल को नरम करने की कोशिश करना है। ये सोचना है कि मैं अपने रब के सामने एक दिन जरूर खड़ा होने वाला हूँ। सामने किराम, कभी हम खुद से सवाल करें कि कुरान पढ़ते हुए दिल क्यों नहीं पिघलता? शायद उसकी वजह यह हो कि हम बहुत जल्दी पढ़ते हैं, माना नहीं समझते, दुनिया की फिक्र दिल पर छाई रहती है या गुनाहों की कसरत ने दिल को सख्त कर दिया है। लेकिन खुशखबरी यह है कि कुरान ही उस सख्त दिल का इलाज है। अगर हम मुसलसल कुरान के साथ ताल्लुक कायम रखें तो यही कुरान दिल को दोबारा जिंदा कर देता है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।

0: An artist is never wrong.
1: Yeah.
0: An artist is never wrong. Artist का मामला ये होता है कि अगर वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें भी बना लेना तो भी उनको वो सही कर सकता है. तो भाई गुस्से में नहीं आना भाई ये काम करते हुए, भाई ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी ना. और जैसे बच्चे गेम खेलते हुए बोर्ड उलट देते हैं ना, जो मैं नहीं कर रहा, ये वाला मामला होता है कभी आपके साथ?
1: मेरे साथ तो नहीं होता, मेरे भाई के साथ होता है.
0: अच्छा, बॉयज के साथ होता है, बॉयज को एंगर इश्यूज होते हैं, गर्ल्स जो है ना बेचारी फिर भी साबिर होती है. अच्छा ये बताएं कि बड़े होकर क्या बनने का शौक है?
1: मुझे बड़े होकर आपकी तरह बनना है.
0: मेरी तरह है ये क्या हुआ? अच्छा मेरी तरह टॉकेटिव बनना है, आज ही बनने का शौक है. चलिए भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह देयर इज टाइम एंड लर्न. और माशाल्लाह आपकी तो नॉलेज अभी से ही माशाल्लाह इतनी ज्यादा है, तो टिल द टाइम याद रखें, बी अ नॉलेजेबल पर्सन एंड यू विल रीच वेयर यू वांट टू रीच. अच्छा ये बताएं कि भाई सबसे ज्यादा एनिमल कौन सा आपको अच्छा लगता है?
1: कैट्स एंड डॉग्स जो क्यूट होते हैं मुझे बस वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो हार्मफुल नहीं होते ज्यादा.
0: मेरे पास घर में 8 cats हैं.
1: Eight cats.
0: तो फिर हम मिलेंगे ना, तो फिर मैं आपको अपनी प्यारी प्यारी कैट्स से मिलवाऊंगी. ठीक है. अच्छा अक्सर औकात मेरे लोग मेरे घर नहीं आते, डरते हैं. People are scared of cats. Can you imagine that?
1: Yeah, some
0: people are scared. अच्छा चलें ये बताएं कि कार्टून्स वगैरह देखती हैं शौक से, तो आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है या सुपर हीरो कौन सा है?
1: सुपर हीरो मुझे सुपर हल्क ज्यादा अच्छा लगता है. मेरे ब्रदर्स को भी वही अच्छा लगता है, वो हर वक्त टीवी पर लगा होता है तो देख ले.
0: अच्छा ब्रदर्स भाई कोई और गुंजाइश ही नहीं देते कि कुछ और देख ले हम. तो जो देख रहे हैं वही उसी में से पसंद है. अच्छा ये बताएं कि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती हैं, एक तो आपका अपना पर्सनल टाइम है ना, जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती हैं जो अच्छे अच्छे वाले फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आपको कौन सी एक्टिविटीज करने में मजा आता है?
1: मुझे फ्रेंड्स के साथ ड्राइंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मोस्टली जब भी हम लोग ड्राइंग करने के लिए किसी प्रोजेक्ट पे बैठते हैं, हम बातें करते रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, टाइम नहीं मिलता करने का.
0: अच्छा फिर ये भी एक है, but it's fun, right?
1: Yeah.
0: It's fun. अच्छा हमारा टाइम थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जाने से पहले आप मुझे बताएं अ पीस ऑफ एडवाइस विच यू वुड वॉन्ट टू गिव टू ऑल द किड्स हू आर लिसनिंग टू यू.
1: द एडवाइस इज कि आप लोग कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें. टाइम जो आपके पास है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरी ये हॉबी नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा. आप लोगों से सब कुछ हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल.
0: थिंग्स माइट बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट. एवरीबडी इज इन अ लर्निंग प्रोसेस. थिंग्स माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन इफ समबडी कैन डू इट वी कैन ऑल्सो ट्राई इट. एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, है ना? डरना तो नहीं चाहिए.
1: नहीं.
0: अच्छा ये बताएं खाने पीने में अम्मी को तंग करती हैं?
1: नहीं.
0: पक्का? पूछो अम्मा से, कहाँ है अम्मा? पूछूंगी मैं भी ऑफिस जाकर. ठीक है भाई, फेवरेट चीज क्या है खाने में आपकी?
1: फेवरेट चीज मुझे ज्यादातर दाल चावल ज्यादा.
0: अरे भाई ये कौन सा बच्चा इसको दाल चावल पसंद है? अक्सर होगा तो मैं बच्चों से सुनती हूँ बिरयानी पसंद है.
1: बिरयानी भी.
0: बिरयानी मैंने याद दिलाई, मैंने तो दाल चावल. मैं तो बहुत मासूम सी बच्ची हूँ, मैं कहाँ अम्मी को तंग करूँ.
1: मैक्रोनी पास्ता.
0: ओके. अच्छा मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी मम्मा खाने में सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी बनाती है जो आपको अच्छी लगती है?
1: मेरी मामा खाने में सब अच्छा बना लेती हैं, जो भी वो बनाती हैं वो बहुत अच्छा होता है.
0: ओए होए, अरे भाई ये तो बात कर दी मम्मा के लिए. अच्छा अपने पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी जब आपको सुने तो? समथिंग अब फॉर देम.
1: मेरे पेरेंट्स सबसे बेस्ट हैं. और सब बच्चों के पेरेंट्स ही बेस्ट होते हैं. मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि आज मैं यहाँ पर आ पाई
0: हूँ. ओहो. अच्छा अम्मी अब्बू में सबसे ज्यादा कौन जो ना वो है आपको, आप कहेंगे आई लव देम द मोस्ट, मम्मा या पापा?
1: दोनों.
0: नहीं नहीं नहीं भाई, हम दो की चॉइस नहीं दे रहे भाई. नहीं नहीं भाई ये नहीं हो रहा भाई, एक कोई एक बताना पड़ेगा.
1: मुझे हर टाइम में दोनों ही अच्छे लगते हैं. जैसे अगर पढ़ना चढ़ना हो तो मामा, कहीं जाना हो या कोई कंप्यूटर का काम करना हो तो बाबा.
0: हाँ हमने अपने प्रेफरेंसेस रखे हैं भाई, कौन किस वक्त काम आता है उसके हिसाब से जो ना हमने रखा हुआ है. चले भाई आपसे बात करके बहुत बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा.
2: अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें. याद रखें जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, नेवर क्लोज द विंडो ऑफ लर्निंग. माशाल्लाह यू आर अ वेरी प्रोडक्टिव चाइल्ड. इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला इंक्रीज यू इन नॉलेज. तो भाई साथियों, जन्नत और मैं आप लोगों से इजाजत चाहेंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, याद रखें यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता वो जन्नत क्या नहीं कर सकता, वो दूसरों का भी
1: ख्याल नहीं रख सकता.
2: वेरी गुड. तो दूसरों का ख्याल रखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले
1: आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा,
2: अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी एजुकेशन का, अपनी फीलिंग्स का. आपको खुद अपने आप को समझा बुझाकर, अम्मा अब्बा याद रखें एक हद तक समझा सकते हैं, अम्मा अब्बा समझाते हैं ना जब, तो उसको माइंड नहीं किया करें. कभी कभी शाउटिंग हो जाती है, कभी कभी है ना, हो जाता है ना, तो उसको माइंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
1: नहीं, उसे सीखना चाहिए
2: ये बात. तो भाई ये याद रखें कि सीखें, क्योंकि यही सीखना अभी आए ना आए काम, आगे जाके बहुत काम आने वाला है. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाजत. शो सुन रहे थे आप जूनियर जनाब, हमारे साथ थी जन्नत. जन्नत अल्लाह हाफिज कर दें.
1: अल्लाह
2: हाफिज. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.
3: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब.
4: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
5: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है. हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं. याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है. फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए. गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है. अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं. आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से. जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है. अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए. आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है. FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है.
6: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में. MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ. ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है. MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर. डोंट मिस इट.
7: आप सुन रहे हैं FM 107
8: दिल से देसी.

0: हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने प्रोग्राम में. भाई वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में तब्दील हो जाते हैं. कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर के एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं. भाई हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसके अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है. और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर कहीं ले जाती हैं, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है. तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी करीब ले आती हैं. यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी. और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनके जरिए उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं जो कि हमारे साथ भी चलते चली आ रही हैं या हमारी जिंदगी के सिलसिले में भी शामिल हैं. आज के जो हमारे मेहमान हैं, आप सीनियर एकेडमिक पैथोलॉजिस्ट हैं, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की तालीम हासिल की है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग US और UK से मुकम्मल की है. UK में आपने बार्ट्स हेल्थ NHS ट्रस्ट में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया और साथ ही क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लिनिकल हेड ऑफ पैथोलॉजी रहे. आप NHS इंग्लैंड लंदन रीजन में क्लिनिकल लीड फॉर पैथोलॉजी और रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट में डायरेक्टर डिजिटल लर्निंग भी रह चुके हैं, जहां आपने नेशनल अंडर ग्रेजुएट करिकुलम की तैयारी में अहम किरदार अदा किया है. ज़ाती तौर पर आप ज़हीन और फन परस्त शख्सियत के मालिक हैं. आप उर्दू शायरी पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं, कव्वाली सुनना पसंद करते हैं, गिटार और पियानो भी बजाते हैं. इसके अलावा आप गोल्फ, बैडमिंटन और टेनिस भी खेलते हैं. आपकी स्पेशलाइजेशन हेमियोथोपैथोलॉजी और डर्मेटोपैथोलॉजी में है. फिलहाल आप हमद जनरल हॉस्पिटल HMC में सीनियर कंसल्टेंट हैं, पैथोलॉजी रेसिडेंसी प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर और डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं. सामीन, आइए अब उनके हुजूर चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन रिजवी. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, मोस्ट वेलकम. और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आज दोहा डायरीज का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए.
2: अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम का और रेडियो का जो आपने ये मौका दिया, और बहुत खुशी के साथ और दिली ताल्लुक है आपसे भी और इस रेडियो के प्रोग्राम को भी, और आपको भी खूब सुनते हैं.
1: अहलन वसहलन सर. तो आइए अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला अपना शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करें, क्योंकि माशाल्लाह से जैसे कि मैंने आपका तारुफ करवाया, मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं, आप माशाल्लाह से काफी कुछ और भी हैं. तो अगर 3 अल्फाज में बयान करें एक डॉक्टर के साथ साथ, तो किस तरीके से आप उसको बयान करेंगे?
2: सब आदमी जो है वो सिर्फ अपने रिश्तों से पहचाना जाता है मेरे हिसाब से जिंदगी में. और तो मैं अपने आप को एक बेटा पहले, एक अब्बा और फिर दोस्त, जो हमारा सर्कल है सोशल, उसके आगे कुछ नहीं है. जो पैदा हुए थे वही वापस जाएंगे.
1: वाह वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह क्या बात है, क्या कहने. सर दोहा में आपके लिए एक आइडल या रिलैक्सिंग दिन कैसा होता है जब आप अपनी बिजी प्रोफेशनल रूटीन से ब्रेक लेते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है मुझे पता है, फिर भी?
2: दोहा में बहुत चॉइसेस हैं, मतलब वी आर वेरी लकी के समंदर भी है, सहरा भी है और बहुत सारी खाने की.

0: की, पीने की, दोस्तों की जगहें हैं, साथ रहने की, उठने की, बैठने की. तो इसमें सबसे पहले जो मैं कह रहा था, दोस्त और फैमिली शामिल होते हैं. अब उनके साथ बारबेक्यू करके खाना हो जाए या कोई खेल हो जाए या समंदर की तरफ जाए, डिपेंड करता है मौसम पे. अगर मौसम अलाउ करता है या माशाल्लाह इतने म्यूजियम हैं और इंडोर मॉल्स हैं और जगहें हैं, तो कोई भी एक जगह, बस अपने साथ बैठने वाले लोग अच्छे हों, तो कहीं भी बहुत आइडियल दिन हो जाता है.
1: क्या बात है डॉक्टर साहब. समीन, मैं बता दूं, आप माशाल्लाह दुनिया घूम चुके हैं, और जिस तरह मैंने तारुफ में बताया कि आप यूके, यूएस, हर जगह देख चुके हैं, फिर भी दोहा आपके दिल में बसता है. बहुत खूब डॉक्टर साहब. सबसे पहला सवाल, अब सेकंड सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मेडिकल जर्नी और कुछ जो दोहा आपका मूव होना हुआ उससे ताल्लुक रखते हुए कुछ सवाल थे मेरे. आपने दोहा आने का फैसला किस वजह से किया?
0: सर, सब देख चुके थे, अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीजें समझ में आने लगी. जवानी के जोश में तो आदमी बैल की तरह भागता है चीज के पीछे, फिर जब जरा उम्र होती है तो होश आता है, और मर्दों को थोड़ा देर में आता है होश, औरतों को थोड़ा पहले आ जाता है मेरे ख्याल से. तो वो होश आना शुरू हुआ कि भाई जिंदगी है तो बाकी सब है. वहाँ काम में बहुत मशगूल था, बहुत चीजें अटेन की, बहुत अच्छा रहा, लेकिन वेस्ट का लाइफस्टाइल हेक्टिक है, और बहुत सी चीजें आप बैलेंस वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा फिर दीनी ताल्लुक से यहाँ पे ये ज्यादा, मतलब मेरा जो कमरा है हमारे जनरल में, उससे 10 कदम के फासले पे मस्जिद है. तो मैं मजाक में ये कहता हूँ कि अब ना पढ़ी तो बड़े, मतलब फिर तो लिख जाएगा नाम गुनाहगारों में. तो ये चीजें जो है, ये सहूलतें अपने दीन की, अपने काम की, और काम माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास काम है. यहाँ सेटअप एग्जैक्टली सेम है जो मैंने वेस्ट में काम किया है. कल्चर डिफरेंट है, आपको खाने पीने की जो सहूलतें हैं, रहने की. यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने घर से, और मुझे अगर ट्रैवल करना होता है तो मैं एरोप्लेन के दरवाजे पे 40 मिनट में खड़ा होता हूँ, जो दुनिया में बहुत कम जगह आपको ये, और ये आपकी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ाती हैं ये चीजें. और उस वक्त जिस वक्त मैं आया 2022 में, तो एक बहुत बड़ी चीज फुटबॉल भी थी. फुटबॉल वर्ल्ड कप का पूरा मजा लिया था.
1: क्या बात.
0: और फिर दोस्त, अहबाब, जिंदगी, सब चीज यहाँ अलीगढ़ के बहुत लोग मिले. तो आया था पहले मैं एक स्काउटिंग ट्रिप पे 2018 में, उसके बाद 2022 हो गया आते आते, बट कई सारी चीजें मिला के डिसीजन हुआ कि चला जाए.
1: क्या बात है सर. जब आप यहाँ आए उस वक्त आपके जहन में करियर और जिंदगी के हवाले से किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब अगर मैं जानना चाहूँ?
0: सर, जिंदगी का ये था कि थोड़ा ठहराव आए. उस वक्त तक मैं बहुत काम में, जिसे कहते हैं कि पूरी तरह से डूबा हुआ था, गर्क था, और बच्चों के साथ, और इनमें वीकेंड मिलता था, किया बहुत सी चीजें करने की लंदन में भी, वहाँ की. लेकिन यहाँ मेरा था कि थोड़ा स्टेप बैक, यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ 3 बजे काम खत्म हो जाता है, कॉल पे भी हैं तो 6-7 बजे. वहाँ मैं अमूमन 7-8 बजे घर पहुँचता था. तो वो वक्त जो मिला है उसमें बहुत सी चीजें, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के, खेल नया, मैंने गोल्फ यहाँ आके सीखा, गोल्फ वहाँ, हालांकि बहुत गोल्फ है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है स्कॉटलैंड से, लेकिन सीखा यहाँ आके. और फिर काम के नौत से यहाँ पे माशाल्लाह जो चीजें मेरी इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का आते ही डायरेक्टर बना दिया. उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ 2 यूनिवर्सिटीज हैं, कतर यूनिवर्सिटी और वेल कॉर्नेल, वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं. तो वो चीजें प्रोफेशनली फुलफिलिंग है, हर तरह का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ हालांकि पॉपुलेशन 3 मिलियन के अतराफ में है, लेकिन यहाँ जो डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन की, वो उसकी वजह से जो हमारे उससे काम के एतबार से जो केसेस देखने को मिलते हैं उनमें बहुत वैरायटी है. जो लंदन में देखता था उससे कुछ चीजें नई देखने को मिली, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ बहुत से एनहांसमेंट्स हैं.
1: क्या बात है सर. एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपका पहला इम्प्रेशन दोहा के बारे में क्या रहा?
0: सबसे पहले तो ये था कि गर्मी, मजा आ गया. और दूसरा, इंग्लैंड में जो है वो सर्दी की आदत थी उससे पहले. अमेरिका में भी मैं रहा, तो उधर रहा अपस्टेट उधर, तो वहाँ बहुत सर्दी होती है. तो यहाँ आके एक तो ये मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बल्कि सब घर वाले अभी कहते हैं कि भाई थोड़ी देर बाहर निकलना चाहिए. और दूसरा, मॉडर्न है बहुत ज्यादा, बहुत, मतलब आप अब इंग्लैंड अमेरिका की सड़कों में हाईवेज पे जाइए तो आपको इस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं मिलता. आप क्यूब में जाइए तो नहीं मिलता. जो यहाँ एकदम आते ही एक इम्प्रेशन होता है कि बहुत अच्छा मॉडर्न सेटअप है.

0: क्लब हुआ करते थे जब हम पहुंचे 2000 में, वो सब खत्म हो गए. वो चीजें हैं. फिर यहाँ इंटरेस्टिंग है कि भाई जैसे कि वीआईपी पेशेंट आता है तो प्रायोरिटी होती है, वहां उल्टा है कि अगर कोई इनकी बायोप्सी आएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि आई कि नहीं आई. तो वो जो चीजें हैं कि कैसे काम में प्रायोरिटाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मोटा मोटी बहुत सी चीजें सेम है. कल्चरली जाहिर सी बात है डिफरेंट है, लोग बहुत अच्छे वैरायटी के डिफरेंट मिलते हैं यहाँ वहाँ. उतना अरब कल्चर से नहीं था, अरब खाने से, तो वो चीजें तो बहुत सी चीजें सीखने को मिली. जबान बिल्कुल नई है, अरबी मेरे लिए नई थी. हालांकि हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ कुरान की अरबी पढ़ते हैं, बोलचाल वाली अरबी जो है वो अब धीरे धीरे सीखी.
1: सही, क्या बात है, क्या बात है. सर, शुरू के दिनों में एक नए मुल्क में और नए मेडिकल एनवायरनमेंट में आना, जैसा आपने बताया कि एडजस्ट करना थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अरबी के हवाले से जैसे आपने बात करी या दूसरी चीजें आपने बताई, तो क्या कोई ऐसी चीज भी थी जो बहुत ज्यादा हावी भी हुई या कुछ इसमें मेंशन करना चाहते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं तो ये कहूंगा कि मुझे एक चीज जो है दुनिया में मेरी कॉन्स्टेंट जो रही है, मैं जहां भी गया हूँ किसी भी कोने में किसी मुल्क में, तो एक अलीगढ़ वाला जरूर मिल जाता है.
1: वाह,
0: अलीगढ़ एक ऐसा कॉमन थ्रेड रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ आया तो यहाँ माशाल्लाह उतरते ही दोस्त अहबाब खेल इवन काम में बहुत से अलीगढ़ वाले हैं. यहाँ अलीगढ़ वालों का ग्रुप है, एक डॉक्टर्स का भी, और तो उसमें चाय खाना तो एकदम पता ही नहीं चला, बल्कि ऐसा लगा जैसे वापस घर आ गया हूँ.
1: क्या बात है,
0: वाकई में मुझे लंदन में शायद थोड़ा बहुत गैरियत लगती थी, यहाँ आके एकदम लगा कह रहे यहाँ तो सब अपने लोग हैं.
1: क्या बात है. आगे आते हैं सर, अब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कुछ हार्ड डेज स्ट्रॉन्ग डेज के हवाले से, इमोशंस और चैलेंजेस के हवाले से बात करते हैं. क्या कभी आपको दोहा में तन्हाई या होम सिकनेस महसूस हुई?
0: जैसे मैंने कहा कि शुक्र है, हाँ घर वाले ये हुआ कि शुरू के 3 साल नहीं थे, तो उस वजह से जाहिर सी बात है दोस्त अहबाब और काम एक तरफ आपका ध्यान बटाते हैं, लेकिन घर वालों की कमी बहरहाल महसूस हुई. शुक्र है कि घर वाले आते जाते रहे, मेरे खुद अपने बहन भाई वालदा आए और रहे यहाँ पिछले 3-3.5 साल में, और बीवी बच्चे, मैं जाता रहा लंदन ऑलमोस्ट 1 महीने पे. तो वो एक कमी थी जो कि अब पूरी हो गई है. पिछले तकरीबन 8 महीने से ये लोग साथ हैं, मामा की फैमिली आ गई है, वालदा आके रही उससे पहले 5-1 महीना एक साथ, तो माशाल्लाह लगा. भाई घर लोगों से बनता है, मैंने कहा जो आपसे पहले ही, कि जिंदगी जो है वो लोगों से बनती है.
1: सही सही.
0: सो वो घर में जब लोग आ गए तो घर घर हो गया, उससे पहले मकान था.
1: तो सर ये जब तक ये लोग का आना नहीं हुआ, फैमिली का आना नहीं हुआ, अगर मैं जानना चाहूँ जब घर की याद आती थी उस टाइम पे तो कैसे अपने आप को संभालते थे?
0: भाई सबसे पहला खटखटाते थे दोस्तों घर, वो कहते थे कि घर की याद आ रही है, बच्चों को बुलाओ और खाना खिलाओ.
1: बहुत
0: और शुक्र है कि ऐसे बहुत से बेतकल्लुफ घर हैं जहाँ जाके ये कर सकते थे.
1: क्या बात है. नए एनवायरनमेंट में लॉन्ग शिफ्ट्स की बात करें और प्रोफेशनल प्रेशर को देखें तो मैनेज करना कैसा रहा?
0: मैनेज करना, शुरू में इतनी कॉल्स नहीं होती थी हमारे यूके में, यहाँ कॉल्स कभी कभी बिजी होती हैं तो बहुत होती हैं, आप रात के 8-9 बज जाते हैं सुबह से, तो वो चीज थोड़ा एडजस्ट करने में समझने में. लेकिन यहाँ एक चीज कहूंगा कि जो एक पार्ट ऑफ मेरे ख्याल से अरब कल्चर है उसमें हॉस्पिटैलिटी और दोस्ती बहुत है. एक बार जरा सा जान पहचान हुई तो लोगों ने ऐसे वेलकम किया और ऐसे हेल्प की चीजों में कि लगा ही नहीं. मतलब अलीगढ़ का जो फैक्टर था वो था, लेकिन माशाल्लाह जो यहाँ का कल्चर है, एट इज वेरी वेलकमिंग, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव. ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में कभी लगा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे अलीगढ़ वाला कोई नहीं है डिपार्टमेंट में अपने, लेकिन जितने मेरे कॉलीग्स हैं सब अलग अलग ममालिक के हैं, कोई जॉर्डन का है, कोई सीरिया का है, कोई अमेरिका से ट्रेंड है, और उन्होंने सबने बिल्कुल जैसे कहते हैं हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया, तो जो मुश्किल काम थे वो सब आसान हो गए. बहुत बहुत वेरी लकी टू बी हियर.
1: क्या बात है. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सरवर मिर्जा आपके साथ. बस मैं यूं गया और यूं वापस आया. देखते और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें,
4: आज ही रابطہ करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें।

0: marketing@qmc.qa.
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: तो सर, अब इन सारी चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो आपकी फैमिली का इस जर्नी में कितना रोल रहा, कितना साथ रहा, सभी का रहता है, कुछ मेंशन करना चाहिए?
4: सर देखिए, सबसे पहले तो बेगम आती हैं किसी भी शरीफ आदमी की जिंदगी में, अगर उनका नहीं जिक्र किया तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा।
3: बिल्कुल, तो उन्हीं के हवाले से मैंने सवाल भी किया।
4: तो बहुत बहुत सपोर्टिव रही, अगर देखिए उनकी सपोर्ट, मतलब मजाक अपनी जगह, अगर बीवी, क्योंकि वो बच्चों के साथ अकेली थी, बच्चे अलग अलग स्टेज पे थे, एक टीनेजर लड़के हैं, एक बेटी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रही थी, एक बहुत छोटी है 4 साल की, सबकी अपनी डिमांड्स हैं। अगर वो ये कहती कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं भी यहाँ परेशान होता। एक वजह मेरे सेटल होने में शुरू में ये थी कि हालांकि हम लोग अलग थे, वो हमेशा बहुत माशाल्लाह नफ्से मुतमइन्ना है, वो अपने में सुकून में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आई भी तो ये नहीं कि भाई गर्मी है, सर्दी है, क्या है, जो है बहुत अच्छा है, सुकून से रहे, जो चीजें हैं वो साथ करनी है, और उसमें वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा। और फिर उसके बाद मेरी अपनी फैमिली, भाई, भाभी, ये लोग सब, बहन आके गए, वालदा आके रही, तो जाहिर सी बात है जब घर वाले आते हैं, वो जगह देखते हैं, वो लोगों का भी एक अप्रूवल होता है कि भाई अच्छी जगह हो, अच्छा कर रहे हो, उनको, उनकी आंख में आप खुशी देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैं, मेरा काम हो गया।
3: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, आज पीछे देखते हुए या बात करूं कि दोहा के करियर में एक टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करें तो क्या शेयर करना चाहते हैं?
4: यहाँ पे आने के बाद शुरुआत में जो मुझे लगता है कि फुटबॉल का और इसका बिजी रहे शुरू शुरू में, तो चीजें चलती रहीं, शुरू के काम हुए, लेकिन जब यहाँ जरा सेटल हुए और इन्होंने जिम्मेदारी दी, क्योंकि शुरू में आया था तब तो काम नहीं था, फिर ट्रेनिंग, तो वो और एक बार जब आप जिसे कहते हैं ना कि रज बस जाते हैं चीजों में, तब मजा आना सही से शुरू होता है, तो वो पॉइंट आया मेरे ख्याल से फुटबॉल के 6-8 महीने बाद, जब चीजें सेटल हो गई, काम शुरू हुआ और ये समझ में आया कि क्या चीजें हैं जो करनी है, क्या चीजें ऐसी हैं जो यहाँ लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे अपना दिमाग लगाया, अपने हिसाब से काम किया, वो सराहा गया, मौके दिए गए, तो फिर मजा आना शुरू हुआ और अब ऐसा लगता है कि भाई इससे पहले तो काम नहीं किया, यही कर रहे हैं।
3: क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं सर, और कोई पेशेंट का इंटरेक्शन या वर्क प्लेस या डेली लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट जो आज भी यादगार हो?
4: डेली लाइफ में देखिए, हम लोगों का पैथोलॉजी में पेशेंट का कम होता है, लेकिन जब एक बार एक डायग्नोसिस थी, वो पेशेंट, उसकी वजह से उनको ट्रैवल करना था, वो डिपार्टमेंट में आई कि ये हो जाए, तो उनको फौरन जल्दी तौर पे उसको करके उनको जवाब दिया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई, उन्होंने लाके कई तोहफे तहायर दिए। यहाँ ये बड़ा माशाल्लाह कल्चर है, उन्होंने कहा कि बहुत छोटी सी चीज देनी हो, जो उनके लिए छोटी थी वो मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि मैं बहुत कहते हैं कि ममनून हुआ उसके बाद। और जाती जिंदगी में जो एक बार हुआ कि वालदा मेरी अकेली आ रही थी, वो माशाल्लाह अब 90 की हैं, वो एयरपोर्ट पे थी, तो उनको वीजा के लिए कुछ पेमेंट करना था, उनके पास एक कार्ड था जो नहीं चला, तो जो कैप्टन थे वहाँ इमिग्रेशन पे, उन्होंने अपना जाती कार्ड ऑफर किया और बोले कि ये दिया मैं, हालांकि उसके बाद मैंने कोशिश भी की कि मैं कुछ वापस करूं, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि कोई जरूरत नहीं है, ये बुजुर्ग हैं और माँ की तरह हैं, और मतलब वो दिल को छू गई, अब ऐसी चीजें नहीं मिलती दुनिया में।
3: ये हमारा कतर है, ये हमारा दोहा है, माशाल्लाह। सर, क्या कभी किसी पेशेंट ने, या चलिए आप जैसे कह रहे हैं कि पेशेंट से कम इंटरेक्शंस होते हैं, तो कलीग वगैरह ने आपको ऐसे कोई सीख दी, आपने उनसे कोई ऐसी सीख

0: हासिल की या कुछ ऐसी चीज जो आप भूल नहीं सके?
1: जी ऐसे वाक़े हुए हैं, जब शुरू में आदमी जवान होता है तो काफी अपने आप में खुश रहता है और अपनी चीजों में उसको बड़ा भरोसा होता है और शको शुबा नहीं होता। तो ऐसा एक साहब थे जिनके साथ मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और मैं नया नया कंसल्टेंट हुआ था, मैंने उनको समझाना शुरू किया कि ऐसा है मैं सीख के आया हूँ लंदन से, अमेरिका से। उन्होंने बड़ी खामोशी से सुना, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ निकाल के दिया और बोले कि ये देख लो। तो वो पता चला कि वो जो चीज जिसके बारे में उनको बता रहा था वो उन्होंने ही डिस्क्राइब की थी सन 78 में, जब मेरे ख्याल से 6 साल का था।
2: वाओ,
1: उसके बाद मैं ऐसा शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा कि भाई अब कभी किसी के आगे मुंह खोलो तो पहले देख लेना दाएं बाएं।
0: सच्ची बात हो रही है और क्या सादा इंसान है आप डॉक्टर हसन साहब, मजा आ रहा है आपसे बात करके। सर दोहा में आपकी डेली रूटीन में सबसे फेवरेट चीज क्या है अगर मैं पूछना चाहूँ तो?
1: सबसे ज्यादा मजा दोहा डिस्पाइट द गर्मी आता है चाय पिया। अलीगढ़ में चाय की ऐसी आदत लगती है कि यहाँ हम लोगों का एक डॉक्टरों का चाय क्लब है।
0: okay.
1: तो जब वक्त मिल जाता है, अगर चाय मिल जाए तो या घर पे अपनी एक दम करके चाय बनाते। चाय का बड़ा एक बीमारी है हम लोगों को, तो चाय जो है वो हिंदुस्तान से मंगाई जाती है। तो वो चाय जो है वो कौन सी पत्ती होगी और फर्स्ट फ्लश होगी कि दार्जिलिंग होगी कि फलाना होगी, एक तो ये चोच ले। वो चाय दम की जाएगी, उस पे टीकोजी लगाई जाएगी, वो एक पूरा एक टी सेरेमनी होती है। तो वो या तो हो जाए या दोस्तों के साथ चाय मिल जाए। और काम पे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास वो अरबी और तुर्की कॉफी होती है, उसमें बहुत मजा आता है।
0: वाँ,
1: वाँ। तो वो मैं फरमाइश करके कभी कभी जाके बैठ के, और कमरों में हैं तो वो दो चीजें ऐसी हैं दिन की। और काम तो जाहिर सी बात है हर जगह मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में, काम में, लेकिन ये जो दो चीजें हैं कि चाहे अलीगढ़ वालों के साथ और कॉफी काम वालों के।
0: वाह वाह वाह, बहुत खूब। डॉक्टर साहब इस सेगमेंट का आखिरी सवाल कि अगर आप अपनी जिंदगी की एक डायरी एंट्री लिखें तो उसका टाइटल क्या होगा?
1: देखिए मैंने आपको बताया था कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अल्लाह के बाकी तो आप अपनी कोशिश करते हैं, बाकी जो देता है वो ऊपर वाला देता है, ये समझ में बाद में आता है।
0: क्या बात है,
1: आदमी सोचता है कि मैंने ले लिया, लेकिन वो मिलता आपको अपनी किस्मत से है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, जब मौका है।
0: क्या बात,
1: तो ये बस ये रियलाइजेशन जब हुआ तो समझ में आया कि खुद तो खच्चर है, चलते जाना है, जो मिलेगा वो ऊपर वाले की मर्जी से मिलेगा और दुआओं से बुजुर्गों की।
0: वाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं सर, और अब कुछ ऐसे सवाल जो थोड़ा हंसी का भी सबब बने जिंदगी में। क्या आपके साथ कभी दुआ में कोई ऐसा फनी या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ, हॉस्पिटल या डेली लाइफ के दौरान कुछ अगर हुआ है तो शेयर करना चाहते हैं?
1: अब इसमें जो है वो थोड़ा सा मजाक भी है और थोड़ा सा सीरियसनेस भी है।
0: मैंने सवाल किया,
1: ये जो है मैं, मेरा रंग काफी सांवला है, तो शुरू में जब मैं यहाँ आया तो काफी पहले तो सवाल होता था कि हिंदी और फिर केरला, तो मैं कहता था जी नहीं नॉर्थ इंडिया से हूँ। अब उसके बाद ये हुआ कि गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खुदा के फजल से कोई अच्छी ठीक गाड़ी थी। अब मैं गाड़ी जो है वो किसी होटल में किसी ने खाने पे बुलाया है या कहीं गए अच्छे होटल में या जगह पे, तो वहाँ गाड़ी में वैले के पास लेके जाता था तो कहता था साहब कहाँ है। मजा आता, मुझे खुद हंसी आती साहब, मैं कहता था ये जो आपके सामने खड़े हैं यही बेचारे साहब, इनको मानिए ना मानिए।
0: शख्सियत है सर आपकी, बहुत बहुत
1: बड़ा मजा आता है। और एक बार ये हुआ कि मैं असल में रहा पिछले 30 साल तकरीबन लंदन और अमेरिका, तो जाहिर सी बात है कल्चर वहाँ जहाँ आदमी रहता है वहाँ का कल्चर सीख जाता है।
0: सही,
1: तो यहाँ लिफ्ट में मैं एक बार, एक साहिबा थी अकेली, लिफ्ट रुकी और मैं घुसा तो वो फौरन बाहर निकल गई। तो मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, मेरे कपड़ों में से कुछ बू आ रही है, क्या हो गया? तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर ख्वातीन अकेली हो तो आप परहेज करें जाने से। और वो जाहिर सी बात है हमारे इस्लाम में कल्चर में है, लेकिन की आदतें भूल जाता है,
0: हम भूल जाते हैं। क्या बात है,
1: याद दिला
0: डॉक्टर हसन, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सर कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि आप किसी रूट पे या लोकेशन पर कंफ्यूज हो गए हो, जो यूजुअली दुआ में होता है लोगों के साथ जब नए आते हैं और फिर वो एक याद बन गया हो, और किस तरीके से वापस ट्रैक पे आए फिर आप?
1: सर मतलब एक बार ये मैंने बताया कि मैं जब आया था तो फुटबॉल का दौर था, नया नया घर मिला हम लोगों को, हॉस्पिटल की तरफ से घर दिया जाता है, तो वो घर एलोकेट हुआ। मैं रात में कहीं दोस्तों से मिलके वापस आ रहा था, अकेला था, और फुटबॉल की वजह से क्लोजर्स हो गए, तो अब वो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, मुझे जो रास्ता पता था मैं आया वो बंद था उस

0: के बाद में चला गया। मैं घर के अतराफ कम से कम 5-7 मिनट घूमा हूँ, नहीं 5-7 नहीं, कम से कम 15 मिनट घूम के पता चला कि मैं घर के बिल्कुल पीछे गलियों में टहल रहा था। फिर वापस जब मैप लगाया, अकल आई कि भाई नहीं, अपने ऊपर वही है, आदमी जो है अपने आप को समझने जब लगता है और ये नहीं सोचता कि मदद मांगी, तो फिर गूगल खोला, वो देखा कि मैं घर के पिछवाड़े खड़ा हूँ, तो गाड़ी खड़ी की और मैं टहलता हुआ अंदर आ गया। वो आज तक याद है कि भाई
1: क्या बात है सर। सर यूजुअली ये भी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे जितने भी कतरी भाई हैं और जो दूसरे ममालिक के लोग भी हैं, तो रोड वगैरह पे हमारे साथ कभी ऐसी कोई परेशानी आती है, कोई और बात होती है खुदा न खास्ता, तो क्या कभी किसी स्ट्रेंजर ने कभी आपकी ऐसी कोई मदद करी, आपको जरूरत पड़ी हो रोड वगैरह पे, कभी ऐसा कुछ हुआ या आपने देखा?
0: जी मुझे एक तो जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि वालदा को जब एयरपोर्ट पे कैप्टन ने हेल्प की तो मेरे लिए एकदम नई चीज थी, और दूसरा एक बार एक्सीडेंट हुआ खड़े गाड़ी में, किसी ने पीछे, बच्चे थे साथ में, वालदा थी, एकदम लोग आके रुक के पूछ के गाड़ी कोने में लगवा के, ऐसा लगा जैसे हमें कुछ करने ही नहीं पड़ा। यहाँ देखा कि लोगों के मदद करने की जो जज्बा है, जो जो कल्चर है, वो ऐसा है कि एकदम मतलब ऐसा लगा जैसे कोई घर वाला या दोस्त आके उसने मदद कर दी। फौरन हुआ कि भाई पूछे, पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे बीवी साथ में, इनको कुछ चाहिए हो, पानी खाना हर चीज पूछी गई। तो वो ऐसा यहाँ माशाल्लाह कल्चर है हेल्प का, ओपन आर्म्स के साथ आपको वेलकम करने का, कि वो लगता ही नहीं कि आप किसी उसमें आए हैं, और वो आदमी को सीखना चाहिए मेरे ख्याल से।
1: क्या बात है सर। सर दोहा को अगर आप एक खत लिखना चाहें, 2-3 लाइन अगर शेयर करना चाहते हैं तो कुछ है जहन में आ रही है?
0: बस दोहा को अगर खत लिखें तो मोहब्बतों का खत होगा। और
1: अगर आप कोई शेर भी, आप शेर भी कहते हैं, आप शायर भी हैं, तो अगर आप कुछ इसके हवाले से भी सुनाना चाहें, जैसे आपकी मर्जी।
0: जी मेरे ख्याल से शेर तो इस वक्त बर्जस्ता नहीं आएगा, लेकिन वाकई में जो मोहब्बत, जो नई चीजें, जो देखने को, तो जो जगह है वो तो अपनी जगह है, जो बनी हुई है, देखिए ढांचा और चीजें तो अपनी जगह होती है, लेकिन जो लोगों की मोहब्बत है यहाँ और वक्त है लोगों के पास आपको देने के लिए, वो चीज वेस्ट से बहुत मुख्तलिफ। वेस्ट में आप गिर भी जाएं तो आधे लोग ये समझेंगे कि शायद नशा करके गिर गया, कोई समझेगा क्या हो गया। यहाँ पे एक आदमी अगर गिरेगा तो सबसे पहला जज्बा होगा कि मदद कर दें, देखा जाएगा बाद में है क्या, क्यों गिरा।
1: वाह वाह,
0: वो चीज जो मोहब्बत यहाँ और यहाँ सीखने को मिला जिंदगी के बारे में, चीजों के बारे में, लोगों के, वो दोहा के लिए वो चीज हमेशा जिंदगी में याद रहेगी, वो बेबस्त हो गई है।
1: क्या बात,
0: तो दोहा में सिर्फ बस मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत के अलावा।
1: क्या बात है सर। जो नए डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स दोहा आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
0: सर ये पैगाम है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, आए, कोई भी आपको परेशानी हो तो घर भी खुले हैं, हमारा दरवाजा है, नंबर है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छी जगह है, आपको सपोर्ट मिलेगी, आए और आपको काम में मजा आएगा, काम बहुत प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन है, जो सेटअप है वो बिल्कुल वेस्टर्न लेवल पे बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल का सेटअप है, तो सब तरह से, और फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ हर तरह से, लोग बुलाए जाते हैं बाहर से, चीजें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस, इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दोहा में के अटेंड करना मुश्किल हो जाता है।
1: क्या बात है,
0: बाकी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आदमी रियलाइज नहीं करता।
1: क्या बात है, आखिर में सर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से दोहा ने आपकी शख्सियत में और 4 चांद लगाए हैं, दोहा ने आपको ज्यादा बदला और किस तरह से बदला, कुछ मेंशन करना चाहते हैं?
0: सर देखिए आपने शायर को छेड़ा है तो अब एक आपको नज़्म सुनूं,
1: मैं इसी का इंतजार कर रहा था।
0: नज़्म आपको सुननी पड़ेगी जो दोहा में ही लिखी गई है,
1: इरशाद,
0: और वो यहाँ के वक्त की वजह से है,
1: इरशाद,
0: तो बेहतर इंसान बने या नहीं वो अब आपके हाथ में है,
1: इरशाद।
0: तो उर्दू के ऊपर लिखी है जो हमारी जबान है जिसे बोलते हैं बोलते, तो रगो जां में बसी एक खुशबू है, मोहब्बत है, चाहत है, दिल की आवाज है, मेरी जबान ही नहीं मेरे तफक्कुर का बयान है ये, तहजीब का आईना है, जज्बात का पैकर है, जो खुमार दिल और जां में उतर जाए वो लफ्जों से बनी मैं है ये, कभी इजारे इश्क है तो कभी इंसानी जुर्रत का उबाल है ये, गर पिरो दूं अपने एहसासात को एक ताने बाने में, उसी श्रृंगार का नाम है ये, कुछ फूलों की खुशबू सी, कुछ रंगों से उभरती हुई एक तस्वीर सी है ये,

0: एक सितारों भरा आसमान है, कई कहकशाओं सी फैलती हुई रोशनी है ये, इल्म भी है उल्फत भी, जोश भी है कभी बेजारी भी, पैगाम अवाम भी है रूहानी बेदारी भी है ये, इंसानियत का पयाम है मेरी जबान है उर्दू है ये।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब डॉक्टर हसन, बहुत अच्छा लगा। और यकीन जानिए प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है बट आपसे इजाज़त लेने का दिल नहीं कर रहा, इतनी प्यारी बातें, इतनी सच्ची बातें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को अच्छा रखे और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें ज्वाइन करने के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम के बाद।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप सबसे भी बस इतना ही कहना है कि जिंदगी का हर सफर नया होता है, मंजिल नई होती है, बस हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
2: टॉप 10 काउंटडाउन।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू टॉप 10 दिस वीक। ये मुझे भारी आवाज में बोलना चाहिए जब भी मैं आता हूँ टॉप 10 दिस वीक, क्योंकि एक तो मेहनत बहुत लगती है भाई इस लिस्ट को बनाने में। मैं बाकायदा आपसे सिंपैथी और क्रेडिट दोनों चीजें लेना चाहूंगा, पर मजा बहुत आता है क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट बनाते हुए रियलाइज होता है कि मार्केट में गाने कौन कौन से टहल रहे हैं जो एक्चुअली में आते के साथ हिट हो चुके हैं। कुछ कुछ ऐसे गाने भी हैं जिन्होंने अपनी जगह को खो दिया है, कुछ गाने ऐसे भी हैं जिन्होंने वायरलिटी पाई है, धीरे धीरे धीरे आपके दिल में उस गाने ने जगह बना ली है, और कुछ गाने ऐसे भी हैं जो जगह धीरे धीरे बना रहे हैं, जिसे कहते हैं ना स्लो बर्न गाने। सो टॉप 10 में ऐसे बहुत सारे गाने, पहली पोजीशन बदल चुकी है और बहुत कुछ है इस लिस्ट में जो अब आप सुनने वाले हैं एफएम 107 पर। सो गेट रेडी, साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar FM।

0: 107 Qatar. इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, सो प्लीज प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस. और मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर. एंड बताइएगा कि आपके गाने इस लिस्ट में कौन से हैं जो शामिल होने चाहिए, कौन से गाने आपको लगता है कि नहीं, या कौन से गाने मिस आउट हो गए हमसे. मैं भी तो भाई दुआ के बारह हाथ तो है नहीं, हो सकता है कोई गाना मिस हो गया हो जो वायरल हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम वायरलिटी एंड एवरीथिंग, लेट्स बिगिन टॉप 10 दिस वीक. गाना नंबर 10, 9 और 8 से शुरुआत करेंगे. यहां पर हल्का सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है. सो लेट्स बिगिन विद गाना नंबर 10 जो अपनी जगह बनाया हुआ है लगातार ऑन द लिस्ट. ये गाना है बाय स्टीवन बेन और गाने का नाम है सादगी.
1: सादगी तो हमारी जरा देखिए.
0: इंडियन पॉप इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं बीच में सो गई थी, नींद लेने के लिए चली गई थी. और जब वो हाइबरनेशन में चली गई थी तो उस चक्कर में कई सारे पॉप म्यूजिक का आना, आर्टिस्ट का आना बंद हो चुका था. यू रिमेंबर दैट एरा जब सोनू निगम जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट एल्बम्स निकाला करते थे एंड शान जैसे लोग अपने एल्बम निकाला करते थे. वो एरा कहाँ गया? आई एम मिसिंग दैट एरा. एंड अभी जो पॉप इंडस्ट्री है वापस जाग रही है बिकॉज ऑल दीज न्यू पॉप सिंगर्स आर मेकिंग इट वर्कआउट. उसी में से एक है स्टीवन बेन जो निकाल चुके हैं अपना गाना सादगी, जो सादगी के साथ एकदम आलती पालती मार के बैठा हुआ है एट नंबर 10. एंड बहुत ही बढ़िया गाना है. इसमें जैसा नाम वैसा काम भी है. गाना एकदम सादगी के साथ है, गाना एक स्टोरी सुना रहा है और गाना बेहद बेहद खूबसूरत है. आई इमेंसली लव दिस ट्रैक एंड इट स्टेज एट नंबर 10 ऑन द लिस्ट. ऑल्दो आई बिलीव स्टीवन बेन को एक ईपी एल्बम तो निकाल देनी चाहिए आने वाले टाइम. एंड ऑल्सो उनके जो कंटेम्प्रेरी हैं विशाल मिश्रा, उनको भी निकाल लेनी चाहिए. वी स्ट्रॉन्गली नीड एन एल्बम एक पॉप आर्टिस्ट से, बहुत जरूरत है. फिलहाल गाना नंबर 10 सादगी स्टीवन बेन की. अब गाना नंबर 9 पे जाते हैं. ये गाना टिका हुआ है क्योंकि इसकी रिकॉल वैल्यू है, क्योंकि इसमें नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि ये गाना एक फेमस मूवी का है. मूवी चले ना चले मूवी की फ्रेंचाइजी बहुत बहुत बड़ी है. गाना वेलकम टू जंगल का है. अब मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वेलकम टू जंगल या वेलकम बोलूं तो आपके जहन में एक गाना जरूर आएगा. वो है उच्च लंबा कद. हाँ, तो वही गाना है, बस उसका 2.0 वर्जन है. आजकल तो आपको पता ही है 2.0 रीलोडेड, रीमिक्स, रिडक्स, रीमेक, बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं. तो ये गाना जो है ऊंचा लंबा कद फ्रॉम वेलकम टू जंगल अभी भी अपने पोजीशन बनाए हुए है एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट. मूवी विल बी लॉन्ग गॉन, किसी को याद नहीं रहेगा, मगर ये गाना कुछ दिनों तक और चलेगा एंड आई थिंक ये फिर लिस्ट से उतर सकता है. बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. क्या आपको लगता है ऊंचा लंबा कद शुड स्टे ऑन द लिस्ट या हो गया आपका? बताइएगा जरूर 666-22107 पर एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए. ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं. So, गाना नंबर 8, ये एक पायदान नीचे आया है जस्ट बिकॉज स्ट्रीमिंग के डेटा को देख के मद्देनजर रखते हुए इसे इस लिस्ट पर मैं लाया हूँ. तो ये जो है गाना है आरजू. आसिम अजहर साहब ने इसे गाया है एंड वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स. जब ये आए थे एंड ही वाज डूइंग कोलैबोरेशन विद ऑल द रैपर्स एंड आर्टिस्ट, बड़ा मजा आ रहा था भाई. और आ रहा था का मतलब ये नहीं कि अब नहीं आ रहा है. अब आई एम मोर हैप्पी बिकॉज मैंने अंडररेटेड कह के थक चुका था. एंड नाउ आसिम अजहर हैज कम आउट ऑफ हिज शेल एंड प्रोड्यूसिंग हिज ओन म्यूजिक. और उसी में बात है, आसिम अजहर का प्रेजेंस, आसिम अजहर का सेलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिसिज्म बहुत मायने रखता है. और ये बंदा पॉप में जो काम कर रहा है भाई साहब, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसे आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा फुटेज मिलनी चाहिए. ये वो लोग हैं जो अटेंशन सीकर नहीं भी हो तो इन्हें अटेंशन जबरदस्ती देनी चाहिए कि लो भाई लो अटेंशन, लो भर भर के लो. सो आरजू इज एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट. ऑलराइट, सो जब वापस लौटेंगे तो गाना नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल गाना नंबर 10 सादगी स्टीवन बेन, 9 पे उचरम बक्कद, 8 पे आरजू आसिम अजहर की आवाज में. जाना नहीं आपने, मैं दो हवाला कबीर आपके साथ. दिस इज टॉप 10
2: FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

0: बात की, वो जा रहा है पूरी शबम गुजार की, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बार।
1: FM 107 Top 10
2: वेलकम टू टॉप 10। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड टॉप 10 दिस वीक में गाना नंबर 10 9 और 8 आपको बता चुका हूँ। सादगी, ऊंचा लंबा कद और आरजू तुम लोग जानबूझ के कभी कभार आयन लगा देते हैं। अब है वक्त गाना नंबर 7 6 और 5 का। बड़े ही पेचीदे मामले होते हैं जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे गाने ज्यादातर टिकते नहीं है, मूव हो जाया करते हैं। जैसे कि गाना जो है 7 से मूव करके 8 पे चला गया है, लेकिन 7 पे आ गया है कहर धमाल 4 का।
3: बॉम्बे तू बॉम्बे तेरा शहर कुड़े कहर कुड़े।
2: पिक्चर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा डोंट वेस्ट योर मनी ऑन द टिकट प्लीज प्लीज। मतलब जहां कॉमेडी की जा सकती थी सिंपल तरीके से, वहां भी डायरेक्टर्स ने कहा अरे बहुत पैसा हमारे पास, बहुत पैसा। प्रोड्यूसर ने सोचा चलो भाई लगा दो, सीजीआई कर दो। तो बड़ा ही लेजी किस्म का इन्होंने बनाया है स्क्रीन प्ले, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, दैट्स अनदर शो। फिलहाल तो गाने की बात कर लेता हूँ। गाना कहर ऑफ कोर्स एक टैपिंग नंबर है गुरु रंधावा, जो गाना बनाते ही इसलिए जो वायरल हो एंड रीलो पर चल रहा है कहर अभी तक। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी। कहर की वजह से एक लड़की है और उन्होंने अपना डांस स्टूडियो चालू किया और वो अब इतनी वायरल हो रही है इसकी हद नहीं। आई कैन नॉट टेक हर नेम बिकॉज वो प्रमोशन हो जाएगा, मगर उन्होंने अपना डांस स्टूडियो इस गाने की वजह से उठाया एंड पीपल आर लर्निंग द स्टेप्स फ्रॉम हर। तो आजकल कोई भी काम कभी भी हिट हो सकता है, यू नेवर नो। सो जस्ट कीप ड्रीमिंग एंड गुरु रंधावा को उसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा, क्योंकि इस बंदे ने म्यूजिक इंडस्ट्री में वो किया जो इससे पहले लोग करने की कोशिश कर रहे थे मगर सक्सेसफुल हर बार नहीं हो रहे थे। लेकिन इनके कमान से जो तीर निकलता है वो निशाने पे जाके लगता है। हर गाना रील पे यार, हर गाना कोई ना कोई ऐसे स्टेप, ये कहाँ से कोरियोग्राफर ला रहा है ये बंदा। तो कहर जो है धमाल 4 से एट नंबर 7 ऑन द लिस्ट। ओके लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6 ऑन द लिस्ट नाउ। ओके सो आपने देख लिया 10 9 8 7 तो हो गया भाई, है ना। अब आ जाते हैं सीधा नंबर 6 पर। नंबर 6 पर जो गाना है ये है, बता दूं क्या, दिल दे बैठी एक छोरे ने। ये गाना भाई ऊपर चढ़ेगा, डांडा न्योली वाला का गाना भाई साहब। गाना नंबर 6 है डांडा भाई का, दिल दे बैठी एक छोरे ने।
4: दिल दे बैठी एक छोरे ने,
2: ठीक है भाई, डांडा भाई का गाना है, बहुत बढ़िया लिरिसिज्म है एंड उनकी एल्बम नहीं है ईपी है, उन्होंने उसको रिलीज करने का फैसला किया है। हर हफ्ते एक गाना रिलीज होगा, अभी तक दो गाने आ चुके हैं जिनमें से एक है दिल दे बैठी एक छोरे ने और ईडीएम है भाई, ईडीएम गाना बनाया, मतलब कमाल म्यूजिक है भाई। आपको लगेगा कि अगर कोई और सिंगर होगा, कोई रैपर होगा तो उस पर नहीं गा पाएगा, बट डांडा भाई ने वो भी कर दिखाया। इतने बढ़िया लिरिक्स लिखे, इतने बढ़िया मीनिंगफुल लिरिक्स, और ये तो मतलब पहली मर्तबा नहीं है कि मैं कहूँ कि ओ तुक्के में लिख दिए होंगे, नहीं, हर बार डांडा भाई की लिरिक्स बढ़िया होते हैं। मैं तो उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ भाई, बहुत ही बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन कि आई वुड रियली लाइक टू मीट हिम वन डे। सो डांडा भाई का गाना दिल दे बैठी है छोरे ने, छोरा रिप्रेजेंट करा है भाई हरियाणा को और नहीं है भाई, बढ़िया चल रहे गाने सारे और यो एल्बम जब आएगी ना भाई धरती हाल लेगी, स्पीकर बाज जाएंगे बढ़िया करके। तो ये दिल दे बैठी नंबर 5 पे है डांडा भाई का गाना, ठीक है भाई साहब सुनो। और राइट, अब नंबर 5 का वक्त आ गया है, ये जगह भी कुछ हल्के में नहीं ले सकते। नंबर 5 पे जो गाना है ये है असीम अजहर साहब का, असीम अजहर विद द ट्रैक तू है वही।
5: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।
2: इसकी एक लाइन ने तबाही मचा रखी, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप जब गाना सुनेंगे तो कहेंगे हाँ अच्छा ये वाली लाइन है, ये तो मैं रीलों में सुन चुका हूँ। सो तू है वही असीम अजहर की आवाज एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, असीम अजहर वो आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में मैं कहता आया था कि अंडररेटेड है, कभी नहीं कोई काम देगा वो बड़ा वाला काम जब भी पर्दे पे छा जाएंगे, लेकिन असीम अजहर प्राइम एग्जांपल हैं जब हम कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड ही हैज डन इट, ही हैज अचीव्ड फॉर हिमसेल्फ. आज की तारीख में ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. असीम अर्जद साहब का ये गाना भी बहुत खूबसूरत है. इस गाने में कहानी है, इस गाने में डेप्थ है, इस गाने का अंतरा मुखड़ा सब एकदम, एक गाने का ना स्ट्रक्चर होता है. मैं इतना बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना मैं इतना अच्छा लिखता हूँ, मगर एटलीस्ट इतना समझ पाता हूँ गाना सुनने के बाद कि गानों का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे हुक आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए और कितना गैप बीच में क्या आएगा नहीं आएगा, हारमोनीज हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. एंड आसिम अजहर क्या करते हैं, वो कई मरतबा पॉप म्यूजिक को और हिप हॉप को दोनों को मिला देते हैं और वो जो फ्यूजन है वो बड़ा कमाल का है. बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जैसा कर पाते हैं एंड ही इज वन ऑफ देम, रिजल्टिंग इन द फैक्ट कि गाना नंबर 5 उन्हीं का है, आसिम अजहर की आवाज तू है वही. ऑलराइट, सुनिए.

0: तो भाई साहब ऐसा है, गाना नंबर 10, 9, 8, 7, 6 हो चुका है, 5 भी हो चुका है। अब जरा लौट के आएंगे ना तो उस सीढ़ी को चढ़ेंगे, सबसे मुश्किल है, यानी 4, 3, 2, 1 जाना आपने, यानी बढ़िया जगह पर। अब दिस इज टॉप 10 ओनली ऑन FM 107। लेट्स गो।
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 7।

0: आज बादशाह साथ में आइकॉनिक हुक स्टेप वायरल हो रहा है हर रोज. इस गाने की रील एक तो मुझे मेरे फीड पे आई जाती है, एक नहीं दस आ जाती हैं. क्या कर दिया भाई साहब इस गाने ने, क्या कर दिया. एवरीबडी इज ट्राइंग टू लर्न. स्लो मोशन में लोग सिखा रहे इंटरनेट पे. एक्चुअल वायरल जिसे कहते हैं वो डेफिनेशन है ये गाना. चरणप्रीत को मेरे ख्याल में पता नहीं होगा उन्होंने क्या हुक बना दिया. ये हुक इतना जबरदस्त है, मैं पूरे आई एम क्लेमिंग अ बिग थिंग. ओके, इस पूरे साल में जितने भी गाने आए हैं इस गाने का जो हुक है आई थिंक इट इज द बेस्ट हुक एवर. यस आई एम क्लेमिंग इट. चलो इफ नॉट द बेस्ट इट इज एट लीस्ट टॉप थ्री या टॉप टू. इतना शानदार हुक है इस गाने का. तो ये ऐसा होता ना कि एक सिंगर की लाइफ में ये बहुत अच्छी चीज होती है और बहुत बेकार चीज होती है. बेकार चीज बताता हूँ कैसे होती है. जब आप इतनी बढ़िया चीज निकाल देते हैं ना तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कि वो एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं. एंड आई हैव नेवर हर्ड चरणप्रीत इस गाने से पहले, पर मैं उनको अब हर गाना उनका इसी गाने से कंपेयर करूंगा. That is also a problem and that is also a good thing because a lot of people have discovered ki Charanpreet aakhir hai kaun. And Badshah bhi hai to obviously discovery thodi aasan ho jati hai. And upar se Divya, I think Divya Goyal naam hai unka, aur unhone is gaane ke gaane ko choreograph kiya hai and Aasi ne perform kiya hai. That girl is also getting all the fame, she deserves it completely. Aur bahut badhiya hook step hai. To virality ki definition hai gaana. Which is at number 4. बन जा तू मेरी, क्या उकलाना भाई कती जहर, यो चलेगा भाई number 4 पे. ठीक है, अब जरा number 3 पे आ जाते हैं. Number 3 is also a very very vital position क्योंकि यहाँ पे गाने यहाँ से या तो चढ़ता है या उतरता है. ये जो गाना है ये पहली position पे था, अभी ये गुलाटी मार के तीसरे पे है, which is still not bad. एक्चुअली बढ़िया है ये गाना, अभी भी गिर के भी नंबर 3 पर है, टॉप 3 में बना हुआ है. वरना अक्सर गाने गिरते हैं तो सीधा 5-6 पे चले जाते हैं क्योंकि बीच में बहुत सारे गाने आ जाते हैं. बट कुडोस टू द मेकर्स भाई, पिक्चर आपकी भुला दी जाएगी, ये गाना कोई नहीं भूलेगा. गाना है फ्रॉम द मूवी कॉकटेल माशुका. ये भाई गाना फिल्माया बहुत बढ़िया गया है, विजुअली बहुत बढ़िया है, ऑडियो इसका बहुत बढ़िया है, गाने के लिरिक्स बहुत बढ़िया एंड यूनिक है. मैं अक्सर ये कहता हूँ जब गाना बनाने वाले बैठते हैं तो क्या वो ये नहीं सोचते होंगे कि यार थोड़ा पैटर्न तोड़ा जाए. कई मर्तबा मैंने सिंगर्स को ही कंप्लेन करते हुए सुना है कि पब्लिक पैटर्न टूटने से निराश हो जाती है. अगर मैं आई गिव यू अ वेरी लेम एग्जांपल लेकिन आप समझ जाएंगे, हिमेश रेशमिया का एक गाने का तरीका है, आतिफ असलम के गाने की मौसीकी का एक अदायगी का एक तरीका है, भाई रटा हुआ है आपको. उससे बाहर सिंगर गाने से दरअसल डरते हैं कि यार मेरा ये जोन है, इससे अलग मैं गाऊंगा तो पब्लिक को समझ में आएगा नहीं आएगा. एंड समटाइम्स दे डोंट डू इट अज्यूम करते हुए कि पब्लिक को कहां अच्छा लगेगा, मगर वो चीज फिर चल जाती है. और बॉलीवुड तो कभी एक्सपेरिमेंट करता नहीं है, बट दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट. एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से गाया हुआ गाना जिसमें स्पेनिश भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, एंड गाया बहुत अलग तरीके से किया है. एंड दैट इज द यूएसपी ऑफ द ट्रैक. सो माशुका हैज बीन ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर सो मेनी वीक्स और अब ये गाना आ चुका है नंबर 3 पर. आप सोचिए गाना इतने हफ्तों से नंबर 3 पे आ रहा है तो 2 और 1 पे क्या होगा. लेकिन फिलहाल माशुका कॉकटेल 2 से एट नंबर 3 ऑन द लिस्ट. ऑलराइट, अब गाना नंबर 2 की बारी है एंड आई एम सो एक्साइटेड. भाई मेरे अंदर का फैन बॉय जो है ना, फैन बॉय, वो फिर से जाग रहा है. नंबर 2 पे भी एक बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बढ़िया गाना है. ये आर्टिस्ट का मैं फैन हूं. ओके, आप कह लीजिए मैं बायस्ड हूं, आई कैन बी बायस्ड, भाई क्यों नहीं हो सकता, इतनी तो मैं अपने भी चलाऊंगा ना. गाने के अंदर स्पेशली जब हिप हॉप की बारी आती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि हिप हॉप में लिरिक्स होते नहीं, हर रैपर आता है और अपने बारे में गा के निकल जाता है, कह देगा मैं गरीब था, मैं पहले चूते थे, मेरे ये थे, मेरे वो थे, और बचत था, मेरे खाली हाथ, ऐसे कर करके रैप बना देते हैं और लोग निकल जाते हैं, हर रैप सेम साउंड करता. बट देन केम सिद्धू मूसेवाला, यू रिमेम्बर, सिद्धू मूसेवाला आए और उन्होंने पूरे रैप सीन को बदल के रख दिया. भाई साहब बहुत अलग लेवल पे चले गए. फिर जो हुआ वो हुआ,
1: बट ही स्टिल अ लेजेंड.
0: नाउ नाउ हरियाणा ने भी अपना एक वर्जन ऑफ सिद्धू मूसेवाला क्रिएट किया है. और नॉट जस्ट दैट, आई एम नॉट कंपेयरिंग हिम विद सिद्धू मूसेवाला, आई एम ट्राइंग टू से वो जो रिफ्लेक्शन होती है एक आदमी की ना, वो जो वॉइस होती है, वो जो इम्पैक्ट होता है ऑन द सीन, वैसा बहुत बहुत कम होता है. और वैसा हुआ है हरियाणा के हिप हॉप सीन में इनकी वजह से. नाम है ढांडा न्योड़ी वाला, गाने का नाम है जगाने. भाई साहब ये गाना आप सुनिए, और अगर आप हिप हॉप नहीं भी सुनते हैं, आप रैप को पसंद नहीं भी करते हैं, तो मेरे कहने पे ये वाला रैप सुन लीजिएगा. दो चीजें होंगी, एक तो आपको हरियाणवी थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाएगी. ओके, इवन इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, इसमें हिंदी भी है. वो जब लिरिक्स को आप समझने की कोशिश करेंगे, जब सुनेंगे, यू विल बी लाइक तो बंदा एक्चुअली में शायरी कर रहा है. और गाने को सिर्फ म्यूजिक नहीं आगे बढ़ाता है, गाने के लिरिक्स भी बहुत मैटर करते हैं, जो कहीं ना कहीं फेड आउट हो चुका है. आजकल हर दूसरा तीसरा गाना साउंड्स लाइक अ साउंड इफेक्ट है ना, उस पे लोग खेलते हैं, बिकॉज सबको अभी गाने वाले नंबर्स चाहिए. बट देन कुछ बीच में ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं कि भाई बैठ और सुनो. दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स, जगाने विच इज हथियार बाय ढांडा न्योड़ी वाला फ्रॉम हिज लेटेस्ट ईपी विच इज कमिंग आउट स्लोली, कंप्लीटली हो जाएगी एट नंबर 2 ऑन द लिस्ट. प्लीज सुनिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल लव इट. और अब बारी है गाना नंबर 1 ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. यहां पे भी मेरे अंदर का फैन बॉय जगा. मैंने कहा ना जी ना, ये तो मैं कतई होने नहीं दूंगा भाई साहब, ये होने नहीं दूंगा मैं. पहले मैंने होने दिया था, और कितने साल हो गए, 2007, तब तो हम बालक थे भाई, तब हो लिया था, अब नहीं होने देंगे. 2007 में एक मूवी रिलीज हुई थी, उसको लोग समझ नहीं पाए, गए नहीं थिएटर, और बाद में उस मूवी ने तबाही मचा दी. आंधी लेके आ गई पिक्चर, आंधी बॉर्डर के पार तक. 19 साल बाद वो पिक्चर वापस आ रही है अपना पार्ट 2 लेकर, और हम उसके फैन अभी जिंदा हैं, तो हम उसको भाई कोई घरों जाने नहीं देंगे भाई, इस बार नहीं आने देंगे. तो रिलीज होने वाली फिल्म जल्दी, जिसका एक ही गाना आया है. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कुछ गाने काफी स्लो बर्न होते हैं, धीरे धीरे आप पे चढ़ते हैं, ये वही गाना. मूवी है आवारापन 2, एंड सुबोध शर्मा ने ये गाना गाया है. मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं खुद एज अ फैन बॉय जब मैंने गाने को पहली मर्तबा सुना, जब ये रिलीज हुआ, तो बहुत हाइप थी. मैं कब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. फिर गाना रिलीज हुआ ना, आई वाज लाइक यार ये गाना थोड़ा कंपेरेटिव. मैंने फिर मेरे अंदर के फैन बॉय ने कहा नहीं, मुझे कोई हक नहीं बनता कंपेयर करने का. अगर मैं एक सच्चा फैन हूं तो मैं कंपेयर क्यों करूं, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, एंड आई डोंट वांट टू रूइन द फैक्ट के अभी अलग तरीके से म्यूजिक बन रहा है, तो बनेगा. पर आवारापन 2 का ये गाना धीरे धीरे मुझ पर चढ़ गया है. ये गाने का नाम है वे जुनून. ये गाना एक स्टोरी सुनाता है पूरी की पूरी, सुनने वाला होना चाहिए. एक बार दो बार जब आपने सुना, सुनोगे आप ये गाना, मैं सही बता रहा हूं, यू विल प्ले इट इन द कार. जो काइंड ऑफ टेक्सचर है, जो लिरिसिज्म है, भाई क्या शायरी है गाने में. हैट्स ऑफ टू सईद कादरी, जिन्होंने, जिन साहब ने पहली आवारापन में भी काम किया, उन्होंने लिखा है बहुत कुछ, गाने भी लिखे हैं, आई थिंक ही रोट अ बिट ऑफ स्क्रीन प्ले एज वेल. उनकी ही शायरी इस बार भी है. आई कैन नॉट वेट फॉर तोफेराओ का वर्जन 2 और 3, बट फॉर नाउ कि जिस हिसाब से क्रेज है आवारापन का, आवारापन 2 का, और जिस हिसाब से इस गाने का क्रेज है, ये गाना जिस तरीके से चढ़ रहा है, एंड एज आई मेंशन्ड लाइक अ स्लो बर्न, इट टोटली डिजर्व्स द टॉप स्पॉट. 6 मिनट का गाना है ओरिजिनल ट्रैक जो है, 6 मिनट का, समझ रहे हैं आप, ओरिजिनल ऑडियो जो है. इतना बोल्ड मूव, इतना बढ़िया गाना, ऊपर से भाई आवारापन 2. एक और कोई रीजन हो सकता है क्या? एंड इट वॉज ट्रेंडिंग एट नंबर 1 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नंबर 1 पे है वे जुनून फ्रॉम द मूवी आवारापन 2, सुबोध शर्मा की आवाज में, किलिंग इट एट द टॉप. तो ये अपना टॉप टॉप टॉप टॉप गाना आप सुनेगा जरूर. मैं लिस्ट एक बार रवा कर देता हूं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं. तो नंबर 10 पे रहसादगी, नंबर 9 पे उछलम कद, नंबर 8 पे आरजू, नंबर 7 पे कहर धमाल फोर से, नंबर 6 पे दिल दे बैठी एक छोरन, नंबर 5 पे भाई सब तू है वही, नंबर 4 पे बन जा तू मेरी, नंबर 2 पे आ जाते हैं जगाने डांडा भाई का गाना, और नंबर 1 पे दिस ट्रैक आवारापन 2 से. And on that note, this is Duha Wala Kabir signing off. Lekin social media handles FM107Qatar, FM107Qatar. Is naam se hum har jagah maujood hain. Please get in touch with us. Humse zarur zarur rabta qaim karein. Agle hafte ki taiyari kar lenge. Aapki wajah se koi gana list mein add ho jayega. Aapki wajah se koi gana bahar ho jayega. You are the judge, you are the jury of this whole show. Please batayega. And message zarur kijiyega. Mujhe bhi dhoond sakte hain. Duha Wala Kabir FM107. Kabir ki spelling rahegi KABIR. And this is Doha Wala Kabir signing off. Apna khayal rakhiye kyunki aap behad behad zaruri hain. Maasalama. FM 107

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन छोटी चॉइसेस की जो बड़ा एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। तो भाई आज का टॉपिक है इको फ्रेंडली किड्स टॉयज, यानी बच्चों के खिलौने जो एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल से बने हुए होते हैं या जिनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम होता है। साथियों, खिलौने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते बल्कि बच्चों के लिए लर्निंग, इमेजिनेशन और हैबिट्स को शेप करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टॉयज हम चूज करते हैं वो इनडायरेक्टली प्लैनेट पर भी असर डालते हैं। जरा सोचिए ना, आप एक टॉय शॉप में जाते हैं, हर शेल्फ पर कलरफुल प्लास्टिक टॉयज पड़े हुए हैं, जैसे कि कार्स, डॉल्स, रोबोट्स जो बैटरी से चल रहे हैं। बच्चे एक्साइटेड होते हैं और हर चीज बाय मी करने लग जाते हैं, मुझे चाहिए, मुझे खरीद कर दें, यही करते हैं ना बच्चे। लेकिन घर आकर कुछ टॉयज 2 से 3 दिन में टूट जाते हैं, कुछ बैटरीज खत्म हो जाती हैं और कुछ बस कॉर्नर में पड़े रह जाते हैं। देखिए, इको स्विच यहाँ बताता है कि फास्ट टॉयज यानी के फास्ट वेस्ट, अगर वही टॉयज आप कह लें कि लकड़ी के या फैब्रिक के या किसी रिसाइक्लेबल मटेरियल से बने हों, तो वो ज्यादा ड्यूरेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। अच्छा चलिए, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देखें, दुनिया भर में हर साल बिलियंस ऑफ प्लास्टिक टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से बहुत सारे सिर्फ कुछ महीनों या कुछ दिनों के ही मेहमान होते हैं, उसके बाद उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। प्लास्टिक टॉयज को डिग्रेड होने में 500 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। एक एवरेज प्लास्टिक टॉय की प्रोडक्शन में पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स यूज होते हैं साथियों, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबली टॉय इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट एविएशन इंडस्ट्री के एक छोटे सेगमेंट के बराबर इंपैक्ट क्रिएट करता है ड्यू टू मास प्रोडक्शन एंड शिपिंग। भाई देखिए, इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट सिंपल है, बच्चों की खुशी को एनवायरमेंट के साथ बैलेंस करना। जब हम इको फ्रेंडली टॉयज चूज करते हैं, जैसे वुडन टॉयज हो गए, रिसाइकल्ड प्लास्टिक टॉयज या फैब्रिक बेस्ड टॉयज, तो हम प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर हाउस होल्ड्स अपने टॉय कंजम्पशन को 30% इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव से रिप्लेस करें तो ग्लोबल प्लास्टिक टॉय वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। जरा सोचिए, घर में एक टॉय बॉक्स है जो ऑलरेडी फुल है, लेकिन हर विजिट या हर सेल के बाद टॉयज ऐड होते चले जाते हैं। बच्चे नए टॉयज 1 या 2 दिन खेलते हैं और फिर उसके अंदर इंटरेस्ट उनका लूज हो जाता है। इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि भाई कम टॉयज यानी कि लेस बट बेटर टॉयज, कम टॉयज लेकिन ज्यादा क्रिएटिव और लॉन्गर यूज, यानी ये बच्चों की इमेजिनेशन भी बूस्ट करते हैं और वेस्ट को भी कम करते हैं। चलिए भाई, अब कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल इको स्विच टिप्स की तरफ चलते हैं जो पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं। पहला ये कि वुडन या बैम्बू टॉयज प्रेफर करें जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दूसरा, रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए टॉयज चूज करें। तीसरा, बैटरी ऑपरेटेड टॉयज कम यूज करें या रिचार्जेबल ऑप्शंस प्रेफर करें। चौथा, टॉयज शेयरिंग या स्वैपिंग कल्चर अडॉप्ट करें, यानी फ्रेंड्स के साथ टॉयज एक्सचेंज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रोकन टॉयज को रिपेयर करें इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटली रिप्लेसिंग। और मैं तो कहती हूँ मेरे अब्बा जान इसके अंदर मास्टर हैं। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया ये है कि बच्चों का प्ले टाइम सिर्फ फन नहीं होता बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर बच्चे शुरू से ही इको फ्रेंडली टॉयज के साथ ग्रो करें तो वो नेचुरली सस्टेनेबिलिटी को अपनी थिंकिंग का पार्ट बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि भाई जो बच्चे सिंपल और क्रिएटिव टॉयज यूज करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इमेजिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू ओवर सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। और भाई आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर टॉय सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि एक एनवायरमेंटल चॉइस होता है। हम जो टॉयज चूज करते हैं वो बच्चों की हैबिट्स और फ्यूचर दोनों को शेप करते हैं। तो भाई अगली बार जब आप टॉय शॉप जाएं, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। इज दिस टॉय फन एंड प्लैनेट फ्रेंडली? तो भाई इसी के साथ मैं हूँ सफा, आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107 कतर, जहाँ हर खिलौना सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक ग्रीन फ्यूचर भी बनाता है।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फुटबॉलर के बारे में। फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, आप लोगों को पता है, एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर की टीम जो है मुसलसल दूसरी मरतबा क्वालिफाइड। सो इस टीम में खिलाड़ी हैं पेड्रो मिगेल। नाम समझ लीजिए, पेड्रो मिगेल ऑब्वियसली अरब खत्ते से नहीं है। पेड्रो मिगेल कतर के सबसे अहम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका असल नाम पेड्रो मिगेल कारवालो डियोस कोरिरा है और वो पोर्चुगल में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में कतर में मुकीम बने और वो कतरी नेशनल टीम में उन्होंने ज्वाइन किया। इनफैक्ट क्लब से शुरू किया था अपना जर्नी यहाँ पे और उसके बाद कतर नेशनल टीम में उन्होंने जगह बना ली। इनफैक्ट देखा जाए तो टैलेंट कतरी नेशनल टीम सेलेक्टर्स और कतर फुटबॉल एसोसिएशन के जितने भी टेक्निकल कमेटी मेम्बर्स हैं, उन्होंने नोटिस किया कि इस लड़के में टैलेंट तो है एंड ही प्लेज एज अ राइट बैक पोजीशन, और राइट बैक पोजीशन में काफ़ी मजबूत हैं और स्ट्रॉन्ग है। एंड लास्ट जो क्वालिफाइंग मैच हुआ था अगेंस्ट यूएई अल सद स्टेडियम में पिछले साल, तो पेड्रो मिगेल ने एक गोल किया था। दैट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल, क्रूशियल गोल दैट हेल्प कतर क्वालिफाई फॉर द 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्योंकि इन दिनों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है। पेड्रो मिगेल अपनी वर्सैटिलिटी, डिसिप्लिन और डिफेंसिव मजबूती के लिए मशहूर है। जैसे कि मैंने कहा, वो राइट बैक, सेंटर बैक और डिफेंसिव मिडफील्ड जैसे मुख्तलिफ पोजीशंस पर खेल सकते हैं, बहुत मजबूत है, जिस वजह से कोचेज उन पर खास भरोसा करते हैं। पेड्रो ने कतर स्टार्स लीग में असद के लिए खेलते हुए कई डोमेस्टिक और कंटिनेंटल कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया है। उनकी मजबूत डिफेंडिंग, टैक्टिकल समझ और प्रेशर में पुरसुकून रहने की सलाहियत ने उन्हें टीम का एक कीमती रुकन बना दिया। कतर की कौमी टीम के साथ उनका सबसे यादगार लम्हा 2019 एएफसी एशियन कप था, जब कतर ने पहली मरतबा टूर्नामेंट जीतकर तारीख रची। पेड्रो उस स्क्वाड का अहम हिस्सा थे और पूरे टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही। 2022 वर्ल्ड कप में भी पेड्रो ने कतर की नुमाइंदगी की और उनकी मेहनत, प्रोफेशनलिज्म और टीम के लिए वफादारी ने उन्हें कतर फुटबॉल के मॉडर्न दौर के नुमाया खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया. One Step to 2030. Well, दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वर्टिकल फार्मिंग या फिर फार्मिंग इन स्काईस्क्रेपर्स. सोचिए एक ऐसा शहर जहां बिल्डिंग के अंदर ही खेती हो रही हो, या कोई ऐसी जगह जहां आपको न धूप लग रही है ना उस तरह की तपिश का एहसास है, लेकिन आपकी फार्मिंग वहां पर हो रही है. ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि रियलिटी बनती जा रही है. इसे हम कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग. जी हाँ, वर्टिकल फार्मिंग का मतलब होता है कि सब्जियों या फिर जो फल हैं सीधे जमीन पर नहीं बल्कि लेयर्स में ऊपर नीचे ग्रो किए जाएं, अक्सर टॉल बिल्डिंग्स या फिर स्काईस्क्रेपर्स के अंदर. क्योंकि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, शायद उस तरह से लैंड ही अवेलेबल ना हो या फिर वो उतनी फर्टाइल ना रह जाए, तो कुछ और भी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स चाहिए होंगे. बस वर्टिकल फार्मिंग उसी का एक नतीजा है. वही चीज जो है वो फिर सामने आ रही है. तो वर्टिकल फार्मिंग, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर मिट्टी का यूज होता है. वर्टिकल फार्मिंग में प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट दिए जाते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स जिसे हम कहते हैं. वही LED लाइट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, सूरज की रोशनी का बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ एक एक एक क्योंकि सूरज की रोशनी उस तरह से बिल्डिंग्स के अंदर तो नहीं आ सकती, लिहाजा LED लाइट्स जो है वो यहाँ पर काम करती है और हर चीज AI कंट्रोल करती है, फिर चाहे टेम्परेचर हो, पानी हो या फिर हो हवा. इस सब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम जगह में ज्यादा फूड उगाया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक छोटी सी स्पेस पे ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले में कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि बड़े शहरों में भी फ्रेश फूड अब मिल सकेगा बिना दूर से लाए. ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, टाइम बचेगा और फूड यानी जो खाना है वो ज्यादा फ्रेश होगा. लेकिन हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती. देखिए, वर्टिकल फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा होता है क्योंकि लाइट्स और मशीन्स हमेशा चलती रहती हैं. अगर एनर्जी क्लीन ना हो तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान भी दे सकती है. फ्यूचर का सीन ये हो सकता है कि दोहा जैसे शहरों में जहां पर हाई राइज फार्म्स आम हो जाएं, जहां बिल्डिंग्स के अंदर ही सब्जियां ग्रो हो और सीधे सुपरमार्केट या फिर रेस्टोरेंट्स तक पहुंचा दी जाएं. तो ये है वन स्टेप टू 2030, जी हां, वर्टिकल फार्मिंग. वर्टिकल फार्मिंग हमें यही सिखाती है कि फ्यूचर में जमीन की कमी बड़ी प्रॉब्लम ना बने. इंसान अपनी सोच और टेक्नोलॉजी से कभी भी कहीं भी फूड उगा सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बैलेंस टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट दोनों के बीच. अगर ये बैलेंस अच्छे तरीके से बना रहा तो दोनों ही हमारे साथ आराम से चल सकेंगे. कोई भी चीज नुकसान में अगर आएगी तो सीधा नुकसान सबसे पहले इंसान का होगा, तो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में गुड बैलेंस बनाने का काम भी इंसान का है. तो चलिए, ये तो आज का वन स्टेप टू 2030 हुआ, जहां हमने बात की वर्टिकल फार्मिंग की. हर रोज हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर इसलिए भी आ रहे हैं ताकि आप इन फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स के हवाले से थोड़ा सा जो है ना मेंटली प्रिपेयर हो जाए, अवेयर हो जाए. बस हमारी कोशिश है हल्के फुल्के अंदाज में आपको समझाएं, फिर आगे आने वाले दिनों में इन्हें डिटेल में भी आपको समझाएंगे. लेकिन अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हैं सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक आपने डिजिटल स्कैम के बारे में सुना है, लेकिन अब लोग सामने आना शुरू हो गए हैं, यानी कि फिजिकल स्कैम। आपके सामने वो आते हैं, आपसे QR कोड, लिंक या फिर आपसे किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बनकर बात करते हैं। ऐसे में आपको होशियार रहने की जरूरत है। आजकल एक नया स्कैम चला है जिसे कहते हैं फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम। रूरल एरियाज और विलेजेस में डिजिटल अवेयरनेस कम होने का फायदा उठाकर स्कैमर्स ने अब एक नया तरीका ढूंढा है, जिसे फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स खुद को गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कभी इलेक्ट्रिसिटी या कभी वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय या अफसर बताते हैं, और ये लोग आम या भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। ये लोग घरों पर अचानक आते हैं और दावा करते हैं कि उनके स्मार्ट मीटर खराब है या उनका पिछला बिल बाकी है। लोगों को डराने के लिए ये स्कैमर तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। रूरल एरियाज में लंबा पावर कट किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकता है, इसलिए लोग डर जाते हैं। इस डर का फायदा उठाकर स्कैमर्स तुरंत पैसे डिमांड करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि मामला अभी खत्म करने के लिए फिजिकल कैश दे दें, या फिर उनके पास मौजूद एक फेक POS मशीन पर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने को भी आपसे कहते हैं। कार्ड स्वाइप करते ही आपके अकाउंट का सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है और अकाउंट पलक झपकते ही खाली हो जाता है। ये पूरा फ्रॉड बिना किसी ऑफिशियल पेपर या नोटिस के सिर्फ डर और झूठ के दम पर किया जाता है। सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कभी भी इस तरह अचानक आकर तुरंत कैश या ऑन द स्पॉट कार्ड पेमेंट की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। हमेशा किसी भी एम्प्लॉय का या ऑफिशियल एम्प्लॉय का आईडी कार्ड जरूर मांगे। इसके अलावा एक और आसान तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, जो है नो कैश ऑन स्पॉट। सरकारी रूल्स के मुताबिक कोई भी टेक्नीशियन घर आकर कैश या कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा जब आपके पास कोई बिल आए या कोई शख्स आपको बिल दे, तो उसे ऑनलाइन वेरीफाई करें। कोई भी पेमेंट करने से पहले अपनी ऑफिशियल यूटिलिटी ऐप या वेबसाइट पर बैलेंस चेक करें। उसके अलावा आप हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सोच की जरूरत नहीं है, सीधे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बोर्ड के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कंफर्म करें कि क्या किसी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल एम्प्लॉय आपके घर भेजा है या नहीं। इस तरह की होशियारी से आप हमेशा खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को स्कैम होने से बचा सकते हैं।
2: स्कैम अलर्ट। Maximum music, maximum fun.
0: On FM 107.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम एक ऐसी नियमत के बारे में बात करेंगे जिसकी कदर अक्सर हमें उस वक्त होती है जब इसमें कमी आना शुरू हो जाती है, और वो है हमारी हेयरिंग, हमारी समात। आजकल हेडफोन्स और ईयरबड्स का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। चाहे आपको म्यूजिक सुनना हो, ऑनलाइन क्लासेस हों या फ़ोन कॉल्स हों, बहुत सारे अफराद कई कई घंटे कानों में हेडफोन लगाए रखते हैं। अगर इनका इस्तेमाल एहतियात से ना किया जाए तो ये हमारी समात को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कि ज़्यादा आवाज़ जो है, हमें समझना यह है कि क्यों नुकसानदेह है। हमारे कान के अंदर नहायत बारीक सेल्स होते हैं जो आवाज़ को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ या तवील अरसे तक शोर में रहने से ये खलिये मुतासिर हो सकते हैं, और एक बार नुकसान पहुंच जाए तो फिर अमूमन दोबारा ठीक नहीं होते। आवाज़ को मुकम्मल तेज़ करने के बजाय आप उसे दरमियानी सतह पर रखें। 60/60 उसूल जो है वो माहरीन तजवीज़ करते हैं, यानी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 60% रखें और एक वक्त में 60 मिनट से ज़्यादा मुसलसल हेडफोन इस्तेमाल ना करें। हर एक घंटे के बाद कम से कम 5-10 मिनट का वक्फा ज़रूर लें। सोते वक्त हेडफोन लगा कर ना सोए, और इर्द गिर्द के अफराद भी आपके हेडफोन की आवाज़ सुन सकते हैं तो समझें कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें मालूम हो कि समात हमारी ख़राब हो रही है तो इसमें इस तरह से भी जाहिर होती है कि दूसरे अफराद की जो बात है वो बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। टीवी या मोबाइल की आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद करना हो, इसी तरह कानों में मुसलसल सीटी या फिर घंटी जैसी आवाज़ आनी शुरू हो जाए, शोर वाली जगह पर बात समझने में मुश्किल हो, और अगर ये अलामत महसूस हों तो आप जल्द से जल्द कंसल्ट कीजिए। अपने कानों का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी समात हमारी रोज़मर्रा जिंदगी, तालीम, काम और रिश्तों के लिए बहुत अहम है।
3: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.

करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? जेनरेशन टॉक दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
2: Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आज मेरे साथ सिर्फ दो लोग नहीं, पूरी फैमिली, माशाल्लाह पूरी फैमिली में से एक शख्स मिसिंग है मेरे ख्याल में, बट आई एम रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव दी स्माइलिंग फेसेस. आई नो मैंने उनको थोड़ा सा इंतजार कराया, वो मेरी गलती है, मगर स्टिल दे आर सो सो नाइस ऑफ देम, सो स्वीट ऑफ देम टू बी हियर एंड हमारे शो का हिस्सा बने आज. सबसे पहले सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो. अपना नाम बता दीजिए एक बार माइक पर.
3: मेरा नाम दिलीप माधवन.
2: दिलीप साहब, और दिलीप साहब के साथ बेटर हाफ बताइए.
4: पल्लवी दिलीप.
2: पल्लवी, ओके. आपका नाम क्या बेटा?
5: माय नेम इज देवदत्ता दिलीप.
2: आप कितने साल के हो देव?
5: आई एम 15.
2: यू आर 15 राइट नाउ. अच्छा, देव 15 है, तो इनसे बड़े बेटे हैं छोटे बेटे? इनसे
3: इनसे छोटे बेटे घर पे.
2: इनसे कितने छोटे हैं?
4: तो
2: 8 साल का. तो ये जो जेंजी जनरेशन है आज की, काफी अलग है, और क्योंकि बैक इन द डे अगर हमारी और आपकी बात की जाए तो बहुत अलग माहौल रहा है. How difficult it is? What is your parenting tip आज की तारीख में? Gen Z's को कैसे tackle किया जाए?
3: They are more into technology too.
2: हाँ हाँ.
3: So लेकिन we are like more into like collaborative method.
2: Collaborative method too. ये सर बड़ा नाइस टर्म दिया आपने. और मैम आप क्या कहेंगी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, हाउ डू यू टैकल? क्योंकि मोस्टली बच्चे माँ के पास ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, तो क्या कहना है आपका पल्लवी मैम, क्या कहेंगी आप?
4: मैं ज्यादातर उसके साथ फ्रेंड के जैसे बिहेव कर लेती हूँ.
2: अच्छा,
4: मूड के हिसाब से हमें रहना पड़ रहा है आजकल.
2: अच्छा, इन्हीं के मूड के हिसाब से रहना पड़ रहा है.
4: सही है.
2: देव, कौन ज्यादा इजीली मान जाता है? व्हाट डू यू थिंक इज इजी टू कन्विंस?
5: पापा.
2: पापा इज इजी टू कन्विंस. अच्छा, तो बात कैसे जाती है? इट गोज थ्रू मामा और इट गोज थ्रू योर पापा?
5: पहले पापा को.
2: अच्छा, पहले पापा को.
5: अप्रूवल पहले मिलता है.
2: अप्रूवल मिल गया. उधर से कभी डिक्लाइन आता है? इधर अप्रूवल?
5: हाँ, उधर डिक्लाइन आता है, फिर मम्मा, उधर अप्रूवल मिलता है.
2: अच्छा, अरे वाह, ये प्रोसेस तो फॉलो कर रहा है. अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से. अच्छा देव, सिंस यू 15 इयर्स ओल्ड, काफी ज्यादा तुम्हारा पीयर प्रेशर भी होता होगा. हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर ऑन सोशल मीडिया? मोस्ट ऑफ देम.
5: या, मोस्ट ऑफ देम.
2: आर यू ऑन सोशल मीडिया?
5: यस.
2: ओके, आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया?
5: यस.
2: अरे क्या बात है यार. तो क्या देव को रुकना पड़ता है सोशल मीडिया से या फिर रियल लाइफ?
3: नहीं नहीं, रुकने का सवाल
2: ही नहीं पैदा होता है.
3: लेकिन ओके, वी आर गिविंग द फ्रीडम, बट इट शुड बी इन द कंट्रोल मैनर.
2: अच्छा, कंट्रोल मैनर. पल्लवी मैम, आपके लिए कितना मुश्किल होता था शुरुआत में जब इनको आदत लगी होगी फोन्स की और टैब्स की? हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कंट्रोल देम?
4: कंट्रोल पहले तो मैंने मना किया था उसको फोन या कंप्यूटर देने के लिए. बाद में दिलीप जो चाहते थे, नहीं, उन लोग को एक्सपोजर देना चाहिए, हमें फ्रीडम देके देखना चाहिए कि कितना लेवल तक जाएंगे वो लोग. तो हमने वैसे दे दिया था उन लोगों को फुल फ्रीडम.
2: अच्छा, ओके.
4: फिर दिलीप जो है आईटी बंदा है.
2: ओके.
4: फिर वो ट्रैक तो रखते थे कि बेटा क्या कर रहा है. फिर एक टाइम था जब उन्होंने लिमिट क्रॉस किया, तो उनको कंट्रोल भी किया उन्होंने.
2: ओके, तो दिलीप साहब इज द रिस्क टेकर है ना, सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम बैठ के. वेरी नाइस दिलीप सर. पर एक एक सवाल उठता है दिलीप भाई, बहुत बार ये पूछा जाता है कि वुड यू बी कंफर्टेबल इन एडिंग देम ऑन योर सोशल मीडिया? आप वैसे सोशल मीडिया पे हैं?
3: हाँ. नहीं
2: तो क्या आप ऐड करते हैं, मतलब आर दे ऑन योर प्रोफाइल या नहीं? छोड़ रखता
3: है.
2: अरे वाह, देव डर लगता है पापा फॉलो करते हैं?
5: नहीं,
2: कोई ऐसा कुछ वो नहीं है डर?
5: नहीं, वो बस क्लोज फ्रेंड्स में नहीं है बस. हाँ,
2: वेरी गुड. देव के साथ यहाँ पे. हाँ तो देव, ये बताओ तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन बहुत अलग है यू नो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और तुम्हारे तो पापा खुद आईटी में हैं, तो एक ऐसा कुछ नहीं कि तुम नया सिखा दो इन्हें, ही ऑलरेडी नोज एवरीथिंग एल्स. लाइक हैव यू टॉट हिम एनीथिंग फ्रॉम योर जनरेशन, लाइक सम मूवीज और प्रॉब्ली थिंग्स, कोई टर्मिनोलॉजी कुछ सिखाने की कोशिश करी पापा को या मम्मी को?
5: मम्मी को सिखाया.
2: मम्मी को सिखाया?
5: हाँ.
2: क्या सिखाया मम्मी को रिसेंटली? कुछ सिखाया?
5: हाँ, इटालियन ब्रेन रॉट.
2: अरे क्या वाह.
3: I try to learn something from them because the whatever the new generation words, no?
2: Nah,
3: English short forms and all. I learn from them
2: only. TTYL to seekh gaye honge aap. अच्छा ओके पल्लवी मैम आपने क्या क्या आप कैसे टैकल करती हैं घर में जो है आपके जो जो ऑब्वियसली हस्बैंड है वो खुद आईटी सेक्टर में सो एवरीबॉडी इज लाइक प्लेइंग विद टेक्नोलॉजी अराउंड यू आर यू लाइक क्लोज टू टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया
4: नहीं जब दो लोग टेक्नोलॉजी के पास में तो मैं थोड़ा दूरी हूँ
2: अच्छा आप दूरी है
4: मगर हाँ मैं सोशल लाइफ हूँ मैं एक्टिव हूँ मैं इंस्टा सब फॉलो करती हूँ
2: अच्छा
4: और हम पूरा फैमिली अपने सबको फॉलो कर लेते हैं
2: हाँ कभी पोस्ट करने से लगता है ये ना कॉन्शियसली यू आर लाइक देयर क्या है मैं क्या आई एम पोस्टिंग व्हाट एम आई राइटिंग है ना कभी कभार लगता होगा ना ये ही रहता है और कुछ कई कई बार होता है कि किड्स आर नॉट रियली कंफर्टेबल लेटिंग देयर पेरेंट्स व्हिच इज लाइक डू यू थिंक इट्स फाइन क्या कहते हो तुम इस पर
5: My opinion, sure. Huh? If so, if you feel that your parents should not be added, you okay?
2: Okay, तो है लेकिन बनाओगे कैसे? There is, how can you say no? मैं नहीं करूँगा add. वो नहीं हो सकता ना?
5: Yeah, but you can try talking to them and see. Like, if you want personal space in your social life, you can ask for it.
2: Oh, okay. And आप दोनों ने कितनी कोशिश करी to influence him towards some kind of occupation in future के you can be this and that. You know, people try के घर पे लोग करते ना कि अगर इंजीनियर बनाया तो they shape them in a way कि ये इस तरफ जाए.
3: I mostly date them. Like anyway, it's after them like what they want to be become.
2: अच्छा okay.
3: Yeah, so कभी I never force them to do so and so line and all.
2: हाँ कभी ऐसा कुछ नहीं
3: ऐसा कुछ नहीं है आई ऑलवेज गिव द फ्रीडम टू देम टू चूज देयर पाथ
2: ओके एंड पल्लवी मैम हैव यू ट्राइड लाइक यू आपको कुछ है ऐसा कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ये बने ऐसा कुछ रहा शुरू
4: वैसा कुछ हमने बच्चों को नहीं बताया ऐसा कुछ करना है करके वो अपने अच्छों के ऊपर डिपेंडेंट है क्या करना
2: है nice. That's very nice.
4: और वही जो भी है मैं बस अच्छा इंसान बनूं
2: Oh, well,
4: we expect.
3: Yeah, that's right. It should be a good citizen.
2: Good citizen, पहले उसके बाद बाकी सारी चीजें होंगी. Dave, क्या बनने का चाहते हो वैसे when you grow up? कुछ सोचा?
5: Yes, I want to be a pilot.
2: You want to be a pilot?
5: Yeah.
2: अरे बहुत बढ़िया यार. माँबाप के लिए free ticket हो जाएगा. क्या बात है? Very nice. पल्लवी मैम आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है लोग कहते हैं कि ये it's not like saying के feminist हो या ना हो वाली बात नहीं है मगर आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है सबको एक साथ बांध के रखने की सो हाउ डू यू डू दैट लाइक सबको एक जगह बिठा के ये सब खाना खाएं एक साथ सब एक साथ रहें व्हाट इज योर फॉर्मूला और फंडा व्हाट डू यू डू
4: फॉर्मूला जो है मैं मैंगलोर से हूँ तो मैं तो प्रॉपर नॉनवेज खाने वाली बंदी
2: हूँ ओके
4: तो मेरे बच्चे भी वही फॉलो करते हैं
2: ओके
4: प्रॉब्लम एक ही बंदा है मेरा हस्बैंड
2: अरे
4: इसको वेज चाहिए
2: अच्छा ऐसा है क्या तो फिर कैसे मैनेज करते हैं व्हाट डू यू डू इट अलग बनाना पड़ता है इनके लिए खाना
4: अलग तो या एक तो बना लेती हूँ कभी कभी क्या करती हूँ मैं तो नॉनवेज बना लेती हूँ सैलेड बना के कुकुम्बर सैलेड देखती हूँ यही वेज ही चाहिए तो खा लो
2: इट्स हाई टाइम बट आई एम मैनेजेबल फॉर
4: बट ही इज एडजस्टेबल ही कुड खा लेगा
2: क्या क्या प्लान है आपको अब्रॉड भेजने का कुछ सीन है कभी फ्यूचर में सोचा है कि इफ ही इज विलिंग टू स्टडी आउटसाइड
3: No, I prefer to be in India.
2: Also, you prefer to be in India?
3: India.
2: Okay.
3: Even if he has any ambitions, he can proceed.
2: So, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है? अरे very nice, very nice. That's very sorted. Do you miss your bachelor life? आज आप खुल के बताइए.
3: Bachelor life, वहाँ का taste तो अलग है. वो taste जो अलग है, अलग है. Family life is different. But family life, I enjoy more.
2: Your family, वो हो जाता ना क्या उसको of course आप और इसका credit तो बल्ले में उनको जाएगा of course.
4: चलिए मैं ही बोलती रहती हूँ उनको दोस्तों के साथ जाओ बाहर.
2: मैं समझ गया था मैं आपसे पूछने वाला था इस बारे में जो होता है ना it's opposite at times जहाँ पर permission लेनी पड़ती है. But यहाँ पे ऐसा है कि तुम जाते क्यों नहीं हुआ?
4: ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है उनको फैमिली चाहिए सब लोग साथ में चाहिए और मैं जो थोड़ा फ्री हूँ अपना स्पेस चाहिए मैं बोलती हूँ मेरा फ्रेंड्स के
2: आप सोशल वर्ल्ड है मतलब कोई अलग है वेरी वेरी नाइस अच्छा मैम आपकी क्या क्या एडवाइस है जेन ज़ीज़ को क्या कहना चाहेंगे आप What is your advice to Gen Z's basically? आपके लड़के के एज के जितने बच्चे हैं Because I can see him is very very down to earth and sweet and he knows his limits and everything which is really really nice. But क्या आपका क्या है in general because they are more emotional है ना सब कुछ express कर देना है through stories or through anything. What is your opinion ma'am? क्या कहना चाहेंगे आप?
4: In general कंपेयर टू अदर किड्स में वही बोल रही, मेरा बच्चा तो बहुत बहुत बेहतर है उससे.
2: वही ने
4: और ही इज वेरी डाउन टू अर्थ और हम जो बोलते हैं वो सुनता है और कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जो हमें बोलना है तो हम कैसे भी पता लगा लेते, वही सोशल मीडिया से ही पता लगता है. अभी किडों फीलिंग्स जो होता है ना सोशल मीडिया में एक्सप्रेस कर लेते, अब उसके थ्रू हमें समझ में आता कि उसपे अंदर कुछ है जो ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस विद अस.
2: ए भाई तो संभल के पोस्ट किया करो. हां
4: तो हम क्या करते हैं उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं. So, कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है इस चीज से या कुछ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, देन उस टाइम पे हम लोग फ्री ओपनली बात करते हैं तो वो भी डिस्कस कर लेता है उसका क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है. सो देन वी एंटायरली वील कम टू द सॉल्यूशन. इधर हमसे अगर हमसे हो सकता है तो सॉल्यूशन दे सकते हैं, नहीं तो हम तीनों मिलके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते.
2: हाँ वेरी नाइस. तो कभी आप कमेंटिंग वगैरह करते हैं मम्मी पापा कभी फोटोज पे या फिर स्टोरीज पे? डू दे कमेंट?
5: Well, my posts are usually like photography.
2: Ajo, you love photography?
5: Yeah.
2: Very nice, yeah.
5: Yeah, so...
4: Both of them are into photography. Deep also is his part-time passion.
5: He's a wildlife photographer.
2: Are you nice, sir? So, you've got your talent to pass on.
3: Yeah, actually, see, that's the one which kids has to follow, that kind of thing, some kind of hobbies.
2: Uh-huh.
3: So that they won't, their mind will not be diverted to something.
2: Very nice.
3: Yeah, that's nice.
2: True.
3: They will not have any negative thoughts or anything.
2: Ah, right.
3: So rather than being with a photographer or any kind of like other hobbies like a dance, singing or something like that.
2: Ah, very nice sir. Very nice. You are sabse achhi baat hai ki you are open about it. Ye bahut achhi baat hai Dilip
4: sir. Yeah, magar problem ye kya na ki you sirf animals wildlife ka photo lete hain, hamari photo nahi lete.
2: Are re sir, yahan aap chuk rahe hain. Ye na ye duniya ki expectation hai sir. Wildlife photographer toh humari kyun
3: gaye the? Because it's like, I need a natural faces. I don't want any artificial.
2: Pose nahi pasand na. I'm with you sir, no problem.
3: Even mera Instagram aap check karega to you'll see only the animals.
2: I will see it right now sir. After this interview I'm going directly on your Instagram. Main pakka jaane wala hu. Acha ye tum photography achhi karte ho to are you not trying to pursue it? Bas hobby ki tarah chalta rahega.

0: जस्ट अ स्मॉल हॉबी.
1: ओ फोकस्ड है बिल्कुल, जहाज ही उड़ाना है मुझे.
0: या आई वांट टू मैरी.
2: बस लगे रहना है बस इसका, ही शुड नॉट लीव द टच.
1: हाँ वो लगे रहना है तुम्हें एवरीथिंग. लाइक मूवी से कहानी शुरू हो जाती है कई मरतबा, यू नो बच्चे कोशिश करते हैं कुछ और जानने का. कुछ देखते हो लाइक stuff which is related to planes and all, kuch dekha hai sari?
0: Yes, I like defense, like fighter planes and commercial jets. They're pretty fun.
1: Bas yeh focus rehna hai kyunki saath mein photography rakhna aur mummy ki photo kheche karo yaar.
3: Chabi actually mera photo khichta hai
1: Devi ke saath. Devi mera nahi hai yaar, papa ko support karne ke liye.
2: Devi jo chiz hai wohi wo pasand karte hain, mera photo wo pasand nahi karta.
1: Kyun sir, kyun aisa kar rahe hain? Abhi to zulm hai.
2: नहीं वो मेरे से ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस है, दैट कुड बी द रीजन.
1: हाँ ये पॉइंट आपने सही कहा सर, ये होगा कि इनको तो अच्छी और अच्छी की जिंदगी आ क्यों नहीं रही है वो बात.
4: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन एफएम 107.
1: दिलीप भाई आप इतने सारे आफ्टर यू नो स्कूल जाते हैं और पेरेंट्स सबकी मुलाकात होती होगी है ना, काफी कुछ जानने को मिलता होगा, तो ये जो सर्कल बन जाता है, हैव यू मेड अ सर्कल जहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स हैं, जस्ट बिकॉज योर किड इज देयर तो आपको जाना मिलना होता ही है?
2: हमारे पास फैमिली फ्रेंड्स हैं.
1: या
2: फ्रेंड्स रहते हैं.
3: हां तो थ्रू किड्स, नॉट थ्रू किड्स एक्चुअली,
1: बट डू यू हैव फ्रेंड्स थ्रू किड्स, बिकॉज ऑफ कोर्स इनके दोस्त हैं तो ऐसा है?
2: नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई.
1: ओके
2: वी नो देम दैट्स इट, बस बट ऐसा क्लोज
1: जैसे एक मेन टॉपिक है जो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में, यू वुड आल्सो नो दिस, स्लीप ओवर का कभी टॉपिक घर पे आया है?
3: यस
2: यस यस
1: आया है.
3: बचपन में गया हुआ है देव स्लीप ओवर में.
1: अच्छा
3: कभी उसका फ्रेंड्स हमारे घर तो आए नहीं.
1: देव ऐसा क्यों है? प्लीज एक्सप्लेन. पांच नंबर का सवाल है. व्हाई?
0: आई एम नॉट श्योर, लाइक आई For me, I don't think I have enough to entertain them much for an entire night.
1: अच्छा.
0: Yeah.
1: तो तुम्हें ऐसा क्यों? अच्छा तुम जब गए होगे तो what did you do? मतलब क्या किया?
0: Well, उधर we played. We actually most of the time we were playing. We were just roaming around and making jokes. And then other half was like we were on consoles.
1: अच्छा okay.
0: Yeah.
1: तो तुम अपने घर भी बुला सकते हो भाई, ऐसी क्या दिक्कत है? कभी
0: last step. Yeah, pitch करना वाला.
1: करने वाला?
0: Yeah.
3: प्रॉब्लम क्या है, हम थोड़ा अर्ली बेड वाले लोग हैं, जल्दी सो जाते हैं, तो शायद उन लोग का फ्रेंड्स को नहीं हो सकता है.
0: इट्स मोस्ट ऑफ देम आर एंड दे लिव इन विला, सो लाइक देयर पेरेंट्स विल स्लीप डाउन एंड वी विल बी मेकिंग नॉइस अप.
1: अच्छा दैट इजी
0: है. या दैट्स इजी.
1: ओह
2: और अनदर वन इज दैट देयर एक्सपेक्टेशन इज दैट व्हेन इट्स कम ऑन सेट विद द प्लेइंग इन द वीडियो गेम्स एंड
1: हां
2: सो वो तो मेरे घर पे नहीं है.
1: उसका रीजन क्या है सर, आप क्या रीजन मानते हैं उसका?
2: नहीं एक्चुअली
3: वही तो था, आउट ऑफ कंट्रोल,
2: आउट ऑफ कंट्रोल पढ़ाई में और ज्यादा मतलब उसमें दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट एक्चुअली. The thing is that they are more attracted to the some sort of fictional things which will not give any benefits to their life.
1: Like kuch jaise kuch games hote hain jo cognitive abilities you know they also develop.
2: There are but very limited. But
1: okay.
2: What was the game you were playing? Roadblocks. Yeah, Roadblocks. It's one of the many countries are it's banning that game.
1: That is also.
0: That's awesome.
2: Yeah, but
1: अभी भी पिच जारी है.
2: And the country did it recently. I did it very early stage.
1: Country से पहले बाबा ने कर लिया वैसा. Oh, the count. अच्छा क्या क्या पसंद है मम्मी का बनाया हुआ सबसे favorite food?
2: बिरयानी.
1: Oh, no. एक second भी नहीं लिया उसने पूछने के लिए. Is it that good?
0: I like it.
1: पल्लवी मैम हमें कब खिला रही हैं आप?
3: जब भी आ जाओ कभी भी.
1: Done हो गया फिर. ये तो कमाल की बात हो गई.
3: Three times भी खा सकते हैं, breakfast, lunch और
1: dinner. क्या बात है.
0: You give me one big plate of biryani, I'll finish it.
1: Arey, mashallah, very nice, very nice. ये तुम्हारी diet inshallah बनी रहे, ऐसी तुम रहो, खुश रहो. Dev, PTM जब होती है तो क्या सर में चलता है, nervousness होती है?
0: होता है.
1: होता है? डर लगता. थिंक यू रिमेम्बर.

0: PTM wherein you know situations were like up and down and you were like are kya karunga main yahan pe.
1: Actually recently in the recent PTM I was worried that the teachers would say something bad about me, but then they were like pretty chill. Yeah,
0: achhi baat hai, bach gaya.
2: Yeah, suspect to wahi kar rahe the ki teacher kuch bolegi, to
0: aap expect kar rahi thi. Sometimes you just want to run away na, kehte yaar mujhse mat baat karo, mere bare mein baat mat karo. How do you take PTMs? क्या पहले से prepare रहते हैं? क्या रहता है दिमाग में?
2: हाँ, prepare तो रहते हैं. हम सोचते हैं बच्चे के बारे में कुछ बुरा ही सुनने होगा, मगर जब टीचर से वो पॉजिटिव पॉइंट्स बताती है तो हम भी सरप्राइज हो जाते हैं, ये मेरा ही बेटा है.
0: क्या बात है देव, क्या वाह, क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या बताया देव का वैसे?
2: वो बोलते है कि हाँ ये शांत बच्चा है, सुनता है, सब कुछ करता है, उसमें जो जो बोलते है वो सब कुछ कर लेता है.
3: अच्छा,
2: थोड़ा फ्रेंड्स के साथ इधर उधर बात हो जाती है,
3: कभी कभी डिस्ट्रैक्शन
2: रहे.
0: ठीक है सर, उतना तो चलता है, मतलब
3: रहने दो, कोई बात नहीं
0: है, रहना चाहिए, वो तो चाहिए, मतलब दोस्ती बड़ी जरूरी है कुछ हमेशा. एंड नेक्स्ट मेरा पॉइंट भी ये था कि कई मरतबों में देखता हूँ बच्चे जो होते इतने शांत हो जाते हैं, सो साइलेंट, दे डोंट हैव फ्रेंड्स, क्योंकि उन पे बाउंडेशन हद से ज्यादा है. अब उन्हें आप कहते रहिए दे आर वेरी नाइस, वेरी यू नो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, पर फिर आगे जाके उनके दोस्तों से तो कोई लाइफ नहीं है. Right? Do you agree on this?
3: Yeah, I agree. Completely agree. Yeah, on no? Kids should be independent. They should be able to face any challenges.
0: Yeah.
3: Agar inka life mein agar failure nahi hua, to kabhi life mein agar failure jab banta hai, to they will not be able to come back.
0: Of course.
3: So failure should happen. I think.
0: Of course.
3: So failure se they can be successful.
0: Har cheez perfect bhi achhi nahi lagti na. Thoda imperfection bhi bada zaruri hota hai.
3: Perfection rehna zaruri.
0: But you know, papa ki advice lena, because it's a very major advice.
3: Yeah.
0: You might as well fail in things in life, and I personally, professionally. But वही चीज होना जरूरी भी है. It is important. It'll push you forward.
3: Yes.
0: And ये सिर्फ बात नहीं है. It's a common factor. हम सबकी life में हो चुका है. And आगे जाके ये होगा. Nobody will tell you कि नहीं failure तो नहीं होगा. वो तो होगा. But then you should be mentally prepared for it. दोस्ती बना के रखना भाई. तुम्हारा दोस्त है ना, कहना तो teacher को पछता. Relax, कोई सी बड़ी बात नहीं है यार. अच्छा सर, तो आपकी फेवरेट मूवीज क्या है? What do you watch, like, आपका जॉनरा क्या है?
3: I like true stories.
0: अच्छा, true stories. क्योंकि आप केरला से हैं, right?
3: Yes.
0: मलयाली मूवीज आर फैंटास्टिक, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा. मिस्ट्री थ्रिलर्स आर नेक्स्ट लेवल. मुझे लगता है उसका मैच ही नहीं है, अनपैरेलल्ड है. मैंने रिसेंटली ब्रह्म युगम और ये सब देखी थी, तो मुझे लगा कि बाप रे क्या बन रहा है, क्या सिनेमा बन रहा है. तो आप क्या मिस्ट्री थ्रिलर्स हॉरर क्या पसंद करते हैं?
3: ये थ्रिलर्स एंड true stories, thrillers, detectives.
0: Okay.
3: All those I like.
0: True crime things.
3: Crime kind of things.
0: Acha, okay. Pallavi, what do you like? I like
2: romantic movies.
0: This is a clash. Yes.
3: I have given full freedom to her.
0: तो कभी साथ में बैठना हो गया, अरे देखो ये अच्छी चीज़.
3: रोमांटिक मूवी साथ में बैठ के देखने में मुझे कुछ इतराज नहीं है. I also enjoy the romantic movie. The moon, it will help us to create a mood also.
0: ठीक, so very nice sir. क्या बात है? Dev, do you watch their genre sometimes? या फिर अपना खुद का ही चल रहा है तुम्हारा?
1: वो भी है. And I personally like feel good and sci-fi movies.
0: You like sci-fi movies? Okay. मतलब thrillers कुछ ऐसा? Yeah.
1: Thrillers भी है. Sometimes horror.
0: Sometimes horror.
1: Yeah.
3: It's a
1: mood.
3: I don't like horrors. No.
0: You don't like it or you're scared of it? And you don't.
3: No, I don't like horror movies at all.
0: You don't like it all. अरे बाप.
2: I like horror movies. Me and they watch horror.
1: Yeah.
0: Very nice. मम्मी साथ है तो फिर कोई क्या कर सकता है? Right. Recently कुछ देखा हो बताना चाहोगे तुम? कोई recently have you seen anything?
1: Recently. We watched one movie, Loka.
0: Nice. Yeah, but fantastic reviews, yeah. Huh?
1: It's really
0: doing great. मुझे देखनी बाकी, but I've seen the reviews and everything. तो इंशाल्लाह देखने का मौका मिलेगा. Sir, any advice to your own generation? To like, आप देखते होंगे आपके दोस्त होंगे, उनके भी बच्चे हैं. Not everybody can be in line with parenting, right? तो आपकी क्या advice है to your own generation?
3: Let me
0: think. Or new parents who will be एक नए उसमें आएंगे.
3: Be like as a friends with the kids. Okay, so in this current generation, that's the only way to control. Or else, if you try to apply some kind of restrictions, maybe the Gen Z kids, maybe
0: they'll find a way.
3: They'll go far away from us. So only way that to be friends with them and try to give the pros and cons.
0: Yes.
3: And instead of saying that when you do this, rather than that, you can say that when if you do this, this
0: will happen. Yep, in detail, in depth knowledge is the thing that you need to give. Yes. Pallavi, what is your take on this?
2: I do a good cop or bad cop. I do a good cop.

0: कॉपी रोल प्ले करती हूँ।
1: अच्छा ओ,
0: इसीलिए हमेशा देव इसलिए बोल रहे हैं पापा अच्छा है।
1: नहीं पर अच्छी बात है, बता मम्मी इज लाइक द बैकबोन है, पापा भी एग्री करेंगे, मम्मी ने सबके जो मेंटल हेल्थ उसको संभाल रखा है।
0: हाँ, मगर इंटरनली हम मैं और मेरा हस्बैंड तो डिसाइड कर ही लेते कि कौन बैड।
1: अच्छा अंदर से डिसाइड।
0: हाँ, किसी न किसी को तो पता चलेगा क्या हो रहा है घर पे।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा, इस पे बच्चों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बस से भेजना स्कूल आप प्रेफर करते हैं, यू ड्रॉप हिम ऑफ, हाउ डज इट
2: हैपन?
1: बाय बस। But do you, would you want them to drop you? Yeah,
2: no.
1: That is what I was looking for.
2: No, I like bus because you have friends in your bus. It's pretty fun.
0: That, I like,
2: that's what it is. Even when I was small, like...
1: Bus hi pasand thi na.
2: Even I was not going in bus also. Because I walked.
0: That's sweet.
2: Yeah, 20-25 minutes walking distance from my home to school. So we go by some group of people.
1: मुझे लगता है ये ऐसी प्रिविलेज है जो देनी नहीं चाहिए खुद ड्रॉप करने वाले। आई थिंक वो जो बस में दोस्त बनते हैं समटाइम्स वो आपकी क्लासरूम के भी नहीं होते, घरों से दोस्ती बड़ी अच्छी जाती
2: है।
1: And you share lot of stories जो आगे जाके तुम्हारे काम आएंगी।
2: Yes, that's what it is.
1: है ना, that's what.
2: Friends के साथ they can learn so many things.
1: Yeah, so many things. Which school would not taught them? और वो आप
2: parents और even हम भी इन लोगों से सिखा नहीं सकते।
0: Yes, good or bad दोनों सीख सकते हैं, मगर it's depend on the person to select which.
1: और आप हर चीज control भी नहीं कर सकते, you can't say कि तुम बड़ा अच्छी ही सीख पाओगे। It is not necessarily.
2: They should know bad also.
1: हाँ, they should know it. Yes.
2: And only thing is where to apply the good and. That realization should be there.
1: Yeah, of course. वो तो आ जाएगा सर, and I think आपका बेटा समझदार दिख भी रहा है। वो हो सकता है टीचर बोलती हो साइलेंट है, but he knows his stuff. So I can clearly sense that. So I wish you all the best, bro. And I can sense that bro in you. मुझे पता आगे जाके लड़का आग लगाएगा।
2: भाई जैसे आपको bro लगे।
1: नहीं बिल्कुल, yeah. So I can sense that.
0: मम्मी पापा bro ही हुए।
1: हाँ अब तो मम्मी पापा को bro करने चलते रहे।
2: I call them bro sometimes.
1: तुम आज के जनरेशन में बच गए। हेलेना बहुत पिटाई
0: हो। अरे आज सकते हैं, मैं बोलता हूँ तुम्हारे ब्रो नहीं हूँ।
2: इवन 8 साल के बेटा भी मेरे को आगे वो ब्रो बोलते हैं।
1: किस्मत अच्छी सर इनकी, बहुत अच्छी किस्मत है माशाल्लाह। नहीं बट आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों से दोस्ती करना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ से बड़ा आसान होता है। तो उनमें से जिनसे आगे जाके दोस्ती बनाई जा सकती है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट देम डेफिनेटली। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इंटरव्यू का, लास्टली पूछना चाहूंगा।
2: या वेरी नाइस, इट्स अ वेरी बट आई कैन से दैट बट इट्स अ वेरी वैल्यूड डिस्कशन दैट वी हैड। सो एनीवे आई गॉट टू नो दैट व्हेन समथिंग मोर अबाउट माय सन एंड ही आल्सो गॉट समथिंग ऑफ कोर्स या
1: Of course.
2: So, and it's anyway, जो सुनने वाला उन लोग को भी, of course, so it's going to be some
1: कुछ points. मिल जाता है,
2: कुछ ना कुछ मिल जाता है.
1: Yes. पल्लवी आप क्या कहेंगे? How was your experience so far?
0: मुझे तो मजा आया है. मकरम पहले तो टेंशन था क्या होगा आने के बाद, ना वैसे ही आपने तो बहुत चिल करवा दिया हमें. So I'm very happy about it.
1: Oh, my pleasure, bro. Likewise. Dev, lastly, bro.
2: Yes.
1: Oh, how has your experience
2: been? It's my first time being in the radio and it's pretty fun experience. Like new atmosphere. I've never seen this, like how it works. It's pretty fun to know how it all works.
1: कुछ कुछ शार्ट आउट देना चाहोगे तुम्हारे दोस्तों को? सब शार्ट आउट आएंगे, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, बट मेजरली दो तीन।
2: That will be unfair then.
1: I knew it. ये मैंने पूछा था। But thank you so much. It was a lovely chat with this family and मुझे बहुत मजा आया आप तीनों से मिलके, बहुत अच्छा लगा। And I wish you all the best. And हमने इतनी बातें करी हैं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा that you holding back anything. And as a parent, you're doing your job fantastic. मैं कोई नहीं होता जज करने वाला, but I can still sense that. वो जो चीज सुनने मेरा मन करता है सुनने का, वो आपने सब बोली है. And that is what is required. But thank you so much, Dave, for coming. Bro. I wish you all the best. Thank you so much. We all are signing off. Apna khayal rakhiye. Ab behad behad zaruri. Assalam.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूजडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो,
3: And he's hooked that away. That's 4 runs.
1: फुटबॉल हो, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ।

0: every Thursday at 1 PM.
1: It's fun to see Hero retread the board.
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स की.
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: Instagram at FM107 Qatar. Dil se desi.
1: Gen Z ki dictionary mein ek word hota hai, FOMO, feeling of missing out. Yani ehsaas ki kuch to chhoot gaya hai. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे सो नो फोमो एवर अगेन सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: दोस्तों आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है सेफ रहें और खुश रहें
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 से सिर्फ एफएम 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं
4: एब्सोल्यूट सिनेमा
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं पर डोंट वरी मैं हूं ना भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा
6: Maximum music, maximum fun.
0: On FM 107, Dil Se Desi.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

कहते हो और तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे पास ज़माना साबिक के पैगंबरों का वो इल्म है जो हमारे पास नहीं है। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमको ये बताएं कि उनके दावा पैगंबरी की सदाकत के मुतालिक आप हजरात की इल्हामी किताबों में कोई तज़किरा या अलामात मौजूद हैं या नहीं। चुनांचे कुरैश के वफ्द ने यसरिब पहुँच कर उलमाए यहूद से अपनी आमद का मकसद बयान किया। हमारे यहूद ने उनसे कहा, तुम और बातों को छोड़ दो, हम तुमको तीन सवालात बताए देते हैं, अगर वो उनका सही जवाब दे दें तो समझ लेना कि वो जरूर अपने दावा में सच्चे हैं और नबी मुरसल हैं और तुम पर उनकी पैरवी वाजिब है, और अगर वो सही जवाब न दे सकें तो वो काजिब हैं, फिर तुमको इख्तियार है कि जो मामला उनके साथ चाहो करो। वो सवालात ये हैं, उस शख्स का हाल बयान कीजिए जो मशरक़ व मगरिब तक फतुहात करता चला गया। दूसरा सवाल, उन चंद नौजवानों पर क्या गुजरा जो काफिर बादशाह के खौफ से पहाड़ की कूह में जा छुपे थे। तीसरा, रूह के मुतालिक बयान कीजिए। वफद मक्का वापस आया और उसने कुरैश को यहूदी उलमा की गुफ्तगू सुनाई। कुरैश ने सुनकर कहा, अब हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फैसला करना आसान हो गया कि यहूद के इन्हीं सवालात के जवाबात एक उम्मी इंसान के लिए देना तभी मुमकिन होगा जब दरहकीकत उस पर खुदा की जानिब से वही आती हो। चुनांचे कुरैश मक्का ने खिदमत अक्दस में हाजिर होकर तीनों सवालात पेश कर दिए और इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए आप पर सूरह कहफ का नुज़ूल हुआ है। मुहद्दिसीन ने इस रवायत के मुख्तलिफ तरीकों को बयान करके इसकी तहसीन फरमाई है। तो सामीन, ये है वयसअलूनका अन ज़िलकरनैन का शाने नुज़ूल, जिसका तर्जुमा है, वो तुझसे दरियाफ्त करते हैं कि ज़िलकरनैन का हाल बताओ। मौलाना मोहम्मद हिफ्ज़ रहमान साहब सियो हारवियो वो मोहम्मद बिन इसहाक की इस रवायत को नकल करने के बाद लिखते हैं कि असहाब कहफ और ज़िलकरनैन के मुतालिक मुशरिकीन मक्का ने जो सवालात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए वो दरअसल यहूद मदीना की तलकीन पर किए गए। तो कुदरती तौर पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर यहूद को इन वाक़ियात से ऐसी क्या दिलचस्पी थी कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इनका इंतखाब किया और उनके सही जवाबात को पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत और रिसालत की सदाकत का मेयार ठहराया है। और चूंकि प्रोग्राम में हम ज़िलकरनैन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ज़िलकरनैन के हवाले से जो दिलचस्पी का सवाल है, जवाब यह है कि यहूद ने इस सवाल में दरहकीकत एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है जो उनकी मजहबी जिंदगी के सिलसिला में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है और जिसको वो अपनी मिल्ली व इज्तिमाई हयात में किसी वक्त भी फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि इस शख्सियत की बदौलत बनी इसराइल ने बाबिल की गुलामी से नजात पाई और बैतुल

खुदा का मसीह और खुदा का चरवाहा कहलाया। मौलाना मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान साहब लिखते हैं कि यहूद के नबियों के मुकद्दस सहीफ़ों में उसके मुतालिक यही अलकाब दर्ज थे और उसकी अजमत का इजहार करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने सवालात में शख्सियत के मसले को भी मुंतखब किया, बल्कि उसी को ज्यादा अहमियत दी, जैसा कि कुरान के उसलूब बयान इस अलूना का अंदल करनैन से वाज़ह होता है। सामने कलाम अंबिया बनी इसराइल की पेशीन गोयां जो यहूदियों के सहीफ़ों में मौजूद हैं उनका हवाला देते हुए मौलाना मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान ने यह साबित किया है कि अंबिया अली सलाम की पेशीन गोयों के मुताबिक खोरस या साइरस ही ने यहूदियों को बाबिल की गुलामी से नजात दिलाई और बैतुल मुकद्दस दोबारा आबाद किया। मजीद उन्होंने यशाया नबी के सहीफे का हवाला दिया जिसमें खोरस का उत्तर से आना बताया गया है, यानी वो बाबिल से उत्तर ही की जानिब फारिस व मीडिया से आया था, इसलिए वही इस पेशींगोई का मस्ताक है उनके मुताबिक। वैसे खोरस या साइरस की तारीखी हैसियत क्या है, इस हवाले से महक्कीन तारीख ने फारिस की तारीख को तीन अहदों में तकसीम किया है। एक हमला इस्कंदर से पहले का ज़माना, दूसरा तवाइफुल मुलुकी का ज़माना और तीसरा सासानी सलातीन का ज़माना। और ये भी तस्लीम कर लिया गया है कि इन तीनों अहदों में से फारिस की अजमत और उसके उरूज का ज़माना खोरस या साइरस के अहद हुकूमत से शुरू होता है। इब्न कसीर ने तारीख में इन तीनों अहदों से के मुतालिक जो इशारात किए हैं वो भी इसी की तायीद करते हैं। 622 माकबल मीलाद बाबिल और नीनवा की हुकूमतें बहुत उरूज व इकबाल पर थी और साइरस से कबल इसी दौर में ईरान की हुकूमत दो जुदा जुदा हिस्सों पर तकसीम थी। शमाली मगरबी हिस्से को मीडिया या महात कहते थे और मगरबी हिस्से को फारिस, और दोनों हिस्सों में कबायली सरदार हुकूमत करते थे और ये कबायली हुकूमतें उनके जेर असर और ताबे थीं। लेकिन 162 माकबल मीलाद जब नीनवा की आशूरी हुकूमत तबाह हो गई तो अगरचे मीडिया आज़ाद हो गया और कबायली हुकूमत की जगह आहिस्ता आहिस्ता शाही हुक्मरानी की दाग पड़ने लगी, ताहम बाबिल के बादशाह वक्त नसर के काहिराना इक्तदार के सामने ईरान के उभरने का कोई इम्कान नजर नहीं आता था। मगर 569 मकबल मीलाद हैरत अंगेज तौर पर उसके अदल इंसाफ सियासत तदब्बर और हिलम और बुर्दबारी ने फारिस और बाहा दोनों हुकूमतों को बगैर जंग जदल के उसके कब्जे में दे दिया और दोनों हुकूमतों के कबायली हुक्मरानों ने बरिजा और रगबत उसको अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। यही वो हस्ती है जिसको अहले फारिस गोरिश और यहूद खोरस कहते हैं, जिसे साइरस भी कहा जाता है। खोरस या साइरस के मजहब के मुतालिक तौरात और तारीख दोनों मुत्तफिक हैं कि जिस तरह उसने ईरान के मुनकसिम हिस्सों और छोटी छोटी रियासतों को मुत्तहिद करके एक बड़ी शाहनशाहियत कायम की और दूसरों की सत्वत और हुकूमत के ताबे होने की बजाय बाबिल और नीनवा की जबरदस्त ताकतों को अपना ताबे फरमान बनाया और जिस तरह वक्त के जाबिर और काहिर शाहनशाहों के बरक्स उसने अदल और रहमत पर अपनी हुकूमत को मुस्तहकम और सवार किया, इसी तरह वो दीन और मजहब के बारे में भी ईरान के मुरवजा मजहब के खिलाफ दीन हक का ताबे और ईमान बिल्लाह और तौहीद इलाही का दाई था। सामने कराम ज़ुल्क़र्नैन से मुतालिक तौरात की पेशींगोयां और तारीख शहादतें हम बयान कर चुके हैं, अब हम कुरान अजीज की उन आयात को पेश कर देते हैं जो सूरह कहफ में ज़ुल्क़र्नैन के वाक़े से मुतालिक बयान की गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बिज़्निल्लाह ताला।

0: हमने उसे जमीन में हुक्मरानी दी थी और उसे हर तरह का साजो सामान दिया था।
1: حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

وكان وعد ربي حقا. अगर ने कहा ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। सामिन इकराम, अब हम लौटते हैं कससुल कुरान किताब में मजकूर जिनके मुअल्लिफ हैं शेख हिफ्ज़ुर रहमान सिवहरवी। उनका कहना है कि कुरान अजीज़ की इन आयात में ज़ुल्क़रनैन का जो वाक़िया मजकूर है, अगर उसको उन वाक़ियात के साथ तदबीक दें जो तौरात और तारीख कदीम के हवालजात से नकल किए गए हैं, तो ये फैसला पे हम पहुंच सकते हैं कि ज़ुल्क़रनैन का इतलाक खोरस या साइरस के सिवा और किसी शख्स पर नहीं होता। वो दलील के तौर पर बयान करते हैं कि कुरान अजीज़ का उसलूब बयान कहता है, वो दलील के तौर पर कहते हैं कि कुरान अजीज़ का उसलूब बयान कहता है कि उसने ज़ुल्क़रनैन का वाक़िया दूसरों के सवाल करने पर बयान किया है, और सवाल करने वालों ने उसी लकब के साथ उसको याद किया है। कुरान ने अपनी जानिब से लकब तजवीज़ नहीं किया। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا। तो इस तरह वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं, इस तरह मुअल्लिफ़ क़ससुल क़ुरान किताब के मुताबिक शेख हिफ्ज़ुर रहमान मज़ीद कहते हैं, सही रिवायत से ये साबित हो चुका है कि यह सवाल यहूदियों की तलकीन से कुरैश मक्का ने किया था, और सवाल में ये मज़कूर था कि ऐसे बादशाह का हाल बताओ जो मशरक़ व मग़रिब में फिर गया और जिसको तौरात में सिर्फ एक जगह उस लक़ब से याद किया गया है। और तौरात ये कहती है कि दानियाल अलैहिस्सलाम के मुकाशफा में ईरान के एक बादशाह को ऐसे मेंढे की शक्ल में दिखाया गया जिसके दो सींग नुमाया थे, और जिब्रील फरिश्ता ने उस दो सींगों वाले मेंढे ज़ुल्क़रनैन की ताबीर ये दी कि उससे वो बादशाह मुराद है जो फारिस तुर्मेंडिया दो बादशाहतों का मालिक होगा, और यह सयाह नबी की पेशिनगोई और तारीख दोनों इस पर मुत्तफिक हैं कि ईरान का यह बादशाह खोरिस था जिसने फारिस और मीडिया दोनों को मिलाकर शाहिनशाही की। यहूदियों को इससे इसलिए दिलचस्पी थी कि उनके अंबिया अलैहिस्सलाम के लहामात के मुताबिक वो उनका नजात दहिंदा था। चुनांचे यहूदियों का दिया हुआ यह लकब ज़ुल्क़रनैन खुद ईरान के शाही खानदान में उस दर्जा मशहूर व मकबूल हुआ कि उन्होंने खोरिस के बनने के बाद उसका मुजस्मा बनाया, तो उसमें भी तारीखी यादगार के तौर पर दानियाल अलैहिस्सलाम के ख्वाब को मुसव्वर करके दिखाया है। मजीद आयत करीमा, इन्ना मक्कन्ना लहु फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, हमने उसको हुक्मरानी अता की और उसके लिए हर तरह का साजो सामान मुहैया कर दिया था। इस आयत के हवाले से मुअल्लिफ कहते हैं कि कुरान कहता है कि वो बहुत साहिब शौकत बादशाह था और खुदा ने उसका हर किस्म के साजो सामान हुकूमत से नवाजा था। तो खोरस गोरश साइरस के मुतालिक तौरात और कदीम व जदीद तारीखी हवालों से भी ये साबित हुआ है कि उसने न सिर्फ ईरान के मुख्तलिफ कबाइली हुकूमतों को ही एक शाहिनशाही में मुंसलिक कर दिया था, बल्कि बाबिल और नैनवा की अजीम शान हुकूमतों पर भी काबिज होकर अपनी जोग्राफियाई मईशत में ऐसी वसी ममलकत का मालिक हो गया था कि खुदा ताला ने उसको तमाम साजो सामान जिंदगी हुकूमत से मालामाल कर दिया। और सारी तारीखी शहादतें भी साबित करती है कि खोरस ने तीन काबिल जिक्र मुहिम सर की यानी अंजाम दी। और जिस तरह कुरान कहता है कि ज़ुल्क़रनैन ने पहले पश्चिम मगरिब की जानिब एक मुहिम सर की, बाद बहासबा हत्ता इदा बलग मगरिब अश्शम्स वजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमीआ, ज़ुल्क़रनैन पश्चिम की जानिब निकल खड़ा हुआ यहाँ तक के चलते चलते सूरज के डूबने की जगह पहुंचा, वहां उसे सूरज ऐसा दिखाई दिया जैसे एक सियाह दलदल में डूब जाता है। तो मौरखीन के हवाले से भी साबित हो चुका है कि खोरस को सबसे पहली और अहम मुहिम पश्चिम की जानिब पेश आई, जबकि लीडिया एशियाई कोचक के बादशाह कर्डिस के गद्दाराना तर्ज अमल के खिलाफ उसको लीडिया पर हमला करना पड़ा। ये मकाम ईरान से जानिब मगरिब वाक़ है और उसका दारुलहुकूमत सार्डिस एशियाई कोचक के आखिरी मगरब साहिल के करीब था। वो मगरब की जानिब फतूहत करता हुआ 14 रोज के अंदर एशियाई कोचक के आखिरी साहिल पर जा खड़ा हुआ और सार्डिस जैसे महकम व मजबूत शहर को तस्खीर कर लिया। अब उसके सामने समंदर के सिवा कुछ न था। सवर्ना के करीब बाहर एजन का यही वो साहाल है जो अपने अंदर बहुत से छोटे छोटे जजीरे रखने की वजह से झील बन गया है, और उसका पानी बहुत गुदला रहता है, और शाम के वक्त जब सूरज डूबता है तो यूं मालूम होता है कोया सियाह दलदल में डूब रहा है। मजीद आगे जाके कुरान ने यह कहा कि अल्लाह ताला ने वहाँ की कौम पर ज़ुल्क़रनैन को ऐसा गलबा दे दिया था कि वो जिस तरह चाहे उनके साथ मामला करे, चाहे उनकी बगावत की पादाश में उनको सजा दे, और चाहे तो उनके साथ हुस्न सलूक करके उन्हें माफ कर दे। तो तारीखी अक़वाल से भी ये साबित किया जा चुका है कि खोरस गोरश या साइरस जो भी कहें,
इसने लीडिया को फतह करके आम बादशाहों की तरह उसको बर्बाद नहीं किया बल्कि अदल नेक और साले बादशाह की तरह अफू का इज्तेमाल कर दिया और उनको बेवतन नहीं होने दिया। मजीद कुरान अजीज ने ज़ुल्क़रनैन का जो मकूला नकल किया उससे मालूम होता है कि वो मोमिन भी था और आदिल और सालेह भी। ये भी बिल्कुल तारीखी शवाहिद में वैसे ही मजकूर है कि खोरस और दारा मोमिन थे और वक्त के सच्चे दीन के पैरों बल्कि उसके मुबल्लिग मुनादी थे। फिर कुरान कहता है कि ज़ुल्क़रनैन ने दूसरी मुहिम मशरक पूरब की जानिब सर की और वो चलते चलते जब सूरज निकलने की आखिरी हद पर पहुंचा तो उसको वहाँ खाना बदोश कबाइल से वास्ता पड़ा। दूसरी तरफ तारीख भी यही कहती है कि खोरस को दूसरी काबिल जिक्र मुहिम मशरक पूरब की जानिब पेश आई जबकि वहाँ के खाना बदोश कबाइल ने सरकशी की जो कि उस दार हुकूमत से अक्साए मशरक में पहाड़ी इलाका तक आबाद थे। मजीद कुरान कहता है कि ज़ुल्क़रनैन को तीसरी काबिल जिक्र मुहिम पेश आई और जब वो ऐसे मकाम पर पहुंचा जहाँ दो पहाड़ों के दरमियान एक दर्रा बना दी थी वहाँ उन्हें एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ा जो उसकी जबान और बोली से नावाकिफ थी। उन्होंने ज़ुल्क़रनैन पर किस तरह ये वाजह किया कि इन पहाड़ों के दरमियान से निकलकर हमको याजूज और माजूज सताते और जमीन में फसाद अंगेजी करते हैं, क्या आप हमारी इतनी मदद करेंगे कि हमसे माली टैक्स लेकर इन दो पहाड़ों के दरमियान एक सद बना दें ताकि उनके और हमारे दरमियान वो हद फासिल हो जाए और रोक बन जाए। जिस तरह ज़ुल्क़रनैन ने कहा मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है उसकी मुझे उजरत की जरूरत नहीं अलबत्त उसके बनाने में मेरी मदद करो, तो फिर उन्होंने इस तरह एक आहनी दीवार बना दी वहाँ। तारीखी पहलू से अगर आप देखें तो खोरस को जानिब शुमाल में काबिल जिक्र मुहिम पेश आई थी जिसमें काकेशिया जबल कोकाया कोहकाफ के पहाड़ी सिलसिले में ऐसे दो पहाड़ों के करीब एक कौम मिली जिनकी फांकों के दरमियान कुदरती दर्रा था और पहाड़ की दूसरी जानिब से सेंथेनियन कबाइल के जंगली और गैर महजब लुटेरे दल के दल आकर इस कौम पर हमला करते और लूट मार करके दर्रा के रास्ता वापस हो जाया करते थे। खोरस जब उस जगह पहुंचा तो उस आबादी के लोगों ने हमला आवर लुटेरों की शिकायत करते हुए उससे पहाड़ों के दरमियान सद दीवार बना देने की दरख्वास्त की। खोरस ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और तामिल से मिलाकर एक सद कायम कर दी जिसको वक्त के गाग और मेगाग यानी याजूज और माजूज गैर महजब सेंथेनियन कबाइल अपनी दरिंदगी और खून खारी के बावजूद न तोड़ फोड़ सके और न उसके ऊपर से उतर कर हमला आवर हो सके और सर पहाड़ों के दर की आबादी उनके हमलों से महफूज हो गई। और इस तरह शेख हिफ्ज़ुर्रहमान वो इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी मुतादिद छोटी और बड़ी सद दीवारें बनाई गई हैं लेकिन ऐसी सद जो लोहे और तांबे से मखलूत दो पहाड़ों की फांकों के दरमियान बनाई गई होती इस सद के सिवा जो काकिशा यानी जबल कोका में पाई जाती है कोई सद दुनिया में अब तक दरियाफ्त नहीं हुई। इसलिए दलाइल की रोशनी में यह दावा किया जा सकता है कि कुरान ने ज़ुल्क़रनैन की सद के मुतालिक जो तफसीलात दी है उसके पेश नज़र खोरस ही ज़ुल्क़रनैन है और दर्रा दार अयाल ही की सद कुरान की तफसीलात के मुताबिक है। तो यहीं पर समीन आज का हमारे ज़ुल्क़रनैन के वाक़े का सिलसिला ख़त्म होता है। एक छोटी से ब्रेक के बाद मुख्तसरन हम इस वाक़े के असबाक पर गौर करेंगे बिज़्निल्लाह ताला। जुड़े रहिए हमारे साथ।

के साथ ईमान, आजिजी और इंसाफ शामिल हो। और इस तरह आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअ सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
0: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
0: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
0: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दिल से देसी।
2: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

और पियो मजे से अपने उन आमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जाए ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, उनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे और उनके अमल में कोई घाटा उनको न देंगे। हर शख्स अपने कसब के अवज रहन है। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें न यावा गोई होगी और न बदकिरदारी। और उनके खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे। ये कहेंगे कि हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जिंदगी बसर करते थे, आखिरकार अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें झुलसा देने वाली हवा के आजाब से बचा लिया। हम पिछली जिंदगी में उसी से दुआएं मांगते थे और वाकई बड़ा ही मुहसिन और रहीम है।

आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफाअत कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाजत न दे जिसके लिए वो कोई अर्ज़दाश्त सुनना चाहे और उसको पसंद करे। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते, जो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं हालांकि इस मामले का कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं है, वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मबलग इल्म बस यही कुछ है। ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है। और जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जजा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैया इख्तियार किया है। जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले कबीह अफ़आल से परहेज करते हैं इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरजद हो जाए। बिला शुबा तेरे रब का दामने मग़फ़िरत बहुत वसी है। वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम

अभी जनीन ही थे। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे न करो, वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है।

आद ने झुटलाया तो देख लो कि कैसा था मेरा आजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। हमने एक पैहम नुहूसत के दिन सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी जो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। बस देख लो कैसा था मेरा आजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। समूद ने तंबीहात को झुटलाया और कहने लगे एक अकेला आदमी जो हम ही में से है क्या अब हम उसके पीछे चलें? इसका इत्तेबा हम कबूल कर लें तो इसके माने ये होंगे कि हम बहक गए हैं और हमारी अक्ल मारी गई है। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स था जिस पर खुदा का जिक्र नाजिल किया गया? नहीं बल्कि ये